एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि तदनुसार 4 जून सन 2026 इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है आस्था के स्वर कार्यक्रम।
1: आस्था के स्वर।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए आप सुनिए ओम व्यास के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति गीत।

0: इसी भक्ति गीत के साथ आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी खंडवा से अब सुनिए आज का चिंतन। आलेख जेपी शर्मा का है।

0: मनुष्य को जीने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। आज चारों तरफ पानी की ही चर्चाएं हो रही हैं। हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध भी पानी को ही लेकर के हो। आइए हम देखें कि पानी और वनों का क्या संबंध है। मैं ग्रामवासियों से बातचीत कर रहा था। वन भूमि में अतिक्रमण होने के कारण नष्ट हो रहे जंगलों के दुष्परिणामों पर बातचीत चल रही थी। गांव में सबसे बुजुर्ग आदमी से चर्चा करने की मेरे द्वारा इच्छा रखी गई तो सबसे बुजुर्ग आदमी ने अपना नाम बताया और बातचीत करने लगे। उनकी उम्र 60 साल थी। मैंने उनसे जब पूछा कि वर्तमान में सिंचाई के लिए कितनी गहराई पर पानी मिलता है तो जवाब में बुजुर्ग ने 400-500 फुट की गहराई पर पानी मिलना बताया। अन्य ग्रामीणों ने भी उसकी पुष्टि की। फिर मैंने उनसे पूछा कि जब आप 10 वर्ष के थे पानी कितनी गहराई पर मिलता था। जवाब में बुजुर्ग ने 10-15 फुट गहराई पर पानी मिलने की बात कही। इसका अर्थ यह है कि प्रतिवर्ष 8 से 10 फुट की दर से पानी नीचे खिसकता जा रहा है। अगर यही दर रही तो पानी की गहराई 800 से 1000 फुट नीचे निश्चित रूप से चली जाएगी। इसी तरह एक बुजुर्ग ग्रामीण से चर्चा की तो उसने अपने बचपन की याद करते हुए बताया कि आज जो नाला सूखा पड़ा है उसमें वे बचपन में गर्मी के दिनों में नहाया करते थे। अर्थात उस समय गर्मियों के दिनों में भी नालों में पानी बहाता था। पानी गायब होने का कारण पूछने पर बुजुर्ग ने जंगल खत्म होना बताया। इन बातों से यह स्पष्ट है कि पानी की गहराई का संबंध वनों से सीधे जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा नदी का अस्तित्व ही वनों पर निर्भर है। अगर वनों के कटने की यही रफ्तार रही तो इस क्षेत्र में न तो माँ नर्मदा नदी का वर्तमान अस्तित्व रहेगा और पानी भी 1000 फुट से नीचे खिसक जाएगा। स्थानीय ग्रामीण नर्मदा नदी के घटते जल स्तर को महसूस कर रहे हैं। इंदौर और महू शहरों में पेयजल की आपूर्ति नर्मदा नदी से ही संभव हो पा रही है। जब नर्मदा नदी सूख जाएगी तो बिना पेयजल के क्या इंदौर और महू शहर आबाद रह पाएंगे? जब पानी 1000 फीट नीचे खिसक जाएगा तो क्या निमाड़ के लोग इस क्षेत्र में जीवित रह पाएंगे? इस गंभीर विषय पर बहुत ही गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। मत्स्य पुराण का श्लोक क्रमांक 512 में लिखा है, 10 कूप समोवापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्र, 10 पुत्र समो द्रुम। अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। हमारे ऋषि मुनियों ने कई वर्षों की लंबी अवधि तक प्रकृति में रहकर अनुसंधान करने के उपरांत ही वेद और पुराणों को रचा है। इस श्लोक के अनुसार एक वृक्ष 100 तालाबों के समान माना गया है। अर्थात हम 100 की संख्या में स्टॉप डैम, तालाब अथवा खंडवा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाएं तो वह एक वृक्ष के समान ही माने जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें जल चाहिए तो वृक्ष बचाने ही होंगे, जंगल बचाने ही होंगे और वृक्ष लगाने ही होंगे। जब बहुतायत में वन थे तो धरती पर 12 माह झरने और नाले बहते थे, लेकिन आज वनों का सफाया होने के कारण निमाड़ के झरने और नाले गायब होते जा रहे हैं। आज भी जिन क्षेत्रों में वन बचे हैं वहाँ जनवरी के महीने में भी झरने बह रहे हैं। 50 वर्ष के बाद जब कोयले के भंडार समाप्त हो जाएंगे तो थर्मल प्लांट भी बंद हो जाएंगे और ताप बिजली नहीं बनेगी। जब नर्मदा नदी सूख जाएगी तो इस नदी पर निर्मित बांधों से भी पन बिजली नहीं बन सकेगी। पानी 1000 फुट नीचे चला जाएगा तो बिना बिजली के इतनी गहराई से पानी कैसे निकाला जा सकेगा? तब तक संभवतः डीजल और पेट्रोल के भंडार भी समाप्त हो जाएंगे तो ट्यूबवेल भी नहीं खोद पाएंगे। 1000 फुट गहराई तक कुआं खोदना दुष्कर कार्य है। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में बिना पानी के मनुष्य कैसे जिंदा रह पाएगा? अतः अभी भी समय है। समय रहते ही हम चेत जाएं, तेज गति से नष्ट होते जंगलों को बचाने के लिए आम जनता चिंतन करे और बचाने के उपाय भी करे तथा वनों को बचाने के लिए आगे आए, अन्यथा इस क्षेत्र से हमारी भावी पीढ़ियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
1: श्रोताओं, ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्री राम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर भूपेंद्र सिंह का। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र FM

0: 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनिए आज की कृषि चर्चा, वाचक स्वर वाणी महोदय का।
1: भाई बहनों ने राम राम। आज कृषि चर्चा में हम बात करांगा तुअर की खेती का बारे में। दलहनी फसल नम अरहर को विशेष स्थान छे। तुअर की लंबी अवधि की किस्म न मिट्टी में 200 किलोग्राम तक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करी न मिट्टी की उर्वरता न उत्पादन में भी बढ़ोतरी कराए। तुअर की जल्दी पकड़ा वाली किस्म न की बुआई 15 जून तक करी देनु चाहिए न देर सी पकड़ा वाली किस्म न की बुआई 15 जून से 30 जून का भीतर करी देनु चाहिए। तुअर की फसल का लेना दोमट मिट्टी, अच्छा जल निकास वाली भूमि उपयुक्त रहे। एक गहरी जुताई का बाद 2 से 3 जुताई हल या हैरो से करना चाहिए। न हर जुताई का बाद सिंचाई न जल निकास की व्यवस्था का लेना पाटो चलाई देना चाहिए। तुअर की फसल में मिट्टी परीक्षण का आधार पर सभी उर्वरक अंतिम जुताई का समय हल का पीछे कूड़ में बीज की सतह से 2 सेंटीमीटर गहराई न 5 सेंटीमीटर साइड में देनु अच्छो रहे। प्रति एकड़ 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस न 20 किलोग्राम पोटाश न 20 किलोग्राम गंधक की मात्रा देनु चाहिए। जिना क्षेत्र में जस्ता की कमी होए वहाँ पर 15 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालनु चाहिए। नाइट्रोजन न फास्फोरस की जरूरत सभी भूमि नम पड़े, लेकिन जिंक न पोटाश को प्रयोग मृदा परीक्षण का आधार पर करनु चाहिए। मृदा जनित रोग न से बचाव करना बीज नख 2 ग्राम थीरम न 1 ग्राम कार्बेंडाजेम प्रति किलोग्राम या 3 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम की दर से बीज नख शोधित करी न बोई करनी चाहिए। बीज शोधन बीज उपचार से 2-3 दिन पहले करनी चाहिए। बोई करना 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की जरूरत पड़े। जल्दी पकड़ने वाली फसल की पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर न पौधा से पौधा की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनु चाहिए। न मध्यम न देर से पकड़ा वाली फसल की पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर न पौधा से पौधा की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनु चाहिए। तुअर की फसल में लंबा समय तक वर्षा नहीं होना पर फूल आने का पहले न दाना बनता समय फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई करनु चाहिए। खरपतवार नियंत्रण करना बुआई का 25 से 30 दिन बाद पहली निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए न दूसरी निंदाई गुड़ाई 45 से 60 दिन का भीतर करनी चाहिए। तुअर की फसल का प्रमुख कीट छे फल्ली मक्खी, फल्ली छेदक, इल्ली, प्लूमाथ, ब्रिस्टल बीटल। इनका प्रभावी नियंत्रण करना अरहर का साथ ज्वार, मक्का या मूंगफली की अंतर्वर्ती फसल लगानी चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए, साथ ही रासायनिक खाद को प्रयोग अनुशंसित मात्रा में करना चाहिए। अब बात करें कीट रोग का नियंत्रण की यांत्रिक विधि का बारे में। फसल प्रपंच फेरोमेन प्रपंच लगाना चाहिए। पौधा नख हिलेना इल्लीना गिरेना उनका इकट्ठो करना नष्ट कर देना चाहिए। अब बात करें जैविक नियंत्रण की। NPV 5000 LE प्रति हेक्टर न UV रिटार्डेंट 0.1% न गुड़ 0.5% का मिश्रण ख शाम का समय खेत में छिड़काव करना चाहिए। साथ ही निम्बोली शत 5% को छिड़काव करी न नीम तेल या करंज का तेल 10 से 15 मिलीलीटर का साथ 1 मिलीलीटर चिपचिपो पदार्थ प्रति लीटर पानी में घोल बनाई न छिड़काव करना चाहिए। निम्बेसिडीन 0.2% या अचूक 0.5% को छिड़काव करना चाहिए। फसल पर कीटनाशक न को पहलो छिड़काव पहलो फूल बढ़ना पर, दूसरो छिड़काव 50% फूल बढ़ना पर न तीसरो छिड़काव फल्ली बढ़ना की अवस्था पर करना चाहिए। तो किसान भाई बहनों आज की कृषि चर्चा में बस इतना।
0: अभी आपने सुनी आज की कृषि चर्चा।
2: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
3: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की।

0: ये सुरीली धड़कन।
1: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से आप सुनिए कार्यक्रम विवरण। इस सभा में अब से कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे विशेष कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर सुरभि जैन की वार्ता, पर्यावरण संरक्षण के साथ भू जल संचय कैसे करें। सुनहरे पत्र सुबह 7:20 पर। 8:15 पर सुगम संगीत में आज के हमारे कलाकार हैं लकी अली। 8:30 प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे और 9 बजे से आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 10 बजे जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे और 10:05 पर प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: कहानी।
1: 5 जून है बेहद खास, क्योंकि है विश्व पर्यावरण दिवस और माह का पहला शुक्रवार हम पेश करेंगे एक कहानी।
2: सच कहूं, अगर वो पौधे ना होते तो शायद मैं भी ना बचती। मैं अपने पौधों से बातें कर अपना सारा सुख दुख बांट लिया करती। हाँ सचमुच, मुझे हमेशा लगता था पौधे भी बोलते हैं।
1: जरूर सुनिएगा सुबह 7:20 पर 5 जून शुक्रवार
0: एक कहानी।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: दस बजकर 35 मिनट पर आपकी पसंद कार्यक्रम और 11 बजे से आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। शाम 5:30 पर सुनिए निमाड़ी लोकगीत। 6 बजे युववाणी कार्यक्रम में आज का क्रम है क्रम इंद्रधनुष। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। शाम 7:21 पर किसानवाणी कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे से सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर NSD आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण स्वास्थ्य सेवा हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा और 9:30 से आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
6: आज की ताजा खबर।

पहली खबर है, शहर में कल मेरा युवा भारत खंडवा द्वारा विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली की थीम थी साइकिल की ओर पड़ेगा खंडवा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ेगा खंडवा। रैली के सफल समापन पर सभी प्रतिभागियों को माय भारत द्वारा प्रमाण पत्र और पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। अगली खबर है, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत जिले में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में ग्राम सभाएं आयोजित होगी।

कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इन में विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पात्रतानुसार अधिक से अधिक लोगों का पंजीयन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर है, मध्य प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कर्मकार्य कल्याण मंडल ने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए भोपाल स्थित श्रमोदय आदर्श ITI में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक आवेदक आगामी 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं।

अगली खबर है, जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पिछले 2 वर्षों से स्कूल यूनिफॉर्म के लिए सीधे खातों में राशि भेजी जाती थी। अब नई व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थियों को सीधे स्कूल में स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी।

0: अब खेल समाचार। 44वीं राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025-26 आंध्र प्रदेश के पापतला जिले में आयोजित हुई। प्रतियोगिता में अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के लिए खंडवा जिले से 3 बालिकाओं का चयन हुआ, जिसमें 2 बेटियों ने कांस्य पदक जीता और बालक वर्ग ने रजत पदक जीता है। अब जानकारी मौसम की। कल का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज की ताजा खबर का संकलन श्रुति सोनी का।
1: आज की ताजा खबर।

0: कहानी।
1: 5 जून है बेहद खास, क्योंकि है विश्व पर्यावरण दिवस और माह का पहला शुक्रवार हम पेश करेंगे एक कहानी।
2: सच कहूं, अगर वो पौधे ना होते तो शायद मैं भी ना बचती। मैं अपने पौधों से बातें कर अपना सारा सुख दुख बांट लिया करती। हाँ सचमुच, मुझे हमेशा लगता था पौधे भी बोलते हैं।
1: जरूर सुनिएगा सुबह 7:20 पर 5 जून शुक्रवार
0: एक कहानी।
3: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए, पर्यावरण संरक्षण के साथ भूजल संचय कैसे करें, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार है डॉक्टर सुरभि जैन।
4: जीवन है, मैं डॉक्टर सुरभि जैन, आप सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। तो भाइयों और बहनों, आज हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के साथ भूजल संचय कैसे करें, क्यों करें। वर्षा का जल संचय महत्वपूर्ण तकनीकी के साथ हम उसको स्टोर कर सकते हैं और इसके लिए होने वाले लाभ और हानियों पर आज हम बात करते हैं। यह प्राकृतिक जल चक्र को संतुलित करने, पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाने और सूखे जैसी आपदाओं से निपटने में अत्यंत प्रभावशाली है। भूजल संचय करने के लिए वर्षा के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना और उसे बिना मिट्टी या रसायनों के नुकसान पहुंचाए सीधे जमीन के भीतर पहुंचाना सबसे प्रभावी तरीका है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि छत के पानी का संचय। अपने घर की छत के बारिश के पानी को एक पाइप के जरिए सीधे एक साथ लेकर एक बड़े सोखते गड्ढे यानी रिचार्ज पिट या पुराने सूखे कुएं में डालें। पानी को गड्ढे में भेजने से पहले चारकोल और रेत से फिल्टर का उपयोग करें ताकि मिट्टी और कचरा जमीन में ना जाए, ऊपर ही हटाया जा सके। ट्रेंच या फिर सोखता

हुआ गड्ढा बनाना। घर या बगीचे में खाली हिस्सों में छोटे छोटे गड्ढे बनाएं और उन्हें कंकड़, पत्थर और रेत से भरें। बारिश का पानी इसमें छनकर प्राकृतिक रूप से ज़मीन के अंदर चला जाएगा। देखिए बहनों, अगर हमारे क्षेत्र में पहाड़ी है तो पहाड़ी के ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे आप ट्रेंच बनाए जा सकते हैं, जिससे जल का संचय वहाँ पर होने लगेगा। पेड़ पौधे लगाना सबसे अच्छा विकल्प है। अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। पौधों की जड़ें ज़मीन में पानी को सोखने की क्षमता को बढ़ाती हैं और मिट्टी का कटाव रोकती हैं। कंटूर बंडिंग, यानी कि यदि आप कृषि भूमि या खेत के आसपास हैं तो आपको मेड़बंदी करना सबसे अच्छा रहेगा। इससे खेत का पानी खेत में ही रुकता है और सीधे धीरे धीरे भूजल स्तर को रिचार्ज करता है। पार्क और खुले स्थानों का प्रयोग करें। कॉलोनियां या सार्वजनिक पार्कों में वाटर रिचार्जिंग जोन बनाएं। पक्की सड़कों के बजाय मिट्टी या पेवल ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें ताकि पानी रिसकर ज़मीन में जा सके। देखो साथियों, ऐसा करने से जल स्तर में सुधार होगा। भूजल संचय से जल स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है, जो कृषि और पेयजल के लिए दीर्घकालिक स्रोत है। मिट्टी का कटाव कम होना, वर्षा का जल को ज़मीन के अंदर भेजने से सतह पर बहने वाले पानी का वेग कम होता है, जिससे मिट्टी का क्षरण रुकता है और उपजाऊ मिट्टी बचती है। ऊर्जा की बचत होती है। जब पानी प्राकृतिक रूप से ज़मीन में रिचार्ज होता है तो नलकूपों का उपयोग कम होता है। इसमें भारी बिजली और धन की बचत होती है। बाढ़ पर नियंत्रण होता है। भारी बारिश के दौरान शहरों और गांवों में जल भराव या बाढ़ जैसी स्थिति से बचाव होता है। जैव विविधता का विकास होता है। नमी और जल उपलब्धता बढ़ाने में स्थानीय पेड़ पौधे और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास सुरक्षित होते हैं। जहाँ पर इसके बहुत सारे लाभ हैं, वहाँ पर कुछ हानियाँ भी हैं। इसमें प्रारंभिक लागत अधिक होती है, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और बड़े संचय टैंक लगाने में शुरुआत में थोड़ा सा खर्च आता है। नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि संचय प्रणालियों को साफ रखना आवश्यक है। यदि पानी बिना फिल्टर किए ज़मीन के अंदर डाला जाए तो भूजल दूषित हो सकता है। फिर ये बारिश पर निर्भर होता है। यह तकनीक मुख्य रूप से मानसूनी बारिश पर निर्भर है और कम बारिश वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव सीमित हो जाता है। इसके लिए बड़े बड़े स्थान की भी आवश्यकता है। बड़े स्तर पर भूजल संचय करना हो और तालाबों का निर्माण के लिए काफ़ी खाली जगह की ज़रूरत होती है। जो घनी आबादी वाले शहर हैं या उन क्षेत्रों में तो ये संभव नहीं है। भूजल संचय और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। अपने क्षेत्र के अनुसार जल संरक्षण की सटीक योजनाओं और नीतियों की जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय नगर निगम कार्यालय या फिर जल संसाधन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। जल संचय नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार वर्ष 2002 से लेकर 2025-26 के बीच भूजल स्तर प्रतिवर्ष 10 से 25 मिलीमीटर कम हो गया है। भारत की कुल सिंचाई का लगभग 60% पीने का पानी और लगभग 85% हिस्सा भूजल से ही आता है। भूजल के लगातार घटने से कृषि की उत्पादकता और पेयजल उपलब्धता का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस संकट से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन, जल निकायों का पुनरुद्धार और अटल भूजल योजना व जल शक्ति अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी व भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। कई क्षेत्रों में हमारे भूजल और सतही जल भंडार अत्यधिक उपयोग के खतरे में हैं। विगत 60-70 वर्षों से सतही जल और भूजल का अत्यधिक असंतुलन हो रहा है और भारत में सबसे गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बीच बीच में अत्यधिक दोहन के कारण देश में भूजल का स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अकेले उत्तरी भारत में अगर देखें तो इस समय लगभग 450 क्यूबिक किलोमीटर भूजल नष्ट हो गया है और प्रतिवर्ष यह कम होता ही जा रहा है। और हम अपने घरों में भी देखें तो कितना जल का हम दुरुपयोग करते हैं। जहाँ पर हम थोड़े से पानी का उपयोग में काम चला सकते हैं, वहाँ पर हमें तिगुना पानी लगता है। और अब तो जो आरओ सिस्टम लगाए हमने, वाटर फिल्टर, उनमें भी तिगुना पानी हमारा वेस्ट होता है। बहुत सारे लोग उस पानी का सदुपयोग

0: नहीं करते। यदि आप उस आरओ फिल्टर से फिल्टर किया हुआ पानी, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसको भी आप अगर पौधों में या फिर हमारे घर की साफ सफाई में प्रयोग करें, तो बहुत सारा जल हमारा बच सकता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें जल का सदुपयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। देखिए, कृषि पद्धति प्रधान ये हमारा देश है, और इस कृषि पद्धति के माध्यम से भूमि एवं जल का संरक्षण दूसरी पंक्ति की सुरक्षा में कहा गया है, जबकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भूमि उपयोग नियोजन में जल संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्षा जल प्रबंध प्रणालियाँ तूफानी जल के बहाव को कम करती हैं और इस प्रकार बाढ़, कटाव और भूजल प्रदूषण को कम करती है। जल संरक्षण के से हम भूजल स्तर के में गिरावटों से झीलों और नदियों के सूखने को रोक सकते हैं। खासकर सूखे के समय में इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। भारत की सिंचाई के लिए मुख्य रूप से भूजल पर ही निर्भर है, और यह भूजल की कुल वैश्विक मात्रा का लगभग बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करता है। भारत में करीब 70% खाद्य उत्पादन नलकूपों पर ही निर्भर है। इस भूजल संरक्षण से जमीन पर रसायन का या कचरा डालने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि यदि हमने पानी को गंदा किया तो उससे हमारे जल संसाधन दूषित होंगे और उचित तरीके से हम जल का संरक्षण नहीं कर पाएंगे। यह जल संरक्षण जलवायु परिवर्तन में भारी हमें मदद करता है। भारत के डेल्टा क्षेत्रों में संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। यह शहरों और ग्रामीण इलाकों में जल भराव रोकने में मदद करती है। इसके लिए बहुस्तरीय जल निकासी नेटवर्क, फ्लूट प्रूफ निर्माण, जलाशय आदि का निर्माण महत्वपूर्ण है। जलाशयों की सफाई नियमित आवश्यक है। जल में प्लास्टिक या फिर केमिकल युक्त कागज, फैक्ट्रियों आदि से प्रदूषित निकला हुआ वेस्ट जल कभी भी मिक्स ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने संसाधनों की सुरक्षा करेंगे तो ही ये हमारे लिए जीवनदायी बनेंगे। जल की हर बूंद जरूरी है, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, सीखिए कैसे घरेलू स्तर पर हम जल का बचाव कर सकते हैं और अपने जल संरक्षण संसाधनों को बचा कर रख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी इसी बात को समझ गए होंगे कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो हम सब मिलकर, एकजुट होकर अपने जल संसाधनों की सुरक्षा करें। इसी भावना के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र।
1: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, पर्यावरण संरक्षण के साथ भू जल संरक्षण कैसे करें। वार्ताकार डॉक्टर सुरभि जैन। FM बैंड 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित करेंगे।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अप...

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्फी रोड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय प्रवास पर उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में भी शीघ्र लागू होगी समान नागरिक संहिता, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश के हर जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फीडर सेंटर स्थापित होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की

0: भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून लागू हो, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही मध्यप्रदेश में देश का UCC लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। इसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनजाति समुदाय को यूसीसी से पृथक रखा जाएगा। उन्हें अपने पारंपरिक रीति रिवाज मानने की स्वतंत्रता होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल नई दिल्ली में आयोजित एक कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की उन योजनाओं की जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आर्थिक मामलों की समिति ने मध्य प्रदेश में 4,415 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण सौगात से प्रदेश की जनजातीय बहुल जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी। साथ ही हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस परियोजना में खरगोन जिले में एक ग्रीनफील्ड बाईपास भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: राजमार्ग की जो सौगात मिली है मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता हूँ और बधाई देता हूँ। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी ये चारों

0: हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4,415 करोड़ से लगभग दो जो सड़कें की सौगात मिली, दो परियोजनाएं, ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी।
1: उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल की है। वे अब राजधानी भोपाल में नियमित रूप से ईवी कार से ही यात्रा करेंगे। ये ईवी मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने, फीचर्स की विधिवत जांच और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का बारीकी से पालन करने के बाद मुख्यमंत्री के लघु कार किट में कल से शामिल कर ली गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 5 जून से शुरू हो रहे विशेष जनकल्याण अभियान के तहत प्रदेश भर में वृहद पौधरोपण के निर्देश दिए हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में फीडर सेंटर

अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 5 जून से शुरू हो रहे विशेष जनकल्याण अभियान के तहत प्रदेश भर में वृहद पौधरोपण के निर्देश दिए हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति मिलेगी। श्री सारंग कल भोपाल के टीटी नगर स्थित मेजर ध्यानचंद हॉल में टैलेंट सर्च अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों और खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अगले 24 घंटों में भी 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिजली गिरने की भी आशंका है। शिवपुरी में कोलारस की ग्राम पंचायत गोरा टीला में रात्रि चौपाल लगाकर प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। खंडवा में आज जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। आगरमालवा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे स्वच्छ गांव मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत मिशन लाइफ के अंतर्गत पेड़ पौधों की साफ सफाई संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मंदसौर जिले के आदर्श गांव बालागुड़ा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में कलेक्टर अदिति गर्ग ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। झाबुआ में कल विश्व क्लबफुट दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडौरी में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गुना के कुंभराज क्षेत्र के ग्राम बड़ौद में कल कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलान बतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:20 और 19 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक क्रम सुनहरे पत्र।

0: सुनहरे पत्र।
1: सुनहरे पत्र कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राखी जैन का नमस्कार। और आज मेरे साथ हैं
2: चिन्मय दीक्षित, आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का एक होस्ट भी। मेरा भी आप सभी श्रोताओं को तहे दिल से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और सुबह की सुप्रभात। राखी जी, आज मौसम बहुत अच्छा हो गया
1: सर,
2: है
1: सर, और आपने इतनी अच्छी गुड मॉर्निंग की है तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में बारिश की बूंदे आ
2: गई। बोलने वाला था कि मौसम आजकल कितना अच्छा रूमानी हो गया है।
1: सही बात,
2: खंडवा का पूरी आबो हवा बदल गई है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नौतपा के अंतिम कुछ दिन
1: निकले।
2: बहरहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पास खतों के पुलिंदे बहुत ज्यादा हैं, और ये एक आप बात कर रहे थे कि पिछले सप्ताह शायद कुछ
1: ये रह गया था, तो मैं सबसे पहले उसी हमारे पत्र से
2: चलिए आज आरंभ करते हैं, उस पत्र से जो पिछले सप्ताह रह गया था।
1: बिल्कुल, पहला ये हमें मेल भेजा है मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल और कमला पटेल ने। ये लिखते हैं, 21 मई प्रसारित सुनहरे पत्र सुना जिसे नीलम त्रिपाठी एवं चिन्मय दीक्षित जी ने प्रस्तुत किया था, वो काफ़ी लाजवाब लगा, क्योंकि जिस प्रकार हम बड़ी तन्मयता के साथ में पत्र भेजते हैं और उसी तन्मयता के साथ जब हमारे पत्रों के जवाब दिए जाते तो हमें बहुत खुशी होती। कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति के लिए ये धन्यवाद दे रहे हैं। 25 मई को प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा सुना जिसे प्रस्तुत किया दीपमाला शिंदे श्वेता सोनी जी ने, कार्यक्रम इन्हें पसंद आया। 26 मई को प्रसारित कार्यक्रम आस्था के स्वर चिंतन श्री रामचरित मानस गान के साथ साथ आपके मीते गीत कार्यक्रम सुना जो इन्हें पसंद आया है।

0: 27 मई को 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत गर्मी से कैसे बचे इस विषय पर देवांश बिडोले जी की वार्ता सुनी वो उपयोगी लगी। इसी दिन साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म के अंतर्गत फिल्म नायक के सुमधुर गीत और कहानी इन्हें पसंद आई है। प्रशांत मालवी जी को ये दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहे हैं। दिन का कार्यक्रम आपके मीत गीत कार्यक्रम सुना उसके लिए ये प्रशांत जी को बधाई दे रहे हैं।
1: धन्यवाद आपको, आपने लगभग समस्त कार्यक्रमों की जो 2 सप्ताह पहले प्रसारित हुए थे उनकी तारीफ करी है और आपको कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आई ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। इन्हें प्रस्तुत करने वाले हमारे उद्घोषक साथियों को भी आज बहुत आनंद मिला होगा।
0: अगला मेल हमें भेजा है, ये भेजने वाले सीतामऊ से नाटाराम दशरथ सेन।
1: अच्छा।
0: ये लिख रहे हैं कि हमने फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में कुछ बदलाव के लिए आपको ईमेल किया था, तो कुछ बदलाव हुआ है क्या आप हमें बताएं।
1: फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है और शायद ये जानना चाह रहे हैं कि इसका क्या समय रिकॉर्डिंग का समय बदला है या प्रसारण का समय। नहीं, रिकॉर्डिंग आपकी वही बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन 11 बजे से होती है और प्रसारण जो है वो रविवार को होता है सुबह 10:05 से। तो सुनिएगा जरूर और फोन भी करिएगा।
0: बिल्कुल। अगला मेल हमें भेजा है कवर कॉलोनी बरवा से प्रवीण शिमाली ने। ये लिखते हैं 15 मई को सुनहरे पल के अंतर्गत फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर उनके फिल्मों के गीत सुनवाए गए, पसंद आया। विद्या जी और कीर्ति जी की अनूठी प्रस्तुति थी। 16 मई को चेतना के अंतर्गत स्वास्थ्य भेंट वार्ता प्राकृतिक चिकित्सा विषय पर डॉक्टर साहब से जो मूले जी की चर्चा थी वो इन्हें पसंद आई। इसी दिन सुनहरे पल में राहुल देव बर्मन और किशोर कुमार के ऊपर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया था वो पसंद आया। 17 मई को हमारे श्रोता के अंतर्गत सनावत के श्रोता भाई विजय सोनी से पंकज लाड़ जी की जो बातचीत थी वो इन्हें पसंद आई। 19 मई को विविधा के अंतर्गत मोहित कुमार का काव्य पाठ ने हमारा मन मोह लिया। मन की बात, जल का संरक्षण करें, जल है तो कल है, स्वच्छता ही सेवा है। एक अपील सभी श्रोता बंधुओं से, सर्वप्रथम तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि आपदा कैसी भी हो प्रकृति ही हमारे बचाव का एकमात्र साधन है। प्रकृति देती है हमें सब कुछ, हमें भी कुछ देना चाहिए। बेहतर पर्यावरण के लिए पौधारोपण से अच्छा कोई विकल्प नहीं है।
1: क्या बात कही है।
0: और आगे लिख रहे हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस है तो एक पौधा सभी लगाए।
1: जरूर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। पर्यावरण संबंधी जागरूकता लाने का ये जो आपका पत्र है ये हमें बहुत अच्छा लगा और इस पत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे जितने श्रोता बंधु हमें सुन रहे होंगे वो आपके इस आह्वान पर जरूर जरूर एक पौधा इस बार 5 जून को या तो अपनी माँ के नाम या अपने पितरों के नाम या अपने साथियों के नाम या प्रकृति के नाम लगाएंगे। तो
0: 5 जून जरूरी नहीं है हमारा कोई भी स्पेशल ओकेजन हो,
1: तो उस दिन
0: भी
1: हम है।
0: नहीं, 5 जून तो है ही है,
1: बहुत जरूरी
0: नहीं, 5 जून तो जरूरी है, विश्व पर्यावरण दिवस है,
1: बट ये करना ही चाहिए।
0: बट उसके अलावा भी कोई विशेष ओकेजन पर हम कर सकते हैं,
1: पर इस दिन तो जरूर
0: जरूर लगाना चाहिए। बिल्कुल,
1: अगला तो हमारे पृथ्वी के प्रति हमारा कर्तव्य
0: बनता है। बिल्कुल सही बात है। अगला मेल हमें भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अरविंद सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी और इनके परिवार के सदस्यों ने। ये लिखते हैं, हम आकाशवाणी खंडवा के निमिष श्रोता है, आपके यहाँ से प्रसारित हेलो फरमाइश एवं आपके मीते गीत कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। सुनहरे पत्र कार्यक्रम भी हमें बेहद पसंद आता है।
1: क्या बात है, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको यहाँ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं और ये जानकर और खुशी हुई कि नियमित श्रोता हमें निरंतर पत्र भी लिख रहे हैं।
0: अगला मेल हमें भेजा है संजय मार्कंडेय ने बड़ा बम चौक खंडवा से। ये लिखते हैं, पेशकर्ता को हमारा नमस्कार। विद्याधर मूले और रश्मि तिवारी जी की प्रेरणा पद जो बातचीत थी वो सुनी। सुगम संगीत में बशीर बद्र की गजलें सुनी वो इन्हें पसंद आए। ये एक शिकायत कर रहे हैं।
1: हाँ हाँ बताइए।
0: कि पिछले 2 सप्ताह से फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीते गीत में हमारा ईमेल शामिल नहीं किया गया, क्या कारण है।
1: देखिये, ईमेल्स की अधिकता के कारण आपका ईमेल रह गया होगा जो शामिल नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, आगे शामिल हो जाएगा। देखिए, पत्रोत्तर में आज आपका ईमेल शामिल हो गया
0: सही
1: तो
0: है।
1: ऐसा कुछ भी मन में ना लाइए और ईमेल भेजते रहिए। नंबर रैंडमली लगते हैं तो वो रैंडमली आपका भी ईमेल शामिल हो जाएगा।
0: अगला मेल हमें भेजा है अहमदपुर खेगांव से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली और समर फुलमाली ने।
1: हाँ, क्या
0: ये लिखते हैं, गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया था विद्याधर मूले और मनीष शर्मा जी ने वो इन्हें पसंद आया। सर ये लिख रहे हैं, आगे एक शिकायत।

0: हाँ हाँ बताइए।
1: सोमवार और मंगलवार आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में जिन उद्घोषकों ने कार्यक्रम पेश किया था उन्होंने स्थानीय श्रोताओं के ईमेल शामिल नहीं किए और लिख रहे हैं कि उनके मेल को नजरअंदाज किया, ऐसा क्यों?
0: वही वही बात है कि ऐसा होता है, ये रैंडम सिलेक्शन होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि ईमेल छूट जाते हैं कुछ लोगों के जो वो बाहर रहा करते हैं या बाहर से लिखते हैं और उनके ईमेल नहीं लिए जाते हैं। तो अमूमन जो नियम तहत तो ऐसा होना चाहिए कि एक कार्यक्रम में एक श्रोता के नाम आने के उपरांत उसको कम से कम एक या दो सप्ताह तक या दो महीने तक जो है फिर या तो फ़ोन या ईमेल नहीं करना चाहिए या उससे बचना चाहिए, परंतु यदि ऐसा करेंगे तो वो हमारे श्रोता दूर हो जाएंगे।
1: सही बात।
0: इसलिए हम चाहते हैं हम उसका एक एक जैसा मैंने अभी कहा रैंडम रूप से है ना, अनियमित रूप से, उसका कोई नियम नहीं है, सीधे सीधे जो सामने आता जाता है वो लेते जाते हैं और बस इसका ध्यान रखते हैं कि रिपीटेशन ना हो।
1: हाँ।
0: बस इतना प्रयास करते हैं और कुछ भी नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई भी फिल्टर नहीं लगता है किसी भी श्रोता के ईमेल को रोकने के लिए। जी
1: अगला मेल हमें भेजा है सांगली महाराज से हनुमान शिंदे, ऋषिकेश शिंदे और इनके परिवार के सदस्यों ने।
0: अच्छा।
1: ये लिख रहे हैं 30 मई को प्रसारित स्वास्थ्य विषय प्रोग्राम चेतना उपयुक्त लगा, इसमें डेंटल इम्प्लांट इस विषय पर दी गई जानकारी इन्हें पसंद आई कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, इस पर डॉक्टर अदिति शर्मा ने बहुत अच्छे से जानकारी दी।
0: क्या बात है, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको ये जो प्रस्तुति थी वो पसंद आई। मुझे पूरे यकीन है कि जो विशेषज्ञ थे यदि वो ये आज का कार्यक्रम हमारा सुन रहे होंगे तो उन्हें भी बहुत हर्ष होगा कि उनकी ये जो मेहनत थी वो सार्थक हुई।
1: बिल्कुल। अगला मेल हमें भेजा है मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार और हसनैन पवार ने, और इसी के साथ इसमें नाम लिखा है ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े और वनिता गंगराड़े का।
0: अच्छा
1: सर, यही शिकायत इनकी भी
0: है,
1: हमारे नाम नहीं शामिल किए गए आपके गीत
0: कार्यक्रम में। अच्छा।
1: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम
0: वही
1: में।
0: वही जवाब है कि ऐसा रैंडमली हुआ होगा। हाँ, ऐसा हाँ। जानबूझकर किया जाने वाला बिल्कुल भी ये वो नहीं है यत्न।
1: आगे ये लिख रहे हैं सुनहरे पत्र कार्यक्रम में विद्याधर मूले जी और मनीष शर्मा जी ने श्रोताओं के पत्र और ईमेल के जवाब बेहद सटीक, सही और लाजवाब अंदाज में दिए, उसके लिए ये साधुवाद दे रहे हैं।
0: धन्यवाद।
1: उसी दिन का आपकी पसंद कार्यक्रम जो मनीष शर्मा जी ने प्रस्तुत किया था वो भी इन्हें पसंद आया। शनिवार को सुनहरे पल कार्यक्रम, आपके मीत ये गीत कार्यक्रम पसंद आया। रविवार का फोन करें गीत सुने कार्यक्रम जो मनीष शर्मा ने प्रस्तुत किया था वो इन्हें पसंद आया है। मंगलवार को सुगम संगीत कार्यक्रम और लोक रंजनी कार्यक्रम की प्रस्तुति इन्हें पसंद आई। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर अभिनीत फिल्म जुदाई की कहानी और गीत सुनकर मन मयूर नाच उठा। इसके लिए ये विद्या सिंह चौहान जी को बधाई दे रहे हैं।
0: वाह बंधु वाह, आज आपने विद्या सिंह चौहान जी का दिन बनवा दिया।
1: और शाम की सभा में युववाणी कार्यक्रम की पेशकश बहुत पसंद आई, युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स दिन ब दिन लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, ये कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा लगता है।
0: मैं अपने सभी श्रोताओं से एक आग्रह करना चाहूंगा, सर्वप्रथम तो आपको इस पत्र के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ ही मैं अपने सभी श्रोताओं से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जितने हमारे कंपेयर्ड कार्यक्रम होते हैं उसके लिए बहुत मेहनत हमारे जो कंपेयर हैं वो करते हैं, तो उसके विषय में समीक्षात्मक पत्र यदि आपके मिलने शुरू हो जाएं तो मुझे लगता है कि ना केवल उनकी हौसला अफजाई होगी बल्कि उनको ये भी समझ में आएगा कि आकाशवाणी के जो उनके सुनने वाले श्रोता हैं उनका रुख और रुझान कैसा है। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और लिख कर बताइएगा आपको कार्यक्रमों के विषय में।
1: अगला मेल हमें भेजा है शिगांव महाराज से मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल, मोहम्मद जुनेद मोहाल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये लिखते हैं गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के ईमेल और पत्र शामिल किए गए, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता विद्याधर मूले और मनीष शर्मा को ये बधाई दे रहे हैं। आगे ये लिखते हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म जुदाई की कहानी और सुमधुर गीत सुनकर दिल
0: खुश हो गया,
1: झूम गया, यादगार और दिलकश पेशकश के लिए विद्या सिंह चौहान जी को बधाई दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग खंडवा, सुनहरे पल, सुगम संगीत चेतना और सप्ताह भर के आपके मीते गीत कार्यक्रम, युववाणी, किसानवाणी, बाल जगत और फोन करे गीत सुने कार्यक्रम, हेलो फ्रेंड, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक, इन्हें सारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं।
0: क्या बात है, आपको लगभग समस्त कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आई है, धन्यवाद आपका इस पत्र के लिए।
1: अगला मेल हमें भेजा है रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, शिवी सालोनी और इनके परिवार के सदस्यों ने। ये लिखते हैं आकाशवाणी खंडवा के

0: शिष्य कार्यक्रम और विविधा चेतना में दी जाने वाली जानकारी अन्य केंद्रों से अलग हटकर होती है और प्रस्तुतिकरण सराहनीय होता है। सोमवार सुनहरे पल, सोमवार को सुनहरे पल नहीं, इन्होंने गलत लिख दिया, उस दिन गुड मॉर्निंग खंडवा रहता है। गुड मॉर्निंग खंडवा में प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। एक ही फिल्म से में फिल्म जुदाई के गीत और संगीत पटकथा की तारीफ तो बनती है। विद्या सिंह चौहान जी को इस शानदार प्रस्तुति के लिए बधाई दे रहे हैं और रविवार का फोन करी गीत सुने कार्यक्रम इन्हें पसंद आया। सुमन कल्याणपुर जी को समर्पित सुनहरे पल की प्रस्तुति भी इन्हें पसंद आई है।
1: बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा कि विभिन्न प्रकार के जो प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद आपका इस पत्र के लिए।
0: अगला मेल हमें भेजा है कलनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार, हीना सईद और अलमास पानोनी, ये लिखते हैं, सुनहरे पत्र कार्यक्रम की पेशकर्ता मेजबान साहिबान को हमारा प्यार भरा नमस्ते, आदाब।
1: आदाब।
0: आकाशवाणी खंडवा के हरदील अजीज कार्यक्रम में गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में विद्याधर मूले जी और मनीष शर्मा जी की उपस्थिति सराहनीय रही, आप दोनों को बधाई। बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म जुदाई की कहानी और गीत संगीत ने दिल खुश कर दिया। इसी दिन आपके मीते गीत कार्यक्रम भी इन्हें पसंद आया है। रविवार का फोन करे गीत सुने कार्यक्रम इन्हें पसंद आया है। आप सुनहरे पल, रागरंग, युववाणी, हेलो फ्रेंड्स और किसान वाणी कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम की प्रस्तुति लाजवाब और यादगार रहती है। युववाणी में पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीत कार्यक्रम को फिर से शुरू करें तो बड़ी मेहरबानी होगी।
1: युववाणी में फरमाइशी गीतों, फरमाइश पर आधारित गीतों का एक चंक है जो प्रसारित होता है। ये जो आप दूसरा एक और बोल रहे हैं उसको आरंभ करने के लिए जो अभी निर्धारित जो कार्यक्रम जा रहे हैं उनमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा, तो इसके जब इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें और हमने आपका सुझाव जो है वो सूचीबद्ध कर लिया है, इसको हम शामिल करने का प्रयत्न करेंगे।
0: अगला मेल हमें भेजा है दादाजी धुनी वाले मार्ग खंडवा से हस्सू बाबा, मोइन, छोटू मोहम्मद फाजिल और इनके परिवार के सदस्यों ने, ये लिखते हैं, पिछले सप्ताह गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्र और ईमेल के जरिए प्राप्त सुझाव, शिकायत और प्रशंसा के बड़े ही निराले अंदाज में जवाब दिए गए, इसके लिए ये दोनों प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम श्रोताओं के दिलो दिमाग पर छा गया। रविवार का फोन करे गीत सुने कार्यक्रम बेहद यादगार और लाजवाब रहा। दोनों कार्यक्रम के लिए प्रस्तुतकर्ता मनीष शर्मा जी को ये बधाई दे रहे हैं। बुधवार का एक ही फिल्म से कार्यक्रम इन्हें पसंद आया है। आगे ये लिख रहे हैं, आपकी पसंद नारी जगत, बाल जगत, युववाणी, हेलो फ्रेंड्स, किसानवाणी आदि सभी कार्यक्रम रोचक लगते हैं। युववाणी कार्यक्रम में युवाओं की पसंद पर आधारित फरमाइशी गीत कार्यक्रम को फिर से शुरू करें तो
1: अच्छा, उन्हें पसंद। आप लोगों को युववाणी में और खेती गृहस्थी में, किसानवाणी में क्या क्या पसंद आता है, कौन सी वार्ताएं अच्छी लगती हैं, इस पर भी हमें लिखकर बताइएगा, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे।
0: बिल्कुल। अगला मेल हमें भेजा है सनावत से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मुस्सा और राजकुमार बोठाना ने, ये लिखते हैं, शुक्रवार के विशेष कार्यक्रम में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टर चिरंजीव ओझा से फिरदौस जी की जो बातचीत थी वो इन्हें पसंद आई है। नारी जगत कार्यक्रम में जल की बचत एवं पर्यावरण सुरक्षित के लिए आवश्यक भेंटवार्ता, विश्व तम्बाकू दिवस, तम्बाकू पर धूम्रपान से होने वाले दुष्ट प्रभाव पर समाज सेवी नमिता काले जी से जो रंजना जोशी की बातचीत थी वो इन्हें पसंद आया है।
1: शनिवार अच्छा के जानकर,
0: शनिवार के विशेष कार्यक्रम में माँ और पेड़ पौधे शीर्षक पर कवि अश्विनी गुप्ता जी से जो काव्य पाठ हमने सुनवाया था वो इन्हें पसंद आया है। चेतना कार्यक्रम में आदिति शर्मा जी से जो विद्याधर मूले जी की बातचीत थी, दंत चिकित्सा के नए आयाम विषय पर जो जानकारी थी वो इन्हें पसंद आई है।
1: अच्छा लगा हमें जानकर कि आपको कार्यक्रमों में जो विभिन्न प्रस्तुतियां थी वो पसंद आई। पत्र लिखने के लिए आपका आभार।
0: अगला मेल हमें भेजा है प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी ने, ये लिखते हैं, शनिवार को चेतना कार्यक्रम में डॉक्टर अदिति शर्मा से दांतों के इम्प्लीमेंट पर चर्चा हम सबके लिए लाभदायक लगी। इसी दिन वरिष्ठ उद्घोषक विद्याधर मूले जी द्वारा सुनहरे
1: इम्प्लांट पर, दांतों के इम्प्लांट पर
0: कार्यक्रम एवं आपकी मीते गीत कार्यक्रम में गीतों की प्रस्तुति लाजवाब रही।
1: अच्छा।
0: रविवार को उद्घोषक मनीष कुलकर्णी द्वारा सुनहरे पल कार्यक्रम में शानदार गीतों का चयन एवं प्रस्तुति शैली बहुत अच्छी लगी। सोमवार को गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में उद्घोषिका फिरदौस जी द्वारा पर्यावरण एवं जल संरक्षण पर वार्ता जागरूक कर रही थी। मंगलवार को आयशा मंसूरी जी द्वारा डिजिटल

0: फोटोग्राफी पर जो इन्हीं के साथ जो वार्ता थी वो इन्हें अच्छी लगी है और एक ही फिल्म से की ये तारीफ कर रहे हैं।
1: आपको विभिन्न आपने कार्यक्रमों में आपको क्या क्या पसंद आया ये लिखकर आपने हमें बताया, ये जानकर हमें खुशी हुई। खत लिखने के लिए आपका धन्यवाद।
0: अगला मेल हमें भेजा है नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक, भावना वर्मा और इनके परिवार के सदस्यों ने। ये लिखते हैं हमें, आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। 3 जून बुधवार का एक ही फिल्म से कार्यक्रम हमें अच्छे लगा। फिल्म जुदाई की कहानी और गीत इन्हें मनभावन लगे। इसके लिए विद्या सिंह चौहान जी को बधाई दे रहे हैं।
1: अच्छा लगा कि आपको ये कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आई। मुझे लगता है कि ये जिन सारे श्रोताओं का जिक्र, ये जिन सारे प्रस्तोताओं का जिक्र हमारे श्रोता कर रहे हैं उनसे आज उनका भी दिन अच्छा होता जा रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगला मेल हमें भेजा है सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे, साक्षी, ऋतुराज, पूर्णिमा पटेल और इनके परिवार के सदस्यों ने।
1: जी,
0: ये लिख रहे हैं हमें, आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 2 तारीख मंगलवार का लोकरंजनी कार्यक्रम इन्हें पसंद आया है। इस कार्यक्रम में श्रोताओं के फरमाइश पर जो निमाड़ी लोकगीत सुने वो इन्हें पसंद आए हैं। इसके लिए ये प्रतिमा पहारे जी को बधाई दे रहे हैं।
1: धन्यवाद आपको आपके इस पत्र के लिए। हमें अच्छा लगा जानकर कि आपको कार्यक्रम की प्रस्तुति पसंद आई और आगे भी हमें यूं ही खत लिखते रहिएगा।
0: अगला मेल हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने। ये लिखते हैं हमें, आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 3 जून बुधवार का एक ही फिल्म से कार्यक्रम इन्हें पसंद आया है। ये कार्यक्रम में फिल्म जुदाई की स्टोरी और गीत बहुत अच्छे लगे। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए विद्या सिंह चौहान जी को बधाई दे रहे। इसी दिन का नारी जगत कार्यक्रम भी इन्हें पसंद आया है। इस कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस पर दी गई जानकारी और भेंट वार्ता बहुत अच्छी लगी। आम के पापड़ की रेसिपी और गीत बहुत अच्छे लगे। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए शीतल बाहेती जी को बधाई दे रहे हैं।
1: अरे वाह, आज आपने शीतल बाहेती जी का भी मतलब दिन बनवा दिया। और आपके इस पत्र के लिए, इतने प्यारे से पत्र के लिए आपका धन्यवाद।
0: अगला मेल हमें भेजा है नेपा नगर से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे ने। ये लिखते हैं हमें, आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। 3 जून का आस्था के स्वर कार्यक्रम इन्हें पसंद आया।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: अगला मेल हमें भेजा है झिरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह गौड़, सचिन पलक, अंतिम, श्रुति, यशराज, किट्टू, वैभव, परी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये लिखते हैं, बुधवार को जुदाई फिल्म के गाने और जो स्टोरी हमने सुनवाई थी वो इन्हें पसंद आया। इसके लिए विद्या सिंह चौहान जी को बधाई दे रहे हैं। चेतना में दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अदिति शर्मा से जो हमने विद्याधर मुले जी की जो बातचीत थी वो इन्हें पसंद आई है। रविवार का फोन करे गीत सुने कार्यक्रम भी इन्हें पसंद आया है। उसके लिए ये मनीष शर्मा जी को बधाई दे रहे हैं।
1: धन्यवाद आपका। देखिए, आपने आज इतने सारे लोगों का दिन बना दिया आपके इस पत्र के माध्यम से। मैं अपने सभी उन श्रोताओं से कहना चाहूँगा जिन्होंने ये हमसे आग्रह किया था कि उन्हें युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता है। हमारे जितने सारे खंडवा के युवा हैं उन सबको मुझे ऐसा लगता है कि वो साथ साथ अपने करियर बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे, अपने किसी न किसी फुट पे तैयारी कर रहे होंगे। हमारा एक बहुत अनूठा कार्यक्रम आता है जो आकाशवाणी खंडवा के माध्यम से प्रसारित होता है और इस देश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग 9:15 रात को इस कार्यक्रम को सुनते हैं और क्या उसके नोट्स बनाते हैं ये लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। और अब इन पत्रों के साथ साथ चलिए अब आपको ले चलते हैं सुरमई दुनिया की ओर। तो इस प्यारे से नगमे का आनंद लीजिए।

0: साथियों, ये गाना आपको कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। ये एक जमाने में मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना हुआ करता था।
1: ये आज भी अच्छा लगता है।
0: लगता तो है, देखिए ये आवाज ही इतनी प्यारी है कि कालजयी आवाज बन चुकी है।
1: वही वही वही। अगला मेल मैं ले लूं?
0: अवश्य।
1: अगला मेल हमें भेजा है सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सैन, हरी निवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी और दीपक सचिन कटारिया ने। ये लिखते हैं, 28 मई को सुनहरे पल कार्यक्रम, पत्र कार्यक्रम जो मनीष शर्मा जी और विद्याधर मूले जी ने प्रस्तुत किया था वो इन्हें पसंद आया। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अश्विनी गुप्ता जी से कविता पाठ सुना, पेड़ मत काटो समाज को ऊपर उठाओ, इस तरह की कविताएं बहुत प्रेरणादायक लगी। चेतना कार्यक्रम के अंतर्गत दंत चिकित्सा के नए आयाम विषय पर जो आदिति शर्मा जी से विद्याधर मूले जी की बातचीत थी वो इन्हें पसंद आई। आगे ये लिख रहे हैं, शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग में दांतों का बहुत बड़ा महत्व है, उसकी सावधानी हमें किस तरह करना चाहिए यह जाना आप दोनों को धन्यवाद। सुनहरे पल कार्यक्रम के अंतर्गत उजाले अपनी यादों के अपने साथ ही रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। बशीर पत्र हमारे बीच नहीं रहे, उन्हीं को श्रद्धा सुमन के हिसाब से सुनहरे पल कार्यक्रम जो विद्याधर मूले जी ने प्रस्तुत किया

0: वो इन्हें पसंद आया है। और आगे ये लिख रहे हैं, विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सत्यनारायण चौहान जो अब हमारे बीच नहीं रहे, सबसे पहले उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित। उनकी रचना में प्राकृतिक प्रेम, पर्यावरण, जल है तो कल है, ऐसी रचनाएं सुनकर हम बहुत आनंदित हुए और उनका यह अनुभव निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सोनारे पल कार्यक्रम के अंतर्गत आयशा मंसूरी जी ने राज कपूर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उन्हीं की फिल्मों के एक से बढ़कर एक गीतों को सुनाया। उनकी इस प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। एक ही फिल्म के अंतर्गत फिल्म जुदाई के गीत संगीत का आनंद हमने विद्या सिंह चौहान जी के साथ लिया, वो इन्हें बहुत पसंद आया है।
1: क्या बात है, आपने तो लगभग पूरे सप्ताह का सर्व समावेशी एक पत्र बना के हमको दिया। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा।
0: बिल्कुल,
1: देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आपने शामिल की हैं और वो बहुत सारी चीजों पर मैं आज के कार्यक्रम में शुरुआत से ही आप सबसे बात करना चाहता था। एक तो जो हमारे साथी नहीं रहे वो इतना आकस्मिक रूप से हुआ,
0: बिल्कुल,
1: कि हम खुद जैसे ही हमें खबर मिली हम सकते में आ गए थे, क्योंकि अभी एक दिन दो दिन पहले ही तो इनकी रिकॉर्डिंग हुई थी। इतना अच्छे से हंस बोल रहे थे हमसे और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे,
0: बिल्कुल,
1: है ना। और उनका अंतिम प्रसारण अभी उसके दो चार दिन बाद हुआ, शुक्रवार के दिन प्रसारित हुआ। दूसरा, बशीर बद्र जी का जिक्र बहुत बार आ रहा है। बशीर बद्र जी वो थे जिन्होंने मुझे उर्दू में अलिफ बे लिखना सिखाया था।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो मुझे बड़े बचपन से याद है जब वो आया करते थे घर पर। बशीर बद्र जी का जाना तो ऐसा है कि मानिए हिंदी साहित्य के जगत में, शायरी के दुनिया में एक अपूर्णीय क्षति है, है ना। उनके उनको जब भी उनका व्यक्तित्व था जो था उसके लिए उनको जब भी देखे कोई तो एक शेर उनका बड़ा मौजू शेर है और वही उनकी व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को बयां करने के लिए पर्याप्त होगा कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये ही बशीर बद्र जी का कृतित्व और व्यक्तित्व का जो है, मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर उनके मन में, मेरे मन में उनकी जो छाप है वो ऐसी रही है, तो वो भी एक अपूर्णीय क्षति रही। और इस पत्र में एक और जिक्र आपने किया था कि आपको न केवल युववाणी में ये जो बशीर बद्र जी का जिक्र पसंद आया, आपने युववाणी में इसके लिए आकाशवाणी के 90 वर्ष के ऊपर एक लघु नाटिका का प्रसारण भी किया गया था
0: जी,
1: तो उसके विषय में भी हम अपने श्रोताओं से जानना चाहेंगे कि क्या उनको वो अच्छी लगी, नहीं लगी, ज्यादा रोचक नहीं लगी या लगी, कैसा उनका उनकी प्रतिक्रिया थी, उसके विषय में भी हमें बताइएगा। युववाणी के हमारे जो बच्चे हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के समक्ष अपनी प्रस्तुति लाने के लिए, तो उस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।
0: बिल्कुल, अगला मेल हमें भेजा है कंडला बंदरगाह कच्छ भू से जगदीश चौरी, पूजा और पायल ने। ये लिखते हैं, खंडवा के आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम जिसमें खासकर निमाड़ी लोकगीत और सुगम संगीत हमें बेहद पसंद आता है। 3 जून को का कार्यक्रम जो विद्या सिंह चौहान ने प्रस्तुत किया था वो इन्हें पसंद आया। 29 तारीख को फिरदौस जी ने आपके मीते गीत कार्यक्रम लाजवाब अंदाज में पेश किया। 28 मई को आपकी पसंद कार्यक्रम जो मनीष जी ने प्रस्तुत किया था वो इन्हें पसंद आया है।
1: क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको विभिन्न प्रस्तुतियां पसंद आई और हमें ऐसे ही आप अपने क्या क्या चीजें आपको कार्यक्रमों में अच्छी लगती हैं ये लिख के बताइएगा तो हमें और अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल, अगला मेल हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी ने। ये लिखते हैं, हमें आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम पसंद आते हैं, सभी दोस्त जितने प्रस्तुतकर्ता बधाई के पात्र हैं। 28 मई का सुनारे पत्र कार्यक्रम इन्हें पसंद आया है, उसी दिन का सुगम संगीत भी इन्होंने पसंद किया है। 29 मई को ओम प्रकाश और साथियों से निमाड़ी लोकगीत जो प्रस्तुत किए थे वो पसंद आया। 30 मई को हरिहरन जी और घनश्याम दास वाधवानी की गाई चंद गजलें जो सुनवाई थी वो इन्हें पसंद आई है।
1: वाह, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको गजलों का कार्यक्रम पसंद आया, ये जानकर बहुत खुशी हुई और आगे भी आपके पत्रों की, ईमेल की सबकी दरकार रहेगी। अपने सभी श्रोताओं को मैं एक बात बताना चाहूंगा, हाल ही में मेरे एक श्रोता से मुलाकात हुई, किसी सिलसिले में उनका आना हुआ था तो अचानक यूं ही मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि हम पत्र नहीं लिखते पर हम आपके हर कार्यक्रम को सुबह से शाम तक सुनते हैं आकाशवाणी खंडवा के, तो हमने उनसे आग्रह किया कि कृपया ईमेल भेजा करें, हम तो सुनहरे पत्र में आपका कभी हमने नाम ही नहीं सुना है।
0: हाँ।

0: तो उन्होंने ये बताया कि एक जमाने में हम पोस्टकार्ड लिखा करते थे और फिर ईमेल तो हमें नहीं बनता है ज्यादा,
1: सही है।
0: तो अपने सारे श्रोताओं को जो भी मुझको आज सुन रहे हैं, मैं ये करबद्ध निवेदन करता हूँ आपसे कि आप हाथ से कागज पर चिट्ठी लिखकर भेजें, पोस्टकार्ड के माध्यम से भेजें, अंतरदेशीय पत्र भेजें, बिल्कुल आपके समस्त माध्यमों से, सिर्फ ईमेल ही नहीं, हर प्रकार के पत्र जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे और उनका स्वागत है।
1: बिल्कुल। अगला मेल हमें भेजा है धर्मपुरी से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम, शेख मुजफ्फर अयान और फैजान ने। ये लिखते हैं 29 मई को आकाशवाणी खंडवा की प्रातःकालीन बेला में प्रकृति की जीवंत और भव्यतम रचना तपस्या, सौंदर्य और जीवन के संघर्ष के प्रतीक अपनी मौजूदगी से प्रकृति में एक अनूठी और दर्शनीय छटा बिखेरते पर्वतों पर केंद्रित सुनहरे पल कार्यक्रम इन्हें पसंद आया है। इस कार्यक्रम में पर्वतों की सुंदरता को फिरदौस जी ने बहुत ही दमदार शब्दावली से पेश किया था। साथ ही पहाड़ों पर्वतों पर केंद्रित सुमधुर और कर्णप्रिय गीतों को सुनकर सोने पे सुहागा का काम किया। यकीनन आज की सुबह को प्रस्तुतकर्ता फिरदौस जी को ये इसके लिए बधाई दे रहे हैं।
0: किनका पत्र है ये?
1: ये है धर्मपुरी से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम।
0: शेख फहीम मोहम्मद जी, आपने तो उपमाओं की झड़ी लगा दी।
1: बहुत अच्छे
0: शब्द। बहुत दिनों बाद एक ऐसा पत्र मिला है जो बड़ा अच्छा सा प्रतीत हुआ पढ़ने में। यूं लगा कि मानो कहीं गुलजार की किसी शायरी को हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के पत्र कभी कभी यदा कदा मिलते हैं तो कार्यक्रम की शान और बढ़ जाती है। आपके इस पत्र को तो हम याद रखेंगे। ये हमारे साथ पूरे एक सप्ताह रहने वाला है। तो आगे भी हमें ऐसे ही पत्र लिखते रहिएगा। यकीनन उस दिन बहुत अच्छा, जो उस दिन की प्रस्तुति थी बहुत ही अच्छी और मेहनत से बनाई गई थी, और उस दिन पहाड़ों पर केंद्रित दिन भी था वो।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आपको ये पसंद आया, उनकी मेहनत सफल हुई, आज आपने उनका दिन बना दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
1: अगला मेल हमें भेजा है, ये सनावत से भेजने वाले हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री ने। ये लिखते हैं, रविवार का हमारे श्रोता कार्यक्रम के तहत दुर्गेश नागनपुरे से मनीष कुलकर्णी जी की जो बातचीत थी वो इन्हें अच्छी लगी। साथ ही बुधवार को एक ही फिल्म के तहत फिल्म जुदाई के गीत व कहानी जिसे विद्या सिंह चौहान जी ने अपने दिलकश अंदाज में पेश किया था वो इन्हें पसंद आया है।
0: क्या बात है, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आई और श्रोता बंधु से की गई जो चर्चा थी वो भी आपको अच्छी लगी।
1: अगला मेल हमें भेजा है, ये है भेजने वाले लवकुश नगर खंडवा से पिनेंद्र गुप्ता।
0: अच्छा।
1: ये लिखते हैं, डिजिटल फोटोग्राफी पर आनंद जोशी जी से जो बातचीत थी आयशा मंसूरी की वो इन्हें पसंद आई है।
0: वो यकीनन बहुत अच्छी बातचीत थी और मुझे ऐसा लगता है फोटोग्राफी के जो कला प्रेमी हैं, इस कला के जो प्रेमी हैं, उनको ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। कई गुर उन्होंने इसके बताए थे, तो मुझे अच्छा लगा कि आपको ये पसंद आई।
1: अगला मेल भी हमारा इसी भेंटवार्ता के लिए, ये भेजने वाले हैं अजय चौरे, रक्षा चौरे, भोपाल से भेजा है इन्होंने।
0: अच्छा।
1: ये लिखते हैं, 2 जून को आकाशवाणी खंडवा से आनंद जोशी की जो बातचीत थी डिजिटल फोटोग्राफी पर वो इन्हें पसंद आई है।
0: हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये जो बातचीत थी ये आप सभी को कुछ एक प्रकार से डिजिटल फोटोग्राफर बनाने में सहायक होगी, क्योंकि आजकल जब हर हाथ में एक मोबाइल आ चुका है जो एक बहुत ही अच्छे खासे स्तर के कैमरे से युक्त होता है, तो आप सभी अपने आसपास की दुनिया के जो सौंदर्य हैं उसको खींच के तस्वीरों में और अभी सब लोगों के साथ साझा कर सकते हैं।
1: सर एक मेल है, ये एक लाइन इंग्लिश पे लिखी हुई है बट नाम नहीं है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। आई हियर रेडियो टॉक ऑफ मिस्टर आनंद जोशी विद आयशा मंसूरी जी ऑन डिजिटल फोटोग्राफी हेल्ड ऑन 2 जून एंड फाउंड वेरी नॉलेजेबल, थैंक्स आकाशवाणी खंडवा।
0: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नाम लिख के पत्र लिखते हमें तो हमें और खुशी होती है, हमें ज्ञान पड़ता कि आप कहाँ से लिख रहे हैं। आगे भी हमें अपने पत्रों के माध्यम से बताते रहिएगा कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं।
1: आज का मैं मेल ले रही हूँ आखिरी।
0: अच्छा जी बताइए।
1: ये भेजने वाले हैं शिव कोठी, ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, इंदौर से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा बाई चौधरी।
0: अच्छा।
1: ये लिखते हैं, पिछले सप्ताह का सुनहरे पत्र कार्यक्रम सुना वो इन्हें पसंद आया। कार्यक्रम में श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब बेहद सटीक शांतिपूर्ण तरीके से दिए गए। हमारे श्रोता कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे श्रोता थे वो बातचीत इन्हें पसंद आई। आपके मीत एक गीत कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया था पंकज लाड़ जी ने, और उसके लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं।

0: फिरदौस, कीर्ति गोखले, प्रशांत मालवीय, दीपमाला शिंदे, आरती शर्मा, श्वेता सोनी, तमाम साथियों को ये विशेष धन्यवाद दे रहे हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा के लिए ये बहन फिरदौस जी को बधाई दे रहे हैं।
1: अच्छा।
0: हमारे निमाड़ की संस्कृति पर आधारित निमाड़ी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी, जिसे बड़े शांतिपूर्वक सुनते हैं। इस सप्ताह युववाणी से निकलकर दूसरी बार कार्यक्रम प्रतिमा पहारे जी की सुमधुर आवाज में इस कार्यक्रम का आनंद लिया, इसके लिए ये उन्हें बधाई दे रहे हैं। बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म जुदाई की कहानी व गीत इन्हें पसंद आए।
1: क्या बात है भैया, आपने तो बड़े विस्तार से बताया और लगभग सारे प्रस्तोताओं के नाम ले लिए हैं आपने, तो आज तो आपने इन सभी का दिन बनवा दिया। और हम आपसे भी यही आग्रह करेंगे कि हमें ये जरूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको लोकरंजनी कार्यक्रम पसंद आया है और लोकरंजनी की प्रस्तुति अच्छी लगी। प्रतिमा पहारे जो है वो और भी ऐसे कई कार्यक्रमों में उपस्थित रहती हैं, तो उनका भी जिक्र किया आपने, उनको भी अच्छा लगेगा ये सुनकर आज का सुनहरे पत्र। हम आपसे ये आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे वो जो कार्यक्रम हैं, जो जैसे 9:15 का एक कार्यक्रम का मैंने जिक्र किया है ना, एक हमारा NCERT का उमंग कार्यक्रम आता है, एक हमारा भोपाल से कार्यक्रम प्रायोजित आता है वतन का राग
0: जी,
1: तो इनका
0: 8:30 बजे आता है।
1: बिल्कुल, इनके विषय में ये आपको कितना प्रेरित करते हैं, ये क्या कई बार ज्ञानवर्धक होते हैं या नहीं होते हैं, या आपको पता रहता है, उनके विषय में भी हम जानना चाहेंगे। ये भी जानना चाहेंगे कि युवा साथी जो हमारे सुन रहे हैं वो किस प्रकार के कार्यक्रमों को पसंद करते हैं और क्या और जानना चाहते हैं, करियर के बारे में उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, कि आकाशवाणी से उनको किस प्रकार से सहायता मिल सकती है, वो हमें लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल अब घड़ी जो है वो ये इशारा कर रही है कि आज के कार्यक्रम को अब आपसे विदा लेते हुए समाप्त किया जाए, तो अनुमति दीजिए अपने मित्र चिन्मय दीक्षित को
0: और राखी जैन को।
1: आप सभी से अगले सप्ताह इसी समय फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए
0: नमस्कार।

0: सुनहरे पत्र।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुनहरे पत्र। आपके पत्रों के जवाब दे रहे थे चिन्मय दीक्षित और राखी जैन। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8 बजे हैं। अब समाचार
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
7: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई

0: प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
1: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार

0: को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
3: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
2: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल

0: में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्ते ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब सुनिए सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत में आज के हमारे कलाकार हैं लकी अली।

0: कहानी।
1: 5 जून है बेहद खास, क्योंकि है विश्व पर्यावरण दिवस और माह का पहला शुक्रवार। हम पेश करेंगे एक कहानी।
2: सच कहूं, अगर वो पौधे ना होते तो शायद मैं भी ना बचती। मैं अपने पौधों से बातें कर अपना सारा सुख दुख बांट लिया करती। हाँ सचमुच, मुझे हमेशा लगता था पौधे भी बोलते हैं।
1: जरूर सुनिएगा सुबह 7:20 पर, 5 जून शुक्रवार,
0: एक कहानी।
3: आकाशवाणी खंडवा से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत।

0: ध्वनि तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

लकी अली को इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में। ये प्रसारण है आकाशवाणी खंडवा का FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:30 होने को हैं। अब वतन का राग हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 23 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे दो भाग्यशाली श्रोता हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से महेश पाल और जबलपुर से मनीषा साखर दांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

राष्ट्र की असली शक्ति इन मेहनतकश हाथों में ही होती है जो अपने पसीने से उसके सपनों को आकार देते हैं। और जब इन्हीं हाथों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए कोई आवाज उठती है तो इतिहास उसे एक व्यक्ति नहीं एक आंदोलन की तरह याद रखता है। भारत के श्रमिक आंदोलन को नई चेतना देने वाले एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे नारायण मल्हार जोशी, जिनके लिए मजदूरों की पीड़ा उनकी अपनी संवेदना बनी और उन्होंने श्रम को सम्मान दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून सन 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित गोरेगांव में हुआ था। ये समय भारत के लिए परिवर्तन की आहटों का समय था। देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और समाज अनेक असमानताओं के बोझ से दबा हुआ था। ऐसे समय में नारायण मल्हार जोशी का जीवन आकार ले रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी चेतना का प्रमुख केंद्र था। सन 1901 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर, मुंबई और पुणे के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य आरंभ किया। इस दौरान वो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को ध्यान से देख और समझ रहे थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। गोखले जी की विचारधारा ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और सन 1909 में वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य बन गए। यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि उनका जीवन देश और समाज की सेवा हेतु समर्पित होगा। मुंबई के कपड़ा मिल और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की दशा देखकर वो विचलित हो गए। बड़ौदा के महाराजा श्रीमंत सयाजी राव गायकवाड़ और कुछ अन्य लोगों के वित्तीय और नैतिक सहयोग से उन्होंने सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसके माध्यम से मजदूरों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोले गए, पुस्तकालय बनाए गए, चिकित्सा शिविर लगाए गए तथा सहकारी समितियों का निर्माण हुआ। वो समझ गए थे कि केवल आजादी नहीं बल्कि भारत भूमि के उत्थान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का उत्थान आवश्यक है।

श्रम मिट्टी में छिपे उस बीज की तरह है जो स्वयं को गलाकर दुनिया को हरियाली दे जाता है, और श्रमिक उस बरगद की तरह जो अपने हिस्से में तपती धूप रखता है और दुनिया को छांव बांटता है।

की नदी आगे बढ़ रही थी और भारत के सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवर्तन जन्म ले रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का असंतोष चरम पर था। नारायण मल्हार जोशी ये जान चुके थे कि जब तक देश के मजदूर संगठित नहीं होंगे, तब तक वो मिल मालिकों और ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकार नहीं मांग सकते। इसी सोच के साथ 31 अक्टूबर सन 1920 को मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन हुआ। नारायण मल्हार जोशी इसके मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के साथ मिलकर इस संगठन की नींव रखी। लाला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और नारायण मल्हार जोशी इस संगठन के प्रथम महासचिव चुने गए और उन्होंने सन 1929 तक इस पद पर रहकर भारतीय श्रमिक आंदोलन को दिशा दी। उस दिन केवल एक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि बिखरी हुई आशाओं को एक धड़कन मिली थी। मजदूरों के हितों को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधायी शक्ति की आवश्यकता थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1921 में नारायण मल्हार जोशी को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया। वो सन 1921 से 1947 तक लगभग 26 वर्ष लगातार इस सदन के सदस्य रहे। सदन के भीतर वो श्रमिकों की निर्भीक आवाज बनकर गूंजते रहे। नारायण मल्हार जोशी ने मजदूरों की आवाज को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने श्रमिकों की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। सन 1922 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ। नारायण मल्हार जोशी इस सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इसके बाद वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सदस्य चुने गए, जिससे भारतीय श्रमिक आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। भारत की सीमाओं से निकलकर मजदूरों की आवाज अब वैश्विक मंच तक पहुंच रही थी। केंद्रीय विधानसभा में रहते हुए नारायण मल्हार जोशी ने कई ऐतिहासिक कानून पारित करवाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 2026। इस कानून से पहले श्रमिकों के द्वारा संगठन बनाया जाना या अपनी मांगों के लिए हड़ताल करना एक अपराध माना जाता था, लेकिन नारायण मल्हार जोशी के अथक प्रयासों ने श्रम संघों को वो कानूनी मान्यता और सुरक्षा दी जिसने भारतीय श्रम इतिहास का भूगोल बदल दिया। इससे पहले सन 1923 में मजदूर मुआवजा अधिनियम को भी पारित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजे का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके प्रयास अद्भुत थे, जैसे किसी ने वर्षों से बंद दरवाजों को खोल दिया हो। सबके हिस्से की रोशनी सब तक पहुंच सके, इसी दृढ़ संकल्प के साथ वो लगातार आगे बढ़े।

समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और नारायण मल्हार जोशी की यात्रा नए पड़ावों से होकर गुजरती रही। भारतीय कारखानों, चाय बागानों और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किया। नारायण मल्हार जोशी को इस उच्च स्तरीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने पूरे भारत का व्यापक दौरा किया और एक ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की, जिसने आगे चलकर भारत में न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे तय करने की नींव रखी। 1920 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय श्रमिक आंदोलन एक नए मोड़ पर खड़ा था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भीतर एक नई विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। ये लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हड़ताल का समर्थन किया कर

सकते थे। जबकि नारायण मल्हार जोशी का मानना था कि श्रमिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दांवपेच के बजाय शुद्ध रूप से मजदूरों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण होना चाहिए। वैचारिक मतभेदों की ये आंधी जब तेज हुई तो वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने भारत के भावी राष्ट्रपति वीवी गिरी और दीवान चमनलाल जैसे मनीषियों के साथ मिलकर एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने AITUC से अलग होकर 1930 में इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। उनका लक्ष्य सदैव स्पष्ट था। यही कारण है कि जब मजदूरों की एकजुटता का सवाल आया तो वो अड़े नहीं रहे, बल्कि लचीलापन अपनाते हुए सन 1940 में वो पुनः AITUC में शामिल हुए और इसके महासचिव के रूप में वो फिर से सक्रिय हो गए। कुल मिलाकर अपनी राह पर वो दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहे। अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। राजनीति धारा में वो हमेशा निष्पक्ष रहे और जब कभी मजदूरों के हित की बात आई, उनके कल्याण की बात आई, उन्होंने सब कुछ छोड़कर श्रमिक कल्याण का पक्ष लिया। भारत के भावी संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए जब लंदन में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ तो नारायण मल्हार जोशी ने इसमें भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। यहां उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर वंचित वर्गों के अधिकारों पर गहन विमर्श किया। नारायण मल्हार जोशी ने यहां इस बात की वकालत की कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान में प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए तथा श्रमिकों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश की आजादी के बाद देश के नए औद्योगिक और श्रम कानूनों के निर्माण में वो सरकार के सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक और सलाहकार बने। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए 30 मई सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन लें, नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं गदर 2 फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह की आवाज में सईद कादरी की बोल है मिथुन का संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में गदर 2 फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन यानी दिवस है, यानी हिंसा और आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बच्चों की दुनिया सपनों और उम्मीदों से भरी होती है, उनकी सुरक्षा, प्यार, दुलार, शिक्षा उनका अधिकार है। लेकिन जब हिंसा और संघर्ष जीवन में प्रवेश करता है तो सबसे अधिक प्रभावित बचपन होता है। बहुत सारे बच्चे अपने परिवार, घर और शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और मानसिक भावनात्मक आघात का सामना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1982 में शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य दुनिया का ध्यान उन निर्दोष बच्चों की ओर आकर्षित करना है जो किसी न किसी रूप में आक्रामकता और हिंसा का शिकार हुए हैं। ये दिवस सिर्फ संवेदना व्यक्त करने का अवसर नहीं, बल्कि हम सभी को बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के जिम्मेदार

जिम्मेदारी का भी स्मरण कराता है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और अस्थिरता का वातावरण है, इन सब से होने वाले दुष्प्रभाव में बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बच्चों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण कैसे प्रदान करें। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ संस्कारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, समाज, स्कूल की भी समान भागीदारी ये आवश्यक है। बच्चे प्रेम, विश्वास और संवाद का बच्चों को ये वातावरण मिले, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। उनकी शिक्षा, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। उन्हें हिंसा और शोषण से बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। घर, परिवार, विद्यालय, समाज और समाज सभी की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों का उचित संरक्षण, देखभाल हो, उचित शिक्षा व्यवस्था हो, भयमुक्त प्रेमपूर्ण वातावरण मिले, ताकि वे अपने सपनों को खुलकर जी सकें। चित्रलोक कार्यक्रम में हम आपको सनम रे फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं।

0: सनम रे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। शान की आवाज में मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और जीत गांगुली ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
5: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
4: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
5: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
6: सखी सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय एक और छोटे से अंतराल का है, फिर से हाजिर होंगे।

श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में आरक्षण फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। प्रसून जोशी ने इसे लिखा था और शंकर एहसान लॉय ने तर्ज बनाई थी। दोस्तों, आज महान पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम का जन्मदिन है, उन्हें सादर नमन। एसपी बाल सुब्रमण्यम एसपी बाल सुब्रमण्यम भारतीय सिनेमा के उन दुर्लभ गायकों में से हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सहित कई भाषाओं में अपने मधुर आवाज से करोड़ों श्रोताओं के दिलों में अपना विशेष स्थान बनाया है। आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा एसपी बाल सुब्रमण्य पर, जरूर सुनिएगा। अब चित्रलोक कार्यक्रम में एक और गाना।

हीर एक्सप्रेस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी सिमर कौर और नवीश रन की। हरमनजीत का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना।

ज़ारा एहसान और जास मनक की आवाज़ों में ये सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार तनिष्क बागची और जास मनक थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से। अब चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार और आप स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, समृद्ध रहिए, इसी कामना के साथ आज यहीं से इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिये मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों गा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun।
0: दोस्तों आज के प्रोग्राम में फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक एस पी बाल सुब्रमण्यम।

1981 की फिल्म एक दूजे के लिए अपने सुपरहिट गीत और संगीत के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज देकर एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अपना दूसरा नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इसके पहले 1980 में एसपी बाल सुब्रमण्यम को डायरेक्टर के विश्वनाथ निर्देशित तेलुगु फिल्म शंकरा भरणम के लिए भी

0: अपने बेहतरीन गायन के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पहला नेशनल अवार्ड मिल चुका था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर सिंगर ख्याति पा चुके थे।
1: मेर...

4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मूलापेटा में जन्मे एसपी बाल सुब्रमण्यम का परिवेश पूरी तरह से संगीतमय था। उनके पिता एक हरी कथा कलाकार थे और उन्होंने कई मंचित नाटकों में भी काम किया था। एसपी बाल सुब्रमण्यम की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने छोटी उम्र में ही हारमोनियम और बांसुरी बजाना सीख लिया था। हालांकि इंजीनियर बनने की चाहत में एसपी बाल सुब्रमण्यम ने अनंतपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया, लेकिन स्टडी के दौरान बीमारी की वजह से रुकावट भी आई, मगर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और इसी दौरान 1964 में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेकर अवार्ड भी जीता।

0: गायन का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर एसपी बाल सुब्रमण्यम प्रोत्साहित होते रहे, आगे बढ़ते रहे और बाद में एक लाइट म्यूजिक ट्रुप के प्रमुख गायक बन गए। उस दौरान गिटार और बाद में बांसुरी पर उनका साथ दिया करते थे संगत के रूप में इलैया राजा, जो बाद में संगीतकार भी बन गए।
1: वो तो बना

दोस्तों एसपी बाल सुब्रमण्यम की फिल्मों में गायन की शुरुआत 15 दिसंबर 1966 में एक तेलुगु फिल्म से हुई। ये फिल्म थी श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना। उसके चंद दिनों बाद 1966 में ही कन्नड़ फिल्मों के लिए और 1969 में तमिल फिल्मों के लिए भी अपने गायन की शुरुआत करके एसपी बालसुब्रमण्यम चर्चा में आ गए। अपने दौर के दिग्गज कलाकारों जैसे जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन की आवाज बनकर उभरे एसपी बालसुब्रमण्यम को जी देवराजन ने मलयालम फिल्मों के लिए भी गायन के लिए इंट्रोड्यूस किया। एसपी बालसुब्रमण्यम उन दिनों साउथ में अपने गायन के चरम पर थे। व्यस्तता का आलम यह था दोस्तों कि 1981 में 8 फरवरी को 12 घंटे की अवधि में कन्नड़ भाषा में 21 गाने गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बाद में तमिल में एक दिन में 19 और हिंदी में भी 16 गीत एक ही दिन में गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया।

उस दौर की साउथ की जानी मानी फीमेल सिंगर्स जैसे पी सुशीला, एस जानकी, वाणी जयराम और एल आर ईश्वरी के साथ भी एस पी बालसुब्रमण्यम की बेहतरीन ट्यूनिंग रही और उन्होंने तमाम युगल गीत गाए। आगे चलकर महान संगीतकार बने इलैया राजा के साथ एस पी बालसुब्रमण्यम का जुड़ाव बहुत पहले से रहा है, जब इलैया राजा उनके ऑर्केस्ट्रा ट्रुप में महज हारमोनियम और गिटार वादन किया करते थे। उनका ये जुड़ाव बाद में बना रहा और कई गीतों को रचकर और भी पक्का हो गया। 1989 में एस पी बालसुब्रमण्यम ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अपनी आवाज दी। फिल्म थी मैंने प्यार किया। फिल्म के साथ साथ गानों ने भी धूम मचा दी थी। इस फिल्म के दिल दीवाना गाने के लिए एस पी बालसुब्रमण्यम को फिल्म फेयर के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

बाद में सलमान खान के लिए ही एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हम आपके हैं कौन फिल्म के गाने गाए, जो सुपर डुपर गीतों की श्रेणी में शामिल हो गए।

दोस्तों यहाँ काबिले जिक्र है कि एसपी बाल सुब्रमण्यम को कई लोग बतौर गायक ही जानते हैं, जबकि वो एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वॉइस एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, के भाग्यराज, मोहन, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड, जेमिनी गणेशन, अर्जुन सरजा, नागेश, कार्तिक, रघुवरन जैसे हिंदी और साउथ के तमाम कलाकारों के लिए साउथ की विभिन्न भाषाओं में वॉइसिंग भी कर चुके हैं एसपी बालसुब्रमण्यम। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाने वाले एसपी बालसुब्रमण्यम को अब तक 6 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक दिन में अधिकतम गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से तेलुगु सिनेमा का नंदी अवार्ड्स लगभग उन्हें 25 बार हासिल हो चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के और भी कई अवार्ड्स हासिल कर चुके एसपी बालसुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा सन 2001 में पद्मश्री और सन 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एसपी बालसुब्रमण्यम अपने सबसे बड़े अवार्ड को मानते हैं अपने प्रशंसकों की गुनगुनाहट के जरिए, वो जो उनके गीत गुनगुनाकर खुशियों में डूबे रहते हैं।

दोस्तों, एसपी बाल सुब्रमण्यम एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। उनकी पत्नी हैं श्रीमती सावित्री, एक बेटी है पल्लवी और एक बेटा है एसपी बी चरण, जो खुद भी पार्श्व गायक और फिल्म प्रोड्यूसर है। एसपी बाल सुब्रमण्यम ने फिर से एक बार हिंदी की ओर शुरुआत की 2013 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए भी पार्श्व गायन करके। संगीतकार विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में उन्होंने ये गीत

एसपी बालसुब्रमण्यम दक्षिण भारतीय फिल्म संगीत तथा हिंदी फिल्म संगीत के इस महान पार्श्व गायक का निधन 25 सितंबर 2020 को हुआ। विविध भारती परिवार की ओर से एसपी बालसुब्रमण्यम की यादों को विनम्र नमन।

0: था पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। अब जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: लीजिए अब सुनिए कटनी जिले की चिट्ठी।
1: प्रस्तुत है
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले में इन दिनों बदले मौसम के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में तेज हवा और आंधी के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। जिले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जून माह को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया संक्रमण काल प्रारंभ होने से पूर्व जन समुदाय में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाना है, ताकि मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए मलेरिया जागरूकता रथ भी चलाया जा रहा है। कटनी में भी पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक प्रभावी तकनीक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त टैबलेट जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ विवेचना अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे अनुसंधान कार्यों में तेजी, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। कटनी में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों की ई केवाईसी किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जारी नवीन निर्देश द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी की कार्यवाही सभी हितग्राहियों द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कटनी में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पुलिस सीधे अभियान चलाया गया। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन और महिला थाना प्रभारी वर्षा सोनकर के मार्गदर्शन में गठित पुलिस सीधी की विशेष टीम ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया। टीम ने चौपाटी, मनोरंजन, मेला सहित अन्य भारी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर महिला और बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। पिछले दिनों कटनी में मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी में आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन और परीक्षण के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की सदस्य और प्रख्यात कानूनविद अनूप नायर उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। कटनी जिले में नागरिक सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले भर में संचालित पटाखा फैक्ट्रियों, विस्फोटक भंडारण मैगजीनों और अमोनियम नाइट्रेट फैक्ट्रियों तथा स्टोर हाउसों की व्यापक जांच और भौतिक सत्यापन अभियान चलाया गया। जिले में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने हेतु 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये पहल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है। जिला आयुष अधिकारी डॉ आशीष रेजा ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 मई से

भोकर जिले के 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे तक पंडित खुशीलाल आयुर्वेद चिकित्सालय से योग आयोग के विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से योग सत्र संचालित किए जा रहे हैं। कटनी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आह्वान और कलेक्टर आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में 19 मार्च से जिले में जल स्तर को सुधारने और पारंपरिक जल स्रोतों को सहेजने के लिए चलाया जा रहा जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 में जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है। बलराम तालाब की श्रेणी में जलगंगा संवर्धन अभियान के मामले में कटनी प्रदेश के 4 अग्रणी जिलों में शामिल है। जिला प्रशासन और ग्रामीणों के साझा प्रयासों से अब तक जिले में 3,284 जल संरक्षण संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, जिससे पानी को सहेजने और उसके संरक्षण तथा संवर्धन में मदद मिलेगी। कटनी में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य पूरा हो गया है। इसमें कटनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया है। अब प्रगणकों द्वारा बनाए गए नजरी नक्शे को ट्रेस का काम किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: हो जाए सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
3: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
3: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
3: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
3: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
3: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
3: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से

0: 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
0: अजी जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
0: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी,
0: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
0: जी,
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
0: जी,
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
0: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
0: जी,
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
0: जी,
1: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
0: जी,
1: जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ, जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी,
0: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहां गए थे मैग्नेटिक हिल,
0: बिल्कुल याद है।
1: जहां यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं?
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ?
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी,
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी,
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या

0: दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
3: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
5: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
6: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
7: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आजा, आजा, अंदर आजा, आजा शाबाश।
8: क्या अभी आपके पास समय होगा?
7: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
6: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
7: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
8: जी वही।
6: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
7: अच्छा।
8: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
7: और
6: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
7: हाँ, बोलो।
8: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
7: बिल्कुल,
6: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
7: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
8: 5000 वर्ष पहले?
7: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
6: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
7: अच्छा, ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
8: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
7: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
8: अच्छा।
7: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
8: जैसे?
7: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
8: वैदिक समूह?
7: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
8: भरत?
6: भरत नाम तो हमने सुना है।
7: अच्छा, भाई भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
8: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
7: हाँ।
8: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
7: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का।

0: इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
2: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
0: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
3: वो क्या सर?
0: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदू या हिंदू कहा है।
2: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदू या हिंदू कहा है,
3: भला ऐसा क्यों?
0: ऐसा

0: नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदू या हिंदू कहा है।
1: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदू या हिंदू कहा है, भला ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
2: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
1: है ही नहीं?
0: हाँ।
1: ऐसा कैसे?
0: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
1: ओ।
0: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
2: हिंदू।
0: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
1: तो फिर?
0: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
0: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
1: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
1: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
0: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ।
1: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल।
1: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
1: अच्छा।
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
1: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ।
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ।
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और

0: उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों शायद स्तान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
2: अच्छा, हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह क्या बात है।
2: सर आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
2: अच्छा।
0: हाँ अच्छा ये बताओ तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है हम भारत के लोग,
2: वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे, तो हमारे देश का नाम हुआ भारत जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
2: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा आज जो भी तुमने जाना है समझा है उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
2: सबके साथ?
0: हाँ सबके साथ।
3: तो साथियों कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
5: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
6: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है और आज मनुष्य रॉकेट अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
7: भाई वाह आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
8: हाँ स्टीफन भाई हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
9: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
8: अच्छा माँ क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
9: हाँ पूछो बेटा।
8: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
9: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
8: लेकिन माँ।
9: ओफो तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा जोसेफ
8: जी,
9: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
8: अच्छा माँ ये लो माँ।
9: ला
7: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
8: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल अरे, गया मुझे।
9: क्या
8: अरे,
9: मिल गया
8: मुझे? माँ माँ ओ माँ
9: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
8: मुझे मिल गया।
7: हाँ क्या मिल गया भाई? क्या मिल गया
9: सब? क्या हो गया तुम्हें बेटा? बताओ तो सही क्या हो गया है?
8: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
7: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
8: स्टीफन स्टीफन माँ माँ माँ सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
9: कुछ भी तो नहीं।
7: कुछ भी तो नहीं है।
8: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ

0: ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
1: वो तो है, मगर
0: इसका मतलब ये हुआ स्टीफन, कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
0: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
1: हाँ,
0: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें, तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
0: ठीक है, आओ मेरे साथ।
2: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा
5: गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
6: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
5: हाँ भाई, भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार, भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
6: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
5: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
6: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
7: ना जाने क्या करेंगे,
5: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं सकती। अच्छा मजा आ
7: गया, लगता है कुछ हो गया है।
5: अरे भाई साहब, जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
8: भाई साहब हट जाइए।
6: अरे आ गए, आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
5: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
6: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ,
5: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो, एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
6: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
5: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
6: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
5: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे
6: मान गया भाई, मान गया, कमाल कर दिया बच्चों ने।
5: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? अरे देखो, वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
6: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
5: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
6: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
5: अरे जबरदस्त, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
6: वो देखो, वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ, उधर देखो।
5: अरे हां, अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
3: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया।

0: जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
5: अरे पिंकी के पापा, आप इतनी देर से मोबाइल पर क्या सुन रहे हैं?
6: अरे सुषमा, मैं सुन रहा हूँ निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
7: ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा।
4: सुबह के 10:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार करें राखी जैन का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं राहत फतेह अली खां, आशीष कौर और तनिष्क बागची के गाए इस गीत से। गीत के बोल लिखे हैं रश्मि विराग ने, संगीत तनिष्क बागची का, फिल्म है सिम्बा। पसंद आप सभी की। कवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूरा शिमाली। इसी गीत को पसंद किया है भीकन गांव से संतोष सातले, चंदन सारिका, रोहित, शुभम, शैलेंद्र और कंचन बाई सातले ने। जबलपुर से पसंद करने वाले हैं जिनेंद्र जैन, महेंद्र, सत्येंद्र, अरुण चौरसिया। इसी गीत को पसंद किया है सनाव से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार ने। खंडवा से है संजय मारकंडे, ममता मारकंडे, संहिता और संजीता मारकंडे। इंद्रपुरी कॉलोनी खंडवा से वंदना राजवेदी, शेजल, अंबन, शिवांशी, तुलसी पगारे और रितिका साध। दुर्गा चौक जरापानी सनाव से कालूसी बड़ोले, सीताराम बड़ोले, हीरा लाल, तेरसी डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन। इसी गीत को पसंद किया कलंजगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार, अलमाज पानो और सबीना जहीर पवार ने। छत्तीसगढ़ से पसंद करने वाले साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। सुपौल से है शेतारंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष, अमिताभ, पप्पू, गजेंद्र और इनके परिवार के सभी सदस्य। इंदिरा बिहार दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा और इनके परिवार के सभी सदस्य। पाटन गुजरात से धीरज वीरावारी। बुरहानपुर से है के मोहन मुदलियार, आरुष और राजेश कुमार। सागर से है चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक, तन्वी और जयपाल यादव। मालियान सरधना मेरठ से है अनिल जैन, संयम, मुस्कान और जीवियम जैन। बोरखेड़ा पित्रामल से है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाटा, दीक्षा और कुश मुणत। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
5: चलो,
1: कहाँ
5: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: अगला गीत हमने लिया है फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से, तर्ज बनाई सचिन जिगर ने, आवाज सचिन जिगर, चैतन्य और वरुण जैन की है, बोल हैं इंद्रनील के, पसंद आप सभी की। चंडीगढ़ से है सतीश अनेजा, विमला अनेजा, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या और अन्नु, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, श्री गंगानगर से है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका अरोड़ा, जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और इनके परिवार के सदस्य, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार, इसी गीत को पसंद किया है खंडवा से सुदामा माहेश्वरी, सीता, आशीष, अमन, विजय और मानकचंद गुप्ता ने, शिवकोठी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, सपना, ओम और द्वारकाबाई सेन, लिम्बोदी इंदौर से है गिरधारी लाल।

चौधरी, मनीषाबाई चौधरी, घंटाघर चौक खंडवा से है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, दतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, चांदनी चौक गंडई पडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, रानू, रविन्द्र रौनक सेन। इसी गीत को पसंद किया प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी ने। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, क्षीरसागर और संजय कुमार चौहान। सांगली से है राम कुलकर्णी और श्याम कुलकर्णी। सहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार डाक्षे, साक्षी, ऋतुराज, पूर्णिमा पटेल और इनके परिवार के सदस्यों।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से। लीजिए आप सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत, नीरज श्रीधर और अमृता काक की आवाज में, तज बनाई प्रीतम ने, फिल्म है रेडी। पसंद आप सभी की। खंडवा से हैं राजेंद्र कटारे, अनीता उदय और उज्जवल कटारे। आकोट से है विनायक बेंडे, मंगला, विजय, शुभम और इनके परिवार के सदस्य। कालेगांव जाफराबाद से हैं शिजुधाकर, राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, जाधव कुमार, संचित और इनके परिवार के सदस्य। चंडीगढ़ से है डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप और शुभचंद्र बजाज। शासीनगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू। इसी गीत को पसंद किया है जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और दिव्यांश ने। साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल और चेतन मनवर। नवाशहर गगनदीप से है चिप्ता कुमारी, थांदी, प्रियंका और इनके परिवार के सभी सदस्य। ताज मंदिर लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफी पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनीन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता और वमिका गंगराड़े। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म काइट्स से, संगीत राजेश रोशन का, आवाज केके की और गीत के बोल लिखे नासिर फराज ने। पसंद आप सभी की। बड़वा से पुष्पिन रावल, अयांश इंद्र, निहारिका, निशा और सोनू मोनू। अहमदपुर खेगांव से है कैलाश फुलमाली, दीपक और समर फुलमाली। प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले और मंदा खंडाले। इसी गीत को पसंद किया दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और गीतिका खोरवाल ने। बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव और इनके परिवार के सदस्य। माता चौक सनाव से धर्मेंद्र मालाकार, रीना मालाकार, निशा और हैप्पी मालाकार। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव, ईशान और कार्तिक सैनी। लक्कड़ बाजार खंडवा से ठाकुर भवानी सी बेस, रिया, रोहन और अंगद ठाकुर। इसी गीत को पसंद किया है मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम ज्योति, शुभम देवी, किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल ने। डुमराव बिहार से आसमा परवीन, दुखना रानी और इनके परिवार के सभी सदस्य। मुंबई से है इकबाल मोगा, अफसरी मोगा और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

इसी गीत के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम संपन्न करने की राखी को दें आज्ञा। नमस्कार। FM बैंड 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: विविध भारती पर हमारा अगला कार्यक्रम रंग तरंग। विविध भारती
1: रंग तरंग।
0: श्रोताओं नमस्कार, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

रंग तरंग कार्यक्रम का आगाज हमने किया हरिओम शरण की इस गाई हुई इस भक्ति रचना के साथ, प्रेमांजलि एल्बम से, जिसे हसरत जयपुरी ने लिखा था। अब बढ़ते हैं छाया गांगुली की गाई मीराबाई की इस पारंपरिक रचना की ओर।

रंग तरंग कार्यक्रम में अभी आपने भक्ति सुधा एल्बम से छाया गांगुली के स्वर में मीराबाई की यह पारंपरिक रचना सुनी, जिसे संगीत से संवारा था संगीतकार जयदेव ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। काबिल अजमेरी का ये कलाम आप सुन रहे थे पंकज उधास की आवाज में, अ गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एल गजल एल्बम से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर रंग तरंग कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं देव कोहली के रचना और आनंद राज आनंद के संगीत की ओर।

0: देव कोहली के बोल थे आनंद राज आनंद का संगीत, शुभा मुद्गल और समुद्र की आवाजों में आप सुन रहे थे ये मोहब्बत है एल्बम का ये गाना। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

रोशन के संगीत से सजी ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। दिल ही तो है फिल्म का नाम था और साहिर लुधियानवी का कलाम। चलिए अब एक नाजुक से गीत की ओर बढ़ते हैं।

है प्रेम एल्बम से ये बड़ा ही नाजुक सा सॉफ्ट सा गाना आपने सुना। श्याम अनुरागी ने इसे लिखा था, आवाज और संगीत का जादू मिलिंद इंगले का था। चलिए अब अगले एल्बम में आवाज का जादू है मोहित चौहान और कायम त्रिवेदी के साथ अतुल मित्तल का।

0: रियाजुर रहमान सागर का ये कलाम आप सुन रहे थे आशा भोसले और अदनान सामी की आवाजों में। एल्बम था कभी तो नजर मिलाओ। बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

बज़्म ख्याल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज़ में आपने अहमद वसी का ये कलाम सुना और यही थी आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। रंग

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत के तकनीकी और औद्योगिक क्षमता का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुरीली धड़कन विविध भारती। आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं लेकर यादों की महफिल।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम यादों की महफिल। और इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज सबसे पहला जो गाना शामिल किया वो 100 डेज फिल्म से था। एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ लता मंगेशकर की आवाज, दिलीप ताहिर ने इसे लिखा था, राम लक्ष्मण का मचलता संगीत। और मेरे ख्याल से आपने ये गाना सुना और आप जान ही गए होंगे कि आज यादों की महफिल में वो गाने शामिल हो रहे हैं जिनमें गायक आवाज है एसपी बालासुब्रमण्यम की। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है तो हम उनको उनके गीतों के जरिए याद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले गाने की ओर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में साजन और मैंने प्यार किया, इन दो फिल्मों के बाद अब बारी आ रही है वंश फिल्म के इस गाने की।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सागर फिल्म का ये गाना आपने सुना। साथियों, एसपी बालासुब्रमण्यम की गायकी का एक अलग ही अंदाज रहा है। हर भाव के गीतों को कितनी सहजता से समेट लेते थे। अब ये गीत ही सुनिए ना। गीत संगीत बोल आवाज सब कुछ कमाल।

दिल को छू लेने वाले सच्चे बोल, जावेद अख्तर के सुरीला संगीत, राहुल देव बर्मन का गर्दिश फिल्म में इस गाने में आवाज एसपी बालसुब्रमण्यम की। चलिए यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ते हैं।

एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ अलका याग्निक की आवाज में आपने मझधार फिल्म का गाना सुना। यादों की महफिल कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम के गाए कुछ बेमिसाल गाने। और अब बारी है लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों वाले उस गाने की जिसकी फिल्म का नाम है पत्थर के फूल।

0: लिंकन रोड कभी वार्डन रोड, डंकन रोड हैमिंगटन रोड, कैडल रोड कभी पेडर रोड, चर्नी रोड कभी अर्थर रोड, टर्नर रोड कभी कार्टर रोड।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला
0: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
2: हाँ तो भाई, पत्थर के फूल फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ों में, और यही गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। तो साथियों, आज का टेक्स्ट, आज की इबारत आप तक पहुंच चुकी है और आप जान भी चुके हैं कि आज के टेक्स्ट में क्या है खास। तो चलिए हम आपको वो टेक्स्ट, वो इबारत पढ़कर सुना देते हैं। आज का टेक्स्ट है, आज भी जब पुराने गीत रेडियो पर गूंजते हैं तब श्वेत श्याम यादें आंखों में रंग भरती हैं। ऐसे में कोई खास सिर्फ याद नहीं आता, वो फिर से जी उठता है। वो भोली सी सूरत, गहरी आंखों वाली छबीली सुजाता ने भावनाओं का एक पूरा मौसम खुद में समेट रखा था। जाने कब वो बंदिनी बनकर छलिया, अनाड़ी, सौदागर, महाराजा सरस्वती चंद्र को छोड़कर सावन के महीने में कन्हैया की बांसुरी के रंग में अपनी चुनरिया रंग बैठी। कहाँ तक सुनाऊं साहब, इस छोटी सी गुड़िया की तो लंबी कहानी है, लेकिन आप खानदान की राधा से पेइंग गेस्ट का वादा तो सुनिए जरा। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो ये तो थी आज की इबारत और आप सभी जान चुके हैं कि आज इसमें क्या है खास और आज दिन कौन सा है, इसलिए हमने ये इबारत जो है वो इस तरह से आप तक पहुंचाई है। तो बहरहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, आज है 4 जून का दिन और आज जन्मदिन है अभिनेत्री नूतन का, तो ये इबारत उन्हीं के लिए है। वैसे आपको बता दें कि नूतन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी साथियों, बल्कि भारतीय सिनेमा की गरिमा और शालीनता की मिसाल थी। वो उन गीतों की रूह भी थीं जो रेडियो से निकलकर दिलों में बस गए। उन पर फिल्माए गीतों को सुनकर यूं लगता है जैसे पुराने दौर का एक दरवाज़ा फिर से खुल गया है। इनकी फिल्में बीता हुआ वक्त नहीं साथियों, यादों की जीवित धरोहर हैं। अभिनेत्री नूतन जी को लेकर ढेर सारे कमेंट्स हमारे सामने हैं इस समय और बहरहाल हमारे साथी क्या लिख रहे हैं। हाँ, देखिए हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर के इस सुनहरे सफर में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ, आज के गाने अवश्य यादगार होंगे। जी हाँ बिल्कुल, और आप सबका साथ इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाएगा। तो वहीं हमारे एक दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि 1 माह 5 दिन हो चुके हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में, आप आज आई हैं शायद पहली बार। अरे वाह, क्या बात है, इन्होंने दिन महीना सब कुछ याद रखा। बहरहाल आज हम आ गए आपके साथ। और एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है कि ये है सुरीली सफर की सही इबादत, इबारत नूतन जी के जन्मदिन पर उनके ही गानों पर परफेक्ट इबारत। वैसे भी हमेशा से ही आपने सही इबारत दी है और तहे दिल से शुक्रिया किया है, तो शुक्रिया आप सभी का भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ दिल से जुड़ने के लिए। तो दूसरे साथी लिख पड़े हैं कि आज गद्यांश को पढ़कर सुखद आश्चर्य हुआ, वाकई में हम जो सोच रहे थे वही यहाँ शब्द निरूपित हुआ, यानी एक अनन्य लाजवाब हुस्न मलिका पूर्णतः अभिजात अभिनेत्री नूतन जी की कहानी को सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोया गया है। कई दिन बाद शायद ये प्रयोग हुआ है। इन्होंने ढेर सारा धन्यवाद दिया है और लिखा है कि आज बेहतरीन गीतों की माला सजाई जाएगी। गानों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज गुजरे जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन जी की जन्म जयंती है, लिहाजा छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी है उन्हीं की फिल्मों

के गीत हैं। जी हाँ बिल्कुल, आगे लिखा है कि इस नूतन के सौंदर्य को मिस इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। तो दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले इस गद्यमयी इबारत में एक छोटी सी गुड़िया के मन की गुदगुदी भरी बड़ी सी कहानी का चित्रण बंदिनी, सुचाता, छलिया, अनाड़ी, महाराजा आदि के माध्यम से भली भांति उकेरा गया है और इस दृष्टिकोण से गुड़िया की कहानी जो वादे तक आती है तो हर हृदय को स्पर्श करने में पूरी तरह समर्थ है। और फिर तो भाई गीतों का सिलसिला शुरू करना ही पड़ेगा। और साथियों, चूंकि आज के टेक्स्ट में जिक्र है एक छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी का, तो भाई आज के सुरीला सफर की कहानी का आगाज भी इसी गाने के साथ होना चाहिए। क्या कहते हैं आप, इस गाने को सुनकर बताइएगा क्या राय है आपकी।

तो भाई सीमा फिल्म के इस गाने के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर का आगाज हो गया है और हमारे साथी ने भी लिखा है कि बहुत ही साफ सुथरे गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि फिल्म सीमा का ये गीत मेरी लिस्ट का यानी उनकी लिस्ट का पहला गीत बच गया। तो आप सब भी अपनी अपनी लिस्ट में गाने टिक करते चलिएगा कि कौन कौन सा गाना हमारी लिस्ट के साथ मेल कर रहा है। वैसे आप गाने लिख कर भेजिए हमें, हो सकता है कि आप वाला गाना बज ही जाए। वैसे एक साथी ने लिखा है कि इस गाने में सरोद का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, फिल्म सीमा लता जी शंकर जयकिशन का संगीत। जी हाँ। और आगे एक साथी लिखते हैं कि नमस्कार किया है, लिखते हैं अगर आज की इबारत को देखा जाए तो लगता है कि आज तो गाने बहुत ही सुंदर और सुनने को मिलेंगे, आज तो बहुत आनंद आएगा। और दूसरे साथी ने लिख दिया है कि नूतन ने बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपनी आंखों और चेहरे के भावों से भावनाओं को व्यक्त किया, फिल्म सुजाता 1959 और बंदिनी 1963 जैसी फिल्म में उनका संवेदनशील अभिनय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यकीनन साथियों उनकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था जो बिना किसी दिखावे के सीधे दिल को छू जाता था। और उनकी खूबसूरती केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी बल्कि उनके व्यक्तित्व, विनम्रता और संस्कारों में भी झलकती थी। जैसा कि हमारे एक साथी ने उनकी आंखों के लिए लिखा है कि अपनी आंखों और चेहरे के भावों से भावनाएं व्यक्त करती थीं, तो यकीनन उनकी आंखें भावनाओं की ऐसी भाषा बोलती थीं जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्रतिभा, सौम्यता और आत्मविश्वास का जो सुंदर संगम अभिनेत्री नूतन में था वो उन्हें अपने दौर की सबसे विशिष्ट अभिनेत्रियों में शामिल करता है। एक और कमेंट आया है हमारे पास कि ऐ मेरे हम सफर रोक अपनी नजर, ये दिल है बड़ा बेअसर, बचपन के दिन भी क्या दिन थे उड़ते फिरते, ऐसा गाना लिखा है। इन्होंने बहुत सारे गाने लिख भेजे हैं और लिखा है कि युग युग से गीत मिलन के गाते हैं गाते रहेंगे, यानी इन्होंने नूतन जी के बहुत सारे गानों को यहाँ तक भेज दिया है। और एक साथी ने लिखा है कि मैं तो यही कहूँगी कि ब्लैक एंड वाइट का जो दौर था वो बहुत ही सुंदर था, एक श्वेत शाम दौर की फिल्मों में जो सादगी, आंखों की भाषा और ठहराव था वो आज के शोर शराबे में कहीं खो सा गया है। उस दौर की भोली सी सूरत और गहरी आंखें बिन कुछ कहे भी सब कुछ कह जाती थीं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। वैसे आप बताइएगा, आप सब साथी, कि आपको ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में ज्यादा अच्छा लगता है फिल्में देखना या रंगीन, और नूतन जी की कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बेहद करीब है। एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के स्वर्णिम युग में नूतन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनकी सादगी, प्राकृतिक अभिनय और सशक्त किरदारों ने उन्हें उस दौर के दर्शकों के दिलों की धड़कन बना दिया था। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी बल्कि उन्होंने अपनी आवाज और आंखों के भावों से हर किरदार में जान डाल दी। उन्होंने बिना किसी लाउड मेकअप या ड्रामे के केवल अपने संजीदा अभिनय से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के पर्दे पर अपनी एक अमित छाप छोड़ी। बिल्कुल सही बात है। और उदाहरण है उनकी क्लासिक फिल्मों में उनका क्लास, अभिनय, बंदिनी, सुजाता, तमाम फिल्में हैं साथियों। ढेर सारी कमेंट्स मेरा शामिल करने का इरादा है गीतों के साथ। बहरहाल अगला गीत प्ले हो उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ढेर सारे कमेंट्स ले लूँ। उन्होंने मेरे साथी लिखते हैं एक कि इन्होंने लिखा है कि अभिनेत्री नूतन हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। अपनी सहज अभिनय शैली, प्रभावशाली आंखों की अभिव्यक्ति और भावनाओं को जीवंत रूप से पर्दे पर प्रस्तुत करने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें दर्शकों के दिलों में विशेष उन्होंने स्थान बनाया। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मधुर गीत से आगाज हुआ आज के इस कार्यक्रम का।

एक दूसरे हमारी एक साथी हैं, लिख रही हैं कि तब मैं बहुत छोटी थी, नूतन की फिल्म लगी थी तेरे घर के सामने। मेरे पापा नूतन जी के अभिनय वाली कोई भी फिल्म लगी हो तो हम सबको जरूर देखने जाते थे। उन्हीं दिनों में नूतन की सरस्वती चंद्र, खानदान और दुल्हन एक रात की देखी थी। उस समय नूतन के अभिनय में क्या खासियत है ये नहीं पता था, मगर जब थोड़े बड़े हुए तो सुजाता और बंदिनी देखने के बाद जाना कि अभिनेत्री नूतन में क्या खास है। धीर गंभीर चेहरे के पीछे भाव प्रवण अभिनय। मैंने लगभग नूतन के अभिनय की सारी फिल्में देखी हैं और मेरे पापा की तरह वो मेरी भी पसंदीदा अभिनेत्रियों में शुमार है। शायद ही कोई होगा ऐसा साथियों जिसे अभिनेत्री नूतन पसंद ना हो और उनका अभिनय पसंद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सहज अभिनय बहुत कम देखने को मिलता है। तो वहीं एक और कमेंट में लिखते हैं साथी कि नूतन जी भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थीं जिन्होंने शादी और करने और मां बनने के बाद भी बतौर लीड एक्ट्रेस बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्में दीं। अपनी सजल आंखों और स्वाभाविक अभिनय के लिए मशहूर नूतन थीं। जिस लड़की को रूप रंग के लिए ताने मिले उसी नूतन ने 1952 में महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया मिस मसूरी का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया था। तो चलिए कमेंट बहुत सारे हैं, गाना बजने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप सबने कहा है कि नूतन जी गाती भी थी, हमारे बहुत सारे कमेंट्स में मुझे पढ़ने को मिला है, तो जी हाँ वो गाती भी थी। तो जब छोटी सी गुड़िया की कहानी का आगाज हुआ है तो देखें वो गुड़िया आगे क्या कहती है।

सबसे अच्छी लगती है, आपके दिल के करीब है। तो हमारी एक साथी लिख रही हैं कि उनकी किसी एक फिल्म को चुनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिल्म सौदागर में उनका अभिनय मेरे दिल को छू गया। तो वहीं दूसरी सखी ने भी लिखा है कि नूतन की सौदागर मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बेबस बेवा की शक्ति रूप का शानदार प्रदर्शन है। सच में साथियों, उनकी हर फिल्म में उनका क्लास अभिनय हम सभी के दिलों में आज भी बसा है। एक साथी ने लिखा है कि नूतन जी मेरे जन्म से पहले की अदाकारा हैं, परंतु उनकी कई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में मैंने दूरदर्शन पर, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर देखी हैं और उनकी नई फिल्में सिनेमा हॉल में भी देखी हैं। वे सदाबहार अदाकारा हैं। एक साथी ने लिखा है कि बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर है। और आगे लिखा है कि इस फिल्म में नूतन द्वारा निभाया गया कल्याणी का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में अभिनेत्रियों द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सशक्त अभिनय में से एक माना जाता है। कल्याणी का चरित्र एक ऐसी शांत महिला का है जिसके भीतर जुनून और वेदना का

चांदनी भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर है। और आगे लिखा है कि इस फिल्म में नूतन द्वारा निभाया गया कल्याणी का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में अभिनेत्रियों द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सशक्त अभिनय में से एक माना जाता है। कल्याणी का चरित्र एक ऐसी शांत महिला का है जिसके भीतर जुनून और वेदना का ज्वालामुखी उबल रहा है। उन्होंने बिना किसी लाउड ड्रामे का अभिनय बहुत ही कोमलता और गरिमा के साथ इस भूमिका को जिया। उनकी संवाद के बजाय अपनी आंखों से उन्होंने सूक्ष्म चेहरे के भावों से अपनी पीड़ा और मंजस को पर्दे पर उतारा। वो प्यार, त्याग और अपराध बोध के द्वंद्व को केवल एक नजर से बयां कर देती थी। फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस तरह अपने प्यार, अपनी जिंदगी त्याग कर अपने पुराने प्यार की तरफ लौटती हैं, क्या कोई सिने प्रेमी उनके इस किरदार को, अदाकारी को भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता साथियों, कोई भी नहीं। और इतने भावों को अपनी आंखों से बयां करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक साथी ने लिखा है कि नूतन की फिल्मों के गानों, विशेष रूप से लता मंगेशकर जी द्वारा गाए में उनका जो लिप सिंक होता है इतना सटीक और स्वाभाविक होता था कि वे गीत सीधे उनके किरदार का हिस्सा लगते थे। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि उनकी सारी फिल्में, नूतन जी की सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं। सुनील दत्त के साथ उनकी फिल्म खानदान बचपन में दो आना टिकट दर पर देखी थी, पारिवारिक फिल्म सपरिवार देखी थी। नूतन जी की फिल्मों से जुड़ी आपकी कोई याद हो तो जरूर साझा कीजिए साथियों। और हाँ, अपनी लिस्ट के गाने टिक करना मत भूलिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपके कौन कौन से गाने मेल खा रहे हैं। एक कमेंट आया है कि नूतन महज एक अभिनेत्री नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा के कैनवास पर उकेरी गई एक ऐसी जीवंत कविता थी जो बिना किसी शोर के सीधे दिलों को छू लेती हैं। चेहरे पर सादगी, अभिनय में सहजता और कैमरे के सामने हमेशा ईमानदारी रहने वाली नूतन की अभिनय शैली, संवाद अदायगी और उनकी भावभंगिमाओं में दर्शक बन जाते हैं। नूतन अपने किरदार में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि सिनेमा घर से बाहर निकलने के बहुत बाद भी उनकी हर हरकत, हाव भाव, नजर और संवाद मन में बसे रहते हैं। उनकी आंखें शब्दों से अधिक कह जाती हैं। नूतन आज भी उस पहली बारिश की महक की तरह हमारे दिलों में महकती हैं जिनकी यादें वक्त के साथ कभी धुंधली नहीं होती। बहुत अच्छी बातें आपने बहुत अच्छे शब्दों को पिरोकर लिखी हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मैंने भी आज की इबारत से एक पैराग्राफ बनाया है और पुराने रेडियो गीतों की मधुर धुनें जब श्वेत श्याम यादों को फिर से जीवंत कर देती हैं तब मन अनायास ही उन सुनहरे पलों में खो जाता है। कभी सुजाता की मासूमियत दिल को छूती है तो कभी बंदनी की भावनाएं मन को बांध लेती हैं। अनाड़ी, छलिया, सौदागर और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों के किरदार आज भी यादों में वैसे ही बसे हैं जैसे सावन में कन्हैया की बांसुरी की मीठी तान। वाह, क्या बात है। आगे लिखा है, चुनरिया के रंग, राधा का प्रेम, छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी और एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने जैसे गीत पुराने दौर की मोहब्बत और अपनापन फिर से महसूस करा देते हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने भेजा है कि आज की इबारत में एक नूतन प्रयोग किया गया है जिसमें अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों को जोड़कर इबारत बनाई गई है। आज छैल छबीली अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों और उनके शानदार अभिनय और बढ़िया गीतों से सुरीले सफर को सजाया गया है। अपनी आंखों से अभिनय को जीवंत करने में माहिर नूतन जी ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। श्वेत श्याम फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और ढलती उम्र में भी मां की भूमिका में भी अपने बेहतरीन अभिनय से वो स्थान बरकरार रखा जो वो शुरुआती दौर में था। ऐसी महान अभिनेत्री नूतन जी को विनम्र नमन। एक कमेंट आया है कि नूतन जी हिंदी सिनेमा की सबसे संजीदा और सहज अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं। उनकी आंखें ही संवाद बोलती थीं। फिल्म बंदनी में कल्याणी की खामोशी हो या सुजाता में अछूत लड़की की पीड़ा या फिर तुलसी तेरे आंगन की मिस सौतन की जटिल भावनाएं उनकी आंखें ही बोल देती थीं। सत्यजीत रे जी ने कहा था कि नूतन की आंखों में ही स्क्रिप्ट लिखी होती है। नूतन जी ने अपने हर किरदार को जिया है। उन्होंने आदर्श नायिका की परिभाषा बदली और उनके किरदार कमजोर नहीं बल्कि हालातों से लड़ने वाले ज्यादा रहे। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। और जैसे कि बात बंदनी की चल ही रही है तो जब बात चले बंदनी फिल्म के जिक्र आए तो उस फिल्म का ये गाना ना बजे, ऐसा तो हो नहीं सकता।

हाँ तो साथियों, ये गाना ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब बंदनी फिल्म का जिक्र हो, और आज भी ये गाना सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखें हमारे साथी लोग क्या कहते हैं। वैसे जब बहुत सारे साथियों ने उनकी मुस्कान और आंखों के बारे में लिखा है, तो सच में साथियों, नूतन जी की मुस्कान में मासूमियत थी, उनकी अदाकारी में गहराई थी, सादगी उनका आभूषण थी और प्रतिभा उनकी असली पहचान थी। और वो सिर्फ पर्दे का सितारा नहीं थी, बल्कि वो हैं भारतीय सिनेमा की अमर विरासत। चलिए देखते हैं हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि बंदनी सौदागर, मेरी जंग, कर्मा, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सुजाता, मिलन और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारी पसंद की हैं। आगे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की बंदनी, अनाड़ी और सौदागर तीनों फिल्मों में उनका काम बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन काम लाजवाब है। उनकी मुस्कुराहट दिल को मोह लेती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं फिल्म सीमा, बंदनी, सुजाता, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की यादगार फिल्म है। वैसे बचपन में दिल्ली का ठग देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी उसके एक गाने के लिए। वो गाना कौन सा है जरा ये तो बता दीजिएगा। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं नूतन जी के सब फिल्में तो मैंने देखी नहीं है, मुझे नूतन जी अभिनीत बंदनी और सौदागर फिल्म में उनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। तो वहीं वैसे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की 1973 की सौदागर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, जो नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है। ये फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई। रविंद्र जैन का जादुई संगीत बेहद शानदार, गीत है तेरा मेरा साथ रहे में भी शामिल हो। इंतजार कीजिए ना। एक कमेंट में लिखते हैं कि नूतन जी उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने ये साबित किया कि एक महान कलाकार को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिल्लाने या तेज संवादों की आवश्यकता नहीं होती। सीमा, सुजाता और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में उन्होंने जो रेंज दिखाई वो आश्चर्यजनक थी। बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है ये बात। और दूसरे साथी लिखते हैं कि नूतन जी बहुत सुंदर अभिनय करती

थीं। उनकी कुछ फिल्में जो हमें पसंद हैं, सरस्वती चंद्र, बंदिनी, सुजाता, सीमा वगैरह वगैरह। एक कमेंट में सुजाता फिल्म के लिए लिखा है कि ये फिल्म समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद जैसी गंभीर रूढ़ियों पर चोट करती है। नूतन ने इसमें एक अछूत लड़की सुजाता की मुख्य भूमिका निभाई थी। विशेषतः नूतन के अभिनय की सादगी और उनके द्वारा झेले गए सामाजिक दर्द को दर्शकों ने बेहद करीब से महसूस किया। समीक्षकों के अनुसार इस फिल्म ने नूतन को एक गंभीर और संजीदा अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर संजीदा अभिनेत्री नूतन जी के जन्म दिन पर उन्हीं को समर्पित है। ये जानकर अच्छा लगा। शोभना समर्थ की बेटी ने अपने अभिनय से मां का नाम ही नहीं ऊंचा किया, उन्होंने जिन भी फिल्मों में अभिनय किया, एक आदर्श पत्नी, बहन, प्रेमिका, मां के रूप में जो स्थान पाया वो किसी अभिनेत्री को आज तक नहीं मिला। बंदनी फिल्म के लिए लिखा है कि 1963 की बंदनी बिमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के मील का पत्थर माना जाता है। इसमें उनके सशक्त अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट हमें लिख भेजा है, नमस्कार करते हुए, गुड आफ्टरनून करते हुए कि सुरीला सफर के लिए कि टुडेज द टेक्स्ट इज नाइस एंड इंडिकेट्स मेनी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स दैट विल बी द कंपेनियन ऑफ लिसनर्स इन सुरीला सफर फ्रॉम बंदिनी छलिया सुजाता सौदागर अनाड़ी सरस्वती चंद्र खानदान पेइंग गेस्ट टू तेरे घर के सामने ओनली नूतन जी एंड नूतन जी एक्सीलेंट स्पॉन्टेनियस ब्यूटिफुल एक्ट्रेस ऑल द बेस्ट।

0: एक कमेंट में लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर की हम सफर बन रही हैं अपने जमाने के दिग्गज अभिनेत्री और गायिका नूतन, जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सारे गीत उन्हीं की फिल्मों से होंगे और उनके नाम की इबारत में बड़ी खूबसूरती के साथ शामिल किए गए। नूतन हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और बहुमुखी कलाकार थी, जिन्होंने अपनी सादगी, सशक्त अभिनय और अनूठी शैली से दर्शकों का दिल जीता। और लिखा है आगे दूसरे साथी ने कि आज सुरीले सफर में होंगी वो बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत नूतन जी, जितनी हमारे बीच की सामान्य सी लड़की वहीं बेहद स्मार्ट नायिका छलिया अनाड़ी में एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलेंगे। बहुत ही खास होगा आप सभी के साथ नूतन जी की बातें और खानदान का वो खूबसूरत गीत तुम्ही मेरी मंजिल, फूल तुम्हें भेजा है, ढेर सारे गाने इन्होंने लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब जो बातें चल रही हैं और इसमें जिक्र आ चुका है फिल्म सुजाता का, जो कि सभी साथियों ने लिखा है, तो फिल्म सुजाता का वो गीत जिसका आप सबको है इंतजार, और मुझे लगता है कि ये गाना निश्चित रूप से आप सभी की लिस्ट में जरूर होगा। बताइएगा जरा कि इस गाने में इनके साथ कौन है।
1: Mm-hmm.

सुजाता फिल्म का ये गाना जलते हैं जिसके लिए। इस गाने को जितनी बार चाहो रेडियो पर सुनो या पर्दे पर देखो बहुत कम लगता है। कितना सहज है ये गाना और अभिनेता अभिनेत्री कितनी सहज अभिनय इसमें इन दोनों कर बैठे हैं। जैसा कि हमने पूछा था आपसे कि इस गाने में अभिनेता कौन है, तो हमारे सभी साथियों ने इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया। साथियों ने लिखा है कि सुनील दत्त टेलीफोन पर यह गाना उन पर फिल्माया गया है और इस गाने में नूतन भी टेलीफोन पर ही हैं जो सुनील दत्त के दिल की बातें सुन रही हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म खानदान का तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा ये गाना जो है बहुत से संगीत कार्यक्रमों में गाया है मैंने और एक प्रतियोगिता में इस गाने के लिए पुरस्कार भी जीता है। वाह भाई क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आगे एक हमारी सखी लिखती हैं कि बंदिनी सुजाता और सीमा, आगे लिखा है कि नूतन जी की किसी एक फिल्म को चुनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने मेरी सबसे ज़्यादातर तीन फिल्मों का अलग अलग फिल्मों के बारे में जो इन्होंने लिखा है ये फिल्में इन्हें बहुत पसंद है। एक कमेंट है जिन्होंने लिखा है कि मैंने रेडियो थोड़ा देर से चालू किया और जैसे ही चालू किया मोरा गोरा रंग गाना आया, मन खुशी से झूम उठा। मुझे लगा शायद ये गाना बज चुका है। मैं जब छोटी थी दूरदर्शन पर सुजाता पिक्चर देखी, हर पिक्चर देखकर मन रो देता था। हमेशा अपने ऊपर होने वाले अन्याय के लिए चुपचाप सहती रहती नूतन जी। वैसे तो हमारी मम्मी के ज़माने की हीरोइन थी लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो सीधी और शांत सहेलियाँ रहती थी उनको हम सब कहते थे ये नूतन है और बाकी सब तनुजा। तो बताइएगा जरा कि नूतन जी और तनुजा जी में रिश्ता क्या है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म सुजाता का गाना हमने सुना, सुनील दत्त साहब टेलीफोन पर नूतन जी को अपने दिल की बात कह रहे हैं, आवाज तलत महमूद साहब की है। और एक ने लिखा है कि फिल्म सुजाता में सुनील दत्त जी हैं और बहुत अच्छा फिल्म अंकन है ये। दूसरे साथी लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय था जहां अभिनेत्री नूतन ने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया। इन्हीं स्मृतियों में सुजाता का भोला चेहरा, गहरी आंखें और मासूम अदाएं जीवंत हो उठती हैं। कहीं वो बंदिनी है, कहीं अनाड़ी की नायिका, तो कहीं प्रेम और विरह के गीतों में डूबी एक संवेदनशील स्त्री। उनकी फिल्मों में के अनेक गीतों को के साथ प्रेम, प्रतीक्षा तथा सपनों से भरे इस अमर श्वेत श्याम गीत को आज भी जब रेडियो पर सुनते हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तब श्वेत श्याम दौर की फिल्में और गाने सुनहरी यादें बनकर मन

को छू जाते हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज की भारत में शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस शख्सियत की फिल्मों से गीत ढूंढना है जिनका नाम नूतन है। आज उनका जन्म स्मृति दिन है। उस छबीली अभिनेत्री को विनम्र नमन करते हैं। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में नूतनता भरी होती थी, क्योंकि नूतन एक अभिनेत्री ही नहीं भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति थी। हर कोई एक कार्य की सीमा होती है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की कोई सीमा नहीं होती। चाहे वो कन्हैया नाड़ी या छलिया राज कपूर के साथ हो, या सौदागर अमिताभ बच्चन के साथ हो, या धर्मेंद्र के साथ एक रात की बनकर चुनरिया रंग ली हो, या हैंडीकैप सुनील दत्त की पत्नी राधा बनकर उनकी सेवा करते हुए खानदान का नाम रोशन किया हो, या पेइंग गेस्ट देवानंद को तेरे घर के सामने घर बनाने और दुनिया बसाने की हामी भरती हो, उस छोटी सी गुड़िया की कहानी का सुनने का इंतजार रहेगा। और इन्होंने अपना उनको विनम्र नमन भेजा है। तो चलिए, जब अनाड़ी फिल्म का भी जिक्र आ चुका है राज कपूर जी के साथ, तो अब हम अनाड़ी फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि ये गाना जैसे ही शुरू होता है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं।

तेरा जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना, अनाड़ी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज और फिल्माया गया नूतन जी पर। जैसा कि हमने पूछा था कि इस गाने में जैसे ही शुरुआत होती है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं, तो हमारे सभी साथी लिखते हैं कि पियानो बजा रही हैं अभिनेत्री।

तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। और हमने ये भी पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी में आपस में क्या रिश्ता है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। उससे पहले हम नूतन जी की फिल्मों से लेकर एक याद साझा की है हमारे एक साथी ने कि एक घर बनाऊंगा जी, मैं बताना चाहूंगा कि शादी से पहले मैंने होने वाली धर्म अपनी धर्मपत्नी के घर के सामने तो घर नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा घर बनाया उनके घर के सामने वाली सड़क पर, और अजमेर की उसी कॉलोनी में फिर ब्याह कर अपनी धर्मपत्नी को उसी घर में स्वागत किया। एक ये प्यारी सी याद इनकी बड़ी ही मीठी सी रही, बहुत अच्छी लगी। और वहीं जहां पर हमने पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी का रिश्ता, तो लिखते हैं साथी कि नूतन और तनुजा आपस में सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों का फेस बिल्कुल नहीं मिलता। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन की छोटी बहन है तनुजा, दोनों शोभना समर्थ जी की बेटियां हैं जो स्वयं अपने दौर में नायिका रही हैं। फिल्म सुजाता के लिए लिखते हैं कि ये सदाबहार गीत जलते हैं जिसके लिए तलत महमूद की मखमली आवाज में गाए गए मजरूह सुल्तानपुरी के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में से एक है। एसडी बर्मन के संगीत और सुनील दत्त के फोन पर अभिनय से मधुर बनाया है इसे। और एक साथी ने कुछ अपनी यादें साझा की हैं कि नूतन बुआ जी की तो सभी फिल्में देखी हैं, पर अब आप लोग कहेंगे कि इसकी बुआ कैसी, तो बताती हूँ। जब हम ठाणे में थे और बाबा पिताजी के दोस्त पर्सनल सेक्रेटरी थे नूतन बुआ जी के, तब वो मुमरा में रहा करती थी। बाबा को बालू चाचा ने एक बार नूतन बुआ जी के घर में ले गए थे, तो वो बाबा की वो अनमोल याद मिली जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तब नूतन जी ने खाना खुद बनाया और इन दोनों को खिलाया, बहुत सिंपल सा, और नूतन बुआ मराठी में बहुत सुंदर बातचीत करते हुए खुद को परोसा गेट तक छोड़ने आई और मराठी में कहा, ये तरहा भाऊ कधी कधी वेल मिलाला तर बालू दादा सोबत। बाबा नतमस्तक हो गए कि इतनी बड़ी हीरोइन खुद खाना बनाती है, परोसती है, ऊपर से गेट तक आती है, भाव कह के ऐसी हीरोइन कहीं नहीं मिलेगी। बहुत यादगार बात है। नूतन जी के लिए कुछ और हमारे पास कमेंट्स हैं। लिखते हैं कि नूतन हिंदी फिल्म जगत की एक नामचीन अदाकारा रही हैं, उनके अभिनय का लोहा हर किसी ने माना है। गूगल ने हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज अभिनेत्री को उनके 81वें जन्मदिन पर एक विशेष गूगल डूडल के माध्यम से याद किया था। उनकी बेजोड़ अभिनय क्षमता को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल में उनके निभाए गए सबसे प्रतिष्ठित किरदारों के भावों को दर्शाया गया। नूतन की बहुमुखी प्रतिभा को केवल एक चित्र में समेटना मुश्किल था, इसलिए डूडल में उनके चेहरे के चार अलग अलग भावों को चित्रित किया गया था। ये भाव बंदिनी की संघर्षरत कल्याणी, सुजाता की व्यथित और सीमा की एक उपद्रवी अनाथ लड़की के रूप में उनके उत्कृष्ट अभिनय को दर्शाते हैं। नूतन की एक विशिष्ट अभिनय शैली थी जिसमें वे चेहरे की न्यूनतम भाव भंगिमाओं और आवाज के मॉड्यूलेशन से गहरा भाव प्रवण अभिनय किया करती थी। बिल्कुल। और इस गाने में भी जो अब आप सुनेंगे उनका जो आंखों का और जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो भी कुछ कम तो नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इस गाने में उनके नायक कौन है, और हमारे मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने का भी इंतजार आप सबको है। वैसे आप सब अपनी अपनी लिस्ट के गाने नोट कर रहे हैं ना, हम तक भेजिए जरूर कि आपके अब तक कितने गाने टिक हो चुके हैं।

सौदागर फिल्म का ये गाना था और हमारे सभी साथियों ने लिखा कि इस गाने में नायक थे अमिताभ बच्चन। एक साथी लिखते हैं कि रविंद्र जैन जी का जादुई संगीत, तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा कि वह बेहतरीन मधुर और भावपूर्ण गीत। बेचारी का इस गाने के बाद अमिताभ द्वारा साथ रहे, दिन हो के रात सदा बना रहे ये साथ। तो दूसरे साथी ने लिखा कि भाई मेरा तो पांचवा गीत हीरो अमिताभ बच्चन रहे एक फिल्म नूतन जी के साथ, इनका पांचवा गीत शामिल हुआ। और दूसरे साथी ने लिखा कि फिल्म अनाड़ी नूतन पियानो बजा रही हैं, मेरा वाला गाना आ गया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि वो पियानो बजा रही हैं, वैसे गाने में बांसुरी का भी खूबसूरत प्रयोग किया गया है, अनाड़ी तेरा जाना हाई पिच पर विशेष गायकी। तो दूसरे साथी ने लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत भी शामिल हो चुका है। और एक साथी लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून, आज प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत लेट हो गई, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है और ये अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी प्रोग्राम नूतन जी पर है उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में क्या कहें, उनकी फिल्मों में से कोई एक फिल्म चुननी बहुत मुश्किल है, मुझे तो उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद हैं, उनकी बंदनी सीमा ये दोनों फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अब वक्त हो चला है कि आज के इस कार्यक्रम का आखिरी मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबकी नजर।

एक साथ ही लिखते हैं कि आज महान अभिनेत्री न्यूटन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुरीला सफर में सम्मान दिया जा रहा है। बेहद पसंद आया ये आपका जेस्चर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हमने।
1: आप सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए हमारे एक साथी लिखते हैं कि अनेक साथियों के कमेंट शामिल हुए, उन सभी को बधाई और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी। दूसरे साथी ने लिखा, शानदार लाजवाब सफर रहा आपके साथ, गति में और संगीत में कार्यक्रम का धन्यवाद, प्रश्नों ने बांधे रखा। तो अब साथियों वक्त हो चला है कि आपसे ले लें इजाज़त। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती के इस कार्यक्रम सुरीला सफर को सुरीला और खूबसूरत बनाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर बाद, फिलहाल आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी का विषय है मुलाकातें। दोस्तों, मुलाकातें क्यों जरूरी होती हैं? इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे विचार, भावनाएं और पहचान दूसरों के साथ संबंधों से आकार लेती हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो सिर्फ बातें नहीं होती, हाव भाव, आंखों का संपर्क, आवाज का उतार चढ़ाव, वे सब मिलकर सच्चा जुड़ाव बनाते हैं। यही वजह है कि आमने सामने की मुलाकातें रिश्तों में जान डालती हैं। मिलने जुलने से रिश्तों में मिठास आती है। इन मुलाकातों का असर मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ देता है।

0: खबर।
1: दोस्तों, मुलाकातें हमें सुना हुआ और समझा हुआ महसूस कराती हैं। दुख बांटने से हल्का लगता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। अकेलेपन में इंसान अपने ही विचारों में उलझ सकता है। लोगों से मिलना उस घेरे को तोड़ता है और मन को संतुलन और सुकून देता है। हम एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकते। कितनी परेशानियों का हल किसी न किसी के साथ होने से, बात होने से चुटकियों में दूर चली जाती हैं। एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी की तमाम समस्याओं से लड़ने की हिम्मत दे जाती है, जिसमें सही राय और विचारों के आदान प्रदान में स्पष्टता और सच्चाई हो।

0: दोस्तों, हर व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है। उनसे मिलने जुलने से हमारी सोच व्यापक होती है, पूर्वाग्रह कम होते हैं और सहानुभूति बढ़ती है। हम दूसरों की गलतियों और सफलताओं दोनों से सीखते हैं, जो किताबों से हमेशा नहीं मिल पाती। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें समय और मौजूदगी चाहिए। साथ बैठना, चाय पीना, खामोशी साझा करना, ये छोटे पल भरोसा बनाते हैं। मुश्किल वक्त में वही रिश्ते काम आते हैं जिनमें नियमित मुलाकातें होती रहती हों। अच्छी मुलाकातें यादें बनाती हैं, सालों बाद भी वही हंसी, वही बातचीत दिल को गर्म रखती है। जिंदगी सिर्फ कामों की सूची नहीं, बल्कि साझा अनुभवों का संग्रह है, और मुलाकातें ही उन्हें जन्म देती हैं।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रोड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। इस बातचीत में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, फार्मास्यूटिकल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम पहले से ही वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर रायसेन जिले की प्रेमा मेहरा

0: ने अपनी कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
1: मैं सन 2017 से ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी। आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही बेकार थी, मगर आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मैंने अपनी बचत जमा करना सीखा। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन ने मुझे भी काम दिया, मैंने CRP का काम करा। इसके अलावा मैं बैंक सखी का काम भी करती थी और आज मैं प्रधान NGO में बाड़ी ब्लॉक में आजीविका सहायक के रूप में कार्य कर रही हूँ। मेरी मासिक आय 18,000 रुपये है और मैं खुश होकर कह सकती हूँ कि मैं एक लखपति दीदी हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार EV से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि EV से वायु प्रदूषण नहीं होता, रख रखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपये का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने की तैयारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। कल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब यह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेज दिया गया है। हालांकि कार्य परिषद सदस्य डॉ. ताहिरा अब्बासी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह नाम स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्ला भोपाली की स्मृति से जुड़ा है और इसे बदला जाना उचित नहीं है। नाम परिवर्तन के लिए अभी विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कराना और राज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की चेतावनी भी है। वहीं कल रतलाम 42 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। मानसून इस बार सामान्य से देरी से यानी 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के ग्राम खातीखेड़ा में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर ने ग्रामीणों से रूबरू होकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को मुख्य आयोजन गैरिसन ग्राउंड ग्वारीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान पर किया जाएगा। शिवपुरी में इफ्को कंपनी की DAP रैक के माध्यम से 1,370 मीट्रिक टन DAP उपलब्ध हुई है, जिसका ई विकास प्रणाली से वितरण किया जाएगा। आगरमालवा में कल 2 नवीन वाहनों को पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया। इस मौके पर SP दिलीप कुमार सोनी ने कहा कि इससे जिले में नियमित गश्त, विशेष अभियान एवं आपात स्थितियों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी। झाबुआ में जलगंगा संवर्धन अभियान के दूसरे चरण में जल स्रोत सेवा समागम के तहत प्रस्फुटन ग्राम भोयरा में सुरक्षित जल समृद्ध कल विषय पर जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत

0: करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेस कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेस ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है।

0: यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको

0: को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म मॉडर्न बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
3: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का

0: शुभारंभ हुआ जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
1: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल, सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया लाड साहब फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार

0: दिल ने फिर याद किया फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर, जीएल रावल के बोल थे सोनी कोमी का संगीत। रोशन के संगीत से सजा होगा अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चलिए साथियों, अब सुना जाए रोशन के संगीत से सजा और साहिद लुधियानवी का लिखा गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। क्या कहता है ये गाना, दिल ही तो है।

मिलन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद की तर्ज पर शकी

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर दिल्ली का ठग फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रवि ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। साथियों, इन सदाबहार नगमों की सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका हुस्न कल भी तरोताजा था, खूबसूरत था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलिए अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर बढ़ा जाएं। शंकर जयकिशन की तर्ज पर शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर। क्या कहता है कन्हैया फिल्म का ये गाना, चलिए सुनते हैं साथ साथ।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। और ममता जी क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही है।
1: अब कहां, नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है, कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ, तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी
2: और वो छू मंतर हो गया सारा। हाँ। सारा दर्द, क्योंकि देखिए ना, हर किसी के जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है और हम ऐसे है ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान हो उठते हैं।
1: बोले
2: ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में।
1: बिल्कुल,
2: तो हर किसी के साथ ऐसा होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं,
1: किसी ने कुछ कह दिया
2: किया तो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, तैयार भाई गले लगा लिया, तो वे खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जो उदास बैठा है उसके पास जाकर जादू की झप्पी दे दे और प्यार से उसके कंधे पर, उसके सिर पर हाथ रखे कि चलो सब ठीक हो जाए। भले ही आपको कारण पता हो ना हो, लेकिन इतने से कोई बहुत बड़ा दुख या अवसाद होता है तो दूर हो जाता है। और कई बार ये घटनाएं भी इससे घटित होती हैं कि लोग अपनी जिंदगी से, अपने हालात से बहुत परेशान हाल होते हैं और वो कोई बड़ा कदम आत्महत्या जैसे कर रहे हो तो भी वो वक्त टल जाता है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या का बस कुछ लम्हा होता है, वो लम्हा अगर कुछ सेकंड टल गया तो वो टल गया, फिर उसके बाद मन ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई उदास चेहरा दिखाई पड़े तो बस उसके सिर पर हाथ रखें, एक स्पर्श से किसी की उदासी, किसी की नाराजगी, किसी का दुख दूर हो जाता है।
2: और साथ में आज हम कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत दुलारी देवी, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है तो इसमें गर्मी की छुट्टियों में आम खाने का आनंद,
1: बिल्कुल
2: यानी बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया ना,
1: मतलब आम के बाग में जाकर वो ढेला जो होता था, पत्थर कंकड़, उससे फेंका और आम जो टूटता था और उस आम को लेने की पकड़ने की होड़ होती थी। कई लोग, झुंड होता था बच्चों का तो वो झुंड दौड़ता था कि हम लेंगे हम लेंगे, और उसमें जो आनंद था वो तो जो इकट्ठा आम मिल जाए, और अब जो आम मैंगो शेक बना के पीने का आनंद है, या फिर पेटी में जो आम आता है जिसे आप खोलते हैं, वो आनंद कहाँ है।
2: वो जो आनंद था उसकी तुलना ही नहीं हो सकती, भले उसमें पंछी ने भी अगर उसमें थोड़ा सा
1: खास तौर से खा लिया
2: तो भी हम उसे धोखे खा लेते।
1: तो कहा जाता है कि तोते ने अगर जूठा किया है तो वो मीठा
2: और भी मीठा होगा
1: और वो देसी आम तरह तरह के आम। तो हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि वो आम खाने का क्या सुख था वो बचपन वाला, और साथ में किस तरह के आम आपने खाए हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती है आम की,
2: आपके क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां होती हैं,
1: लिख भेजे।
2: हाँ, और साथ ही उपयोगी टिप्स, यानी आम खा लिया, बहुत सारा आम खा लिया और व्यायाम नहीं किया तो वजन तो बढ़ ही जाएगा, वजन कैसे घटाए इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना शुरू भी कर दिया है, तो आप कितना आम खाते हैं और वजन घटाने के लिए क्या करते हैं, इस बारे में हमें लिखकर
1: विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी करें और कोई अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं आम खाने से जुड़ा हुआ। और ये जो हमने विषय दिया है, बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, कि आज मोबाइल का जमाना है तो वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, पता ही नहीं चलता कि कमरे में बैठा हुआ कोई रो रहा है। लोग अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है। तो ये जो ऐसा कोई अनुभव है, वाक्या है, तो आप जरूर साझा करें। और हम अब साझा करते हैं ये गीत।

0: तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे, और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप बाहर आ गई तो
1: श्रोताओं के कमेंट्स कैसे
0: पढ़ेंगे, ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
0: और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खासतौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली डिजाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, तो वो पहन ले, और फिर मधुबनी पेंटिंग खरीद कर ले आते हैं, अपनी दीवार को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है, तो दुलारी देवी ने मधुबनी में रहते हुए मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया और उसमें आगे बढ़ी, पद्मश्री से सम्मानित हुई। दुलारी देवी की जिंदगी की शुरुआत बहुत नीचे तबके से हुई और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई। उनके परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गए इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी, और उनके पिता मछुआरे थे।
1: देखिए,
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस

0: करने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
1: जी कितनी अजीब बात है ना कि कितने छोटे काम करती थी और उसके बाद और कहाँ तक पहुंची।
0: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्ट्स आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग कागज और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियां उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहां पर सीखने का मौका भी मिला।
1: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए 5 रुपए, आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
0: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं और स्थानीय लोगों से जब चीजें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपए में बेची थी जिसे बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
1: क्या बात है।
0: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते। और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी गौरव की बात है।
1: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
0: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है।
1: और
0: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुनकर।
1: बिल्कुल। और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें करते हैं।

0: तो सोनाली जी, ये गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था वो एक वटवृक्ष की तरह था,
1: सचमुच
0: जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें, एक साथ परिवार के साथ बैठे, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल करें।
1: और हम लोग है ना, हम लोग भारतीय, खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ते चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस ऐसे ही घुटने तक ही कर दिया।
0: अब तो घुटने तक
1: बस इतना करते हैं, पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है। और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। स्नेह का सबसे सुंदर

0: जो है ना स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। यह स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है, विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
1: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद उन शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति।

0: की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी। और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं और वो जो अंतिम मुलाकात होती है एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं। जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे, तो ये बातें याद रह जाती है और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो जाती है। लेकिन अब वो समय कहाँ है। और अब समय एक गाना सुनाने का,
1: सुनते हैं कि

0: सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे
0: स्पर्श के माध्यम से,
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है। ममता जी, हमारे
0: लीबर ने लिखा था ये गाना और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माएं, तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दें। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं। वो हमारा प्यार, स्नेह, समय और स्पर्श ही चाहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहां आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: वैसे एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेह स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक श्रोता कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, हाँ मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी सीखते हैं क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे।

0: में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपने छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली। तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़ी बड़े होने के बाद याद रहती है, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं, या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है, जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है, ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना या छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ आप कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहां पे टकराव ज्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ रहे और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाए, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
1: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
0: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
1: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेह स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेह स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्म पत्नी इस मामले में 2 कदम आगे हैं।
0: क्या बात है भाई,
1: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे
0: जी। तो वैसे भी ये कहा जाता है, महिलाओं के हिस्से में ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशील महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
1: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं। बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
0: बिल्कुल। और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है, इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं, बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहां पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है, अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं, तो वहां पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है, इसका भी ध्यान रखें आप।
1: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी, कि कहां जरूरी है और कहां नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: कहां हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहां और हमें गले,
0: खास तौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना है, तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई हैं आप।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी।
0: आम बहुत खास है,
1: कहने को आम खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बाहर आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में। फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइम, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का रस पराठे के साथ, मैंगो शेक बना के कभी काट के। तो आप बताइए आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब मुझे तो काट के?
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दो। फिर माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, उसमें इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते थोड़ी बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते हैं, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस दो तीन फाक खा लो
0: बस।
1: हाँ,
0: मतलब एक आम जैसे तैसे, हाँ, उससे ज्यादा नहीं खाना।
1: और फिर अगर तो ये आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान।
0: अच्छा, तो मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं।
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता है जो इनके शौकीन होंगे, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है अरे क्या बना है, आम का रस और पूरी, तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ,
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूरी खा चुके हैं,
1: और लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आम रस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, तो बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने।
0: तो हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़ कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोतापरी एक ने लिखा है, चौसा, लंगड़ा, ये आम हमने खाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा, इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में खासतौर से ये अल्फांसो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता
1: है, बहुत अच्छा लगता है वो आम,
0: तो उसमें जो
1: भी बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत नहीं,
1: जरूरत ही नहीं है उसमें। और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता है
0: अभी। लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में खासतौर से केसर आम,
1: हाँ,
0: बहुत मीठा आ रहा,
1: केसर आम है। फिर उसके बाद में जो बैगन फल्ली आम जो आता है, वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो

0: आम खाने का आनंद उठाएंगे। आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं। मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं। घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है। घर का बगीचा है, आम का पेड़ है। सच मानिए, एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम। आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूँ।
1: बिल्कुल। और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं
0: जी।
1: और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं। भले खाए नहीं, लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं
0: जी,
1: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए। वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है, वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
0: अपने आप
1: पनप जाते हैं, उग जाते हैं। जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम लगाए हैं और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा, बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत। जहां गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है, जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है। अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था।
0: हाँ।
1: और लोग बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी आम खा लेते,
0: और वो छोटे छोटे चूसने वाले आम थे ममता
1: हाँ,
0: जी
1: हाँ।
0: वो आते
1: और आप तो कह रही कि एक आम दो फांक,
0: आप तो ओ ममता जी, वो जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था,
1: उसमें
0: पर अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना।
1: और उसमें केमिकल नहीं होता था, कोई भी
0: केमिकल नहीं,
1: कोई दवा मिला के नहीं, वो सीधे देसी आम।
0: खेलते कितने थे ममता जी हम उस वक्त, कि आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था। अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, कि गर्मियों की चिलचिलाती धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी, जैसे आम रस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रखकर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे।
0: और आम का के यहाँ पे
1: और आम का पना भी बनता था।
0: हाँ।
1: और साथ में गांव में तो आम के, आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे।
0: ओहो।
1: तो ये कितने तरह के आम के, कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली है।
0: और आम की जो रोटी भी बनाते थे,
1: हाँ।
0: आम का रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
1: आम पापड़,
0: लगा के, आम पापड़ उसमें डाल के उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
1: अमावट भी कहा जाता है जिसे, तो और बोलिए।
0: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं, और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मजा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मजा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूंगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठ कर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गाँव याद आता है। नानी के गाँव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
0: आप एक गीत सुन ले।
1: सुनते हैं।

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राही प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है, और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वारफली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है,
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वजन बढ़ता है। और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, पिज्जा बर्गर चिप्स केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
1: मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया था।
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना
1: बिल्कुल मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं।

0: जहां तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दें, प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनवा।

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं यूनुस खान बोल रहा हूँ। स्टूडियो नंबर एक वो स्टूडियो है जहाँ हम अपने फोन इन कार्यक्रमों के लिए आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 02-2867-0288 यानी 2867-0288 और 02-400-24662 यानी 400-24662। सोमवार को दिन में 11 बजे से रिकॉर्डिंग होती है। देश भर के श्रोता फोन करते हैं और कई श्रोता इस बात से निराश होते हैं कि उनका फोन नहीं लगता। दरअसल फोन लाइंस की अपनी सीमाएं हैं ना। देश के कोने कोने से जब हजारों लाखों श्रोता एक साथ कॉल करते हैं तो कुछ खुशनसीब श्रोताओं का कॉल लग जाता है और उनकी हमसे बात हो जाती है। बस ये है कि आप कोशिश करते रहिए। और हाँ, जहाँ से फोन कर रहे हो वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। नेटवर्क अच्छा हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, कैसी हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं, मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए हम आपको कॉल कर रहे हैं सर जी।
0: गर्मी का मजा, ये बड़ा तंज है ये।
1: हर मौसम का अपना मजा है सर जी। यदि अपन बारिश में फिर ये गर्मी धूप ढूंढेंगे तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा ना।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल की गर्मियां कहर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?
1: नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सभी मौसम के आदि हैं और हमें हर मौसम में अपना उनका मजा लेना बहुत अच्छा लगता है।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, फिल्म का नाम है हम आपके है कौन।
0: अच्छा,
1: उस फिल्म में लता मंगेशकर SP बाल सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत है सर जी, उस गीत को प्ले कीजिएगा
0: जी।
1: गीत के बोल मैं थोड़ा गुनगुना के बता दूं क्या सर जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: किसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, कुछ पल की जुदाई फिर लौट आना है। ये वाला गीत सर जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम पूनम नायडू है और आप बस्तर से हैं, तो बस्तर में कब से हैं आप या यहीं पैदा हुई हैं?
1: नहीं, हम यहीं पर पैदा हुए हैं सर जी। जब MP था, मेरे पापा का जॉब यहाँ आंध्रा से यहाँ हो गया तो हम लोग यहीं पे बस गए, मम्मी पापा, और हमारी पैदाइश जो है यहीं पे हुई MP में। बाद में डिवाइड हुआ ना छत्तीसगढ़ और MP।
0: अच्छा, तो आपको तेलुगु आती है?
1: हाँ, तेलुगु पूरा बोलते, घर में तो हमारी मातृभाषा है ना सर जी।
0: तो बताइए तेलुगु में इस बात को कैसे बोलेंगे कि सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गाना।
1: एनंदी मी मीरू मी नच्चुकुने पाटा।
0: अरे बाप रे बाप। नहीं, इसको थोड़ा छोटा बोलिए।
1: वेनवंडी मीरू मी नचिंदी पाटा।
0: वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा, सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश,
1: राकेश यादव बोल रहा हूँ, सासनी के टलीगढ़ से।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, ठीक है।
0: क्या काम करते हैं?
1: दुकान करते हैं मोबाइल की। टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
0: जी,
1: बहुत काफी समय पहले से रेडियो भारती सुन रहे हैं।
0: अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: आशा पिक्चर का ही गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आखिर टूट जाता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, रूही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच नहीं रही और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर
0: जी, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम अपने एमपी सागर से बिक्रम सिंह और पुचाली राजा।
0: बिक्रम सिंह, सागर में कौन से इलाके से बोल रहे?
1: सागर इलाके में तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
1: क्वायला क्वायला।
0: अच्छा बताओ, क्या कर रहे हैं आज?
1: अब बैठे हैं सर, छोटी सी किराने की दुकान है जी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है अभी, अब तो थोड़ी राहत मिल चुकी है।
0: काय बारिश हो गई का?
1: जी बारिश हो गई 2 दिन तक में।
0: अच्छा कितनी बारिश हुई, बहुत सारी हुई है थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी हुई है सर, ज्यादा तो नहीं भाई है।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: अभी तो 9 तपा चल रहे कि खत्म हो गए?
1: जी सर, 3 दिन बाकी और
0: तनक बाकी है, 3 दिन बाद तो फिर बारिश आ जाए है, फिर मौज हो जाए है। काय
1: जी सर।
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं ये बताओ।
1: हमको सुनना है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का नंबर है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।
0: ए दद्दा रे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? का होगा हमें तो बताओ।
1: आपसे बात करके
0: मजा आ गया, हमसे बात करके हमें सो ही मजा आ गया, आपसे बात करके
1: आनंद आया सर।
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया, हमें जितने भी अपने श्रोता हरण है ना, सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है
1: जी। आपका बिल्कुल सर बुंदेलखंड जैसा बटका है बिल्कुल आपका।
0: बुंदेलखंड ही आए अपन शुद्ध वाले। हाओ तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।
2: क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क

रात तुम मत नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं एक तारा मेरे भैंस को डंडा।

घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है, हम सब तो रेल के डिब्बे हैं, वो अपनी इंजन गाड़ी है, वो गुस्सा जब भी करती है तो बन जाती है, तो बन जाती है। अंगारा मेरी भैंस को डंडा।

वालों का है नाम रखा, है नाम रखा जहानारा। मेरी भैंस को डंडा।

0: ज्योति जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा बताइए, क्या हालचाल है पीतमपुर के?
1: जी बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़ रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं
1: जी?
0: अब हमें ये बताइए, हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
1: गर्मी के से बचने के लिए बाहर जाए तो तावील लेके जाए, छाता लेके जाए, पानी अपने साथ लेके जाए।
0: बहुत सही, बिल्कुल,
1: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले।
0: सही बात है। अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश है?
1: गाना फिल्म का नाम है सूरज, तुमसे इतना प्यार है।
0: क्या बात है, चलिए बातें करते हैं पूरी और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: अच्छा बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अनिल नाइक बोडोली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: पैसा धन का गाना सुनना चाहते। पैसा
0: गाने के बोल बताइए।
1: जिन्हें नाज है इन लोग पर वो कहाँ है।
0: क्या बात है, साहिर लुधियानवी के बोल, शानदार गाना, SD बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या गर्व था।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुलगोविंद मिश्रा, उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने दिल्ली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर।
0: जी
1: बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा सर।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
1: जी
0: बताइए क्या हाल।

0: चाल है आपके इलाके के उड़ीसा के?
1: जी हाल चाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये 3 दिन से थोड़ा सा मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी जी, बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
1: जी जी,
0: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
1: जी हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर वो वाला फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक जो शुरुआत किए हैं 1 बजे जो सुनता हूँ वो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी दोस्ती फिल्म का राही मनवा, दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए।

0: साहब, कैसे हैं आप?
1: जी मैं अच्छा हूँ।
0: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे में नहीं। आप तो मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोले तो मजा आ गया। क्या बात है
1: मजा आ गया, क्या बात है। कौन बोल रही हैं आप?
0: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। आपके बड़े सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका। जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे, बड़ी जलन होती थी।
1: अरे बाप रे,
0: मैं भी बात कर रही हूँ। यस,
1: क्या बात है। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना।
0: पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और से, यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात।
1: ओहो, क्या बात है।
0: वो राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है, वैसे ही मैं, आप भी मेरे जहन में हो
1: जी।
0: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत, सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ
1: जी।
0: लोग मेरे से तंग आ गए, कितना बजाओगी करके।
1: अच्छा विविध भारती का साथ इसी तरह से बना रहे हैं आपके साथ, है ना?
0: मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूँ, उनका यही लक्ष्य है बस।
1: क्या बात है जी। तो बताइए, कौन कौन से कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब रहे हैं?
0: सभी कार्यक्रम, ज्यादातर पिटारा के सारे प्रोग्राम
1: जी,
0: वो बहुत अच्छे रहते हैं
1: जी।
0: और हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, और सब आप अभी तो एकदम से मैं एक्साइट हो गई हूँ, प्रोग्राम के नाम ही याद नहीं रहे आपसे बात करते हैं। सबसे ज्यादा तो आज के फनकार मैं सुबह जरूर सुनती हूँ
1: जी।
0: सुबह 8 बजे से लेके मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
1: अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
0: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
1: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद है आपको।
0: अरे अरे, मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले, पूरा गाना सुना सकती हूँ।
1: वाह वाह वाह, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो आप कहती है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्या बात है,
0: क्या बात है। थैंक यू
1: जी, शुक्रिया।
0: बचपन से आप बिलीव नहीं कर रहे, 57 नाउ, और मैं कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
1: ये लंबा सफर थे क्या आपने विविध भारती सुनते हुए?
0: बस सब सब आप लोग पुराने गाने सब, मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बचती।
1: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
0: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
1: शुक्रिया। हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म, और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी बताइए।
1: एकदम बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेतीबाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है, और बरसात जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
0: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम?
1: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया, मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुत आयत सबके घर में मिल जाते हैं।
0: सही है सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
1: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। और कई इसके कारण

0: होंगे भैया, सबसे ज्यादा तो यही अपन जो देखते हैं पर्यावरण में हस्तक्षेप करना, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
1: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
0: फिल्म है राजा और रंग के, गीत के बोल है ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
1: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-24662। अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 4002-4662। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया दो महीने तक हमें फोन ना करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं, तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश

0: बंगले और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो
2: फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। माना कि बहुत हैं आप हसीन, दिल को ठुकराया करते हैं, लेकिन हम भी दिल वाले दुश्मन को गले लगाया करते हैं। सामिन, हम में से बहुत लोग अपना जलवा बरकरार रखते हैं, और रखना भी चाहिए। इस जलवे को बरकरार रखिए बरखुरदार। फना निजामी कानपुरी फरमाते हैं, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए।

शायरी में जलवा शब्द ज्यादातर हुस्न और इश्क से जुड़ा है। हालांकि शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं और अर्थ भी जुदा होते हैं, लेकिन हुस्न के जलवे तो मशहूर हैं। अमीर मिनाई फरमाते हैं, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, मेरे जख्मों के सब टांके अचानक टूट जाते हैं।

0: न होती।
1: हुस्न का जलवा तो अच्छे अच्छों को घायल कर देता है। खुदा जाने आज उसका कैसा जलवा होगा, हुस्न होगा, नजाकत होगा और जमा होगा। वहीं जलील मानिकपुरी कहते हैं, मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्म मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो। मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्म मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो।

इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। हमने समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। सामिन, इश्क करने वालों के लिए अपनी महबूबा के हुस्न का जलवा बिल्कुल दवा जैसा होता है। तभी तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, आजाद हो चुके थे तूने बंधा बना के मारा।

कभी कभी प्रेमी जितने बेकरार होते हैं अपने महबूब का जलवा देखने के लिए, उतना ही जलवा दिखाने वाला भी बेताब होता है। हाँ, तभी तो जौक साहब फरमाते हैं, इश्क का जौक के नजारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का जौक के नजारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए।

जलवा था, जलवा है, जलवा रहेगा, लेकिन एक दिलजला आशिक खुदा से यही कहता है, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, संग दिल तो मिल चुके हैं हजारों, कोई अहले दिल तो दिखाई दे, कोई अहले दिल तो दिखाई दे।

एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोता हो, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। आपको सुनवाते हैं निमाड़ी लोकगीत, पहली दो रचनाएं भगवान सिंह और साथियों की आवाज में।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे भगवान सिंह और साथियों के गाए पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत। अब आपको सुनवाते हैं राम सिंह मालाकार और उनके साथियों के गाए लोकगीत।

0: आप सुनी रहा निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: और यह है लोक गीतों के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे निवाड़ी लोक रचनाओं के कार्यक्रम में भगवान सिंह और राम सिंह और साथियों के गाए पारंपरिक निवाड़ी लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से और अब आपको सुनवाएंगे युववाणी कार्यक्रम।

इंद्रधनुष सा प्रेम है मेरा, हर रंग में तू चढ़ा हुआ है। मेरे सतरंगी जीवन में मोतियों की तरह तू मड़ा हुआ है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका युवा साथियों के खास कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त लक्ष्मी ठाकुर। आप सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। दोस्तों, शुरुआत में हम जान लेते हैं आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। वहीं हमारा दूसरा प्रश्न है, 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे। दोस्तों, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे कार्यक्रम के अंत तक और एंजॉय करें युववाणी। दोस्तों, जितना ख्याल हम अपने स्वास्थ्य और सेहत का रखते हैं, उतना ही ख्याल भारत सरकार भी हमारा रखती है। इसलिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क इलाज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही एक योजना है आयुष्मान वय वंदना योजना। ये योजना पिछले वर्ष यानी वर्ष 2025 में 4 जून को लॉन्च की गई थी। यह योजना वयोवृद्ध यानी कि 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। इस योजना के तहत 5,00,000 का निशुल्क इलाज हर साल मिलता है। इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को कॉमन सर्विस सेंटर से आयुष्मान कार्ड बनवाना आवश्यक है। इस योजना के तहत ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, कैंसर या पहले से कोई बीमारी होने पर भी पूरा कवर मिलता है। हमारे देश में 30,000 से अधिक लिस्टेड शासकीय और निजी अस्पताल में इस योजना के माध्यम से उपचार करवाया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपके परिवार में भी कोई 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु का वयोवृद्ध है तो आयुष्मान कार्ड बनवाकर 5,00,000 तक का फ्री हेल्थ कवर प्राप्त किया जा सकता है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, क्या आप भी अपनी पढ़ाई, करियर और अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं? मैं सोचती हूँ आप सभी का जवाब हाँ ही होगा। दरअसल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है, उतनी ही आवश्यकता होती है मैनिफेस्टेशन की।

भी। सरल शब्दों में यदि समझा जाए तो सोचो और प्राप्त करो। दोस्तों, गहरी सोच, विश्वास और इच्छाओं को अपनी सकारात्मक ऊर्जा के जरिए वास्तविकता में बदलना ही मैनिफेस्टेशन है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित होता है, मतलब जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही परिणाम हमें मिलने लगते हैं। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का सीधा संबंध हमारी सोच से है। हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं और विचारों के माध्यम से ही जीवन की दिशा तय होती है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे और जैसा परिणाम हम चाहते हैं वैसा महसूस करें, बार बार परिणाम को दोहराएं, तो हमारे सपने वास्तविक होने लगते हैं। दोस्तों, हम विशलिस्ट बनाकर भी उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत में अपने विशलिस्ट में छोटी छोटी ख्वाहिशें या चाहतें शामिल करें और उन्हें मैनिफेस्ट करें। इससे हमारे अंदर की ऊर्जा और अधिक प्रभावी होती है। जब हम किसी लक्ष्य को सोचने लगते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ कार्य करते हैं और बार बार अपने लक्ष्य के विषय में स्वयं से सकारात्मक बात करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को मैनिफेस्ट कर ही लेते हैं।

दोस्तों, इन दिनों सूरज की गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और यह भयावह गर्मी से जहां स्वास्थ्य की चिंताएं बढ़ती हैं, वहीं बिजली के बढ़ते बिल हमारा जेब खर्च भी बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्हीं सूरज देवता की रोशनी से बिजली के बढ़ते बिलों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूरज की रोशनी से विद्युत उत्पादन करने वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम की। घर, दफ्तर या फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन किया जा सकता है। इसमें सूरज की रोशनी से बिजली बनती है जो घर, दफ्तर या फैक्ट्री में काम आती है। रूफटॉप सोलर सिस्टम से बिजली बिल 80 से 90 प्रतिशत तक कम हो जाते हैं। एक बार सोलर सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद लगभग 25 साल तक ये सर्विस देते हैं। साथ ही ये पर्यावरण मित्र होते हैं। भारत सरकार भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाती हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2 जैसी योजनाओं के अंतर्गत शासन द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे उपभोक्ताओं पर पूरा भार भी नहीं आता और बिजली बिलों से काफी हद तक मुक्ति मिलती है।

दोस्तों, जून माह की दस्तक के साथ ही हमारे देश में मानसून की दस्तक भी हो जाती है। लेकिन ये मानसून होता क्या है? मानसून हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो हमारे देश में भारी वर्षा करवाती है। गर्मियों में जब जमीन का तापमान बहुत बढ़ जाता है, तब समुद्र की ओर से नमी भरी हवाएं जमीन की तरफ खींची चली आती हैं। हिंद महासागर में जब गर्मी के कारण तापमान बढ़ता है, तब मानसूनी हवाएं सक्रिय होकर इक्वेटर पार करती हैं और भारत की तरफ रुख करती हैं। दोस्तों, भारत में आधिकारिक तौर पर मानसून की एंट्री 1 जून को केरल के मालाबार तट से होती है। वहीं मौसम विभाग द्वारा हवा की गति, नमी के स्तर और लगातार 2 दिनों तक भारी बारिश होने के वैज्ञानिक मानकों को परखने के बाद इसकी घोषणा की जाती है। दोस्तों, मानसून की पहली बारिश के बाद ही धरती दुल्हन से श्रृंगारित हो जाती है। सूखी पीली घास मखमली चादर में बदलने लगती है, पेड़ों के पत्ते धुलकर चमकने लगते हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू से दिल खुशी की हिलोरे भरने लगता है। काले गरजते बरसते बादल, कड़कड़ाती बिजली, ठंडी हवाएं मौसम में मदहोशी घोल देती है। मानसून का आगमन गर्मी से झुलसे मन को तृप्त कर देता है, किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है, प्रेमियों के मन में रोमांस भर देता है और कवियों को नई कविता सृजन की चेतना देता है। दोस्तों, मानसून सिर्फ बारिश नहीं लाता, बल्कि प्रकृति से लेकर मानव मन तक को प्रेम, उल्लास और खुशियों से सराबोर कर देता है और इस समय हर मन नाचने, झूमने और गाने को आतुर होता है। चलिए, हम भी मानसून के इंतजार में सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमें प्रकृति ने अनेक रंग उपहार में दिए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हर रंग का अपना अर्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न रंग मानवीय भावनाओं, मनोदशा और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिसे कलर साइकोलॉजी या रंग मनोविज्ञान कहा जाता है। कलर साइकोलॉजी कला विज्ञान और मनोवैज्ञानिक का मिश्रण है, जो बताता है कि रंगों की ऊर्जा हमारे दिमाग और तंत्रिका तंत्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित करती है। दोस्तों, हर रंग का अपना मनोवैज्ञानिक अर्थ और प्रभाव है। जैसे लाल रंग ऊर्जा, उत्साह, जुनून और आक्रामकता को दर्शाता है, यह दिल की धड़कन बढ़ाता है। वहीं नीला रंग शांति, विश्वास, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है, यह रंग तनाव कम करता है। यदि पीले रंग की बात की जाए तो यह खुशी, आशा और बुद्धिमत्ता को दर्शाने वाला माना जाता है, यह रचनात्मकता को बढ़ाता है। वहीं हरे रंग को प्रकृति, स्वास्थ्य, शांति और संपन्नता का सूचक माना जाता है। हरा रंग आंखों को सुकून देने वाला रंग है, जो ताजगी और संतुलन का एहसास कराता है। यदि काले रंग की बात की जाए तो यह शक्ति, डर का प्रतीक माना गया है। वहीं सफेद रंग पवित्रता, सादगी, स्वच्छता और शांति के गुणों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, रंगों का प्रभाव हर व्यक्ति पर व्यक्तिगत अनुभव और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से निर्धारित होता है।

प्रश्न था, 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा की जाएगी। दोस्तों, अब अपनी रेडियो दोस्त लक्ष्मी ठाकुर को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर मिलेंगे नई बातों और गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों, ये तो था हमारा आज का क्रम इंद्रधनुष। बातों और गीतों के सिलसिले को विराम देते हुए हम जान लेते हैं आज के प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न था, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हमारा दूसरा

श्रोताओ, आप सुन रहे थे युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रसारित हो रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार।

रामचोर। जी हाँ, इस फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग हम सुन रहे थे, किशोर कुमार के साथ आवाज अलका याग्निक की थी और संगीत राजेश रोशन का। और आइए एक और डुएट आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, किशोर कुमार के साथ इस बार आवाज आशा भोसले की है, साहिल लुधियानवी का गीत, राहुल देव बर्मन का संगीत है, फिल्म दीवार।

ओशो पाओ। अब आप पाएंगे राहुल देव बर्मन की एक और संगीत रचना, इस बार गुलजार का गाना है, एक बार फिर आवाज आशा भोसले की, फिल्म नरम गरम।

आशा जी के बाद अब उनकी बहन की बात। जी हाँ, लता जी की आवाज में फिल्म रजनी गंधा का गीत आपको सुनवाते हैं। ये योगेश की रचना है और संगीतकार जी हाँ सलिल चौधरी।

फिल्म संगीत के लिए आपके अनुरागी मन के लिए अगला गाना लता जी की आवाज में है। फिल्म जल महल का गीत है ये।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: एक कहानी।
2: 5 जून है बेहद खास, क्योंकि है विश्व पर्यावरण दिवस और माह का पहला शुक्रवार। हम पेश करेंगे एक कहानी।
3: सच कहूं, अगर वो पौधे ना होते तो शायद मैं भी ना बचती। मैं अपने पौधों से बातें कर अपना सारा सुख दुख बांट लिया करती। हाँ सचमुच, मुझे हमेशा लगता था पौधे भी बोलते हैं।
2: जरूर सुनिएगा सुबह 7:20 पर 5 जून शुक्रवार।
1: एक कहानी।

और अब प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं। मैंने प्यार किया इस फिल्म का ये गीत है लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। और आज एसपीबी यानी बालाजी का जन्मदिन है, उनकी स्मृति को समर्पित है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: संगीत। FM 101.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से। शाम के 7 बजने को है, आइए दिल्ली केंद्र से सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने

0: वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.2 MHz पर श्रोताओ, ये है आकाशवाणी खंडवा।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

0: तो फिर सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: मेरी आश की अब तुम
2: क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
3: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
2: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
3: क्यों?
2: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
3: वो कैसे?
2: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
3: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
2: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
3: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
2: आप कब आ रहे हैं?
3: आकाशवाणी खंडवा पर।

0: आप बने रहिए हमारे हमसफर और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: FM एंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना।
2: तुम आए तो आया मुझे गली में निकला।
1: तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंड।

0: हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने वाले हैं। आपको सुनवाते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।
1: पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात कर ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल गुजरात और दमन दौरे पर 21,500 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को जनजातीय क्षेत्रों में उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए और इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक भंडार मौजूद है। इसके अलावा खनन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन क्षेत्र का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी जारी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी।
1: I will request all the citizens.
2: मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे ऊर्जा की बचत करें और उसका सोच समझकर उपयोग करें। सरकार पेट्रोल, डीजल और LPG के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए घबराहट में इनकी जरूरत से अधिक खरीदारी या बुकिंग ना करें। साथ ही लोगों से अनुरोध है कि वे PNG, इंडक्शन स्टोव और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों और साधनों का भी उपयोग करें।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता एक मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। राज्यपाल ने प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं और बच्चों को सिकल सेल के कारण, लक्षण और उपचार की जानकारी देने के लिए भी कहा है। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका देशों के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और IT क्षेत्र में निवेश और

0: व्यापार के अवसरों पर भी चर्चा होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि ईवी से वायु प्रदूषण नहीं होता, रखरखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। खरगोन के लिए 16 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनेगा। जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इच्छुक कर्मचारी 3 से 8 जून तक EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 15 कार्यालयों का चयन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की शुभा खाड़े ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
2: मैं 7 साल से आजीविका मिशन में जुड़ी हूँ। वर्तमान में मैं बैंक सखी का कार्य कर रही हूँ। जो मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, अब आजीविका मिशन में जुड़ने के कारण मैंने जो जनरल स्टोर की दुकान खोली है उससे मुझे अच्छी इनकम हो जाती है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है।
0: मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण में मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 8,317 आवेदकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 18 जून को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। उज्जैन की 12वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा कुशवाहा ने मात्र 22 मिनट में चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर अपना नाम दर्ज कराया है। 8 मिलीमीटर आकार की इन दालों पर सूक्ष्म कला का यह कमाल दीक्षा ने महज 1 साल की मेहनत से हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर दीक्षा को बधाई दी है। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर बद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस याद बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रख रहे हैं। थोड़ी देर में अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा जिसमें देशभर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं को भी सावधान किया है कि मानसून में हवा में नमी के कारण करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है और घर में मजबूत अर्थिंग का होना जरूरी है। अब रुख करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। बीते 24 घंटों में 29 जिलों में आंधी बारिश और कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। श्योपुर में सबसे अधिक 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई और कई इलाकों में जलभराव हो गया। राजधानी भोपाल में रात भर बारिश का दौर चला है और सुबह भी बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने आज नीमच के ग्राम खेमला में निर्माणाधीन ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल में विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संपर्क अभियान के तहत खंडारा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। खंडवा शासकीय ITI में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 265 युवाओं का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन किया गया। नर्मदापुरम जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पचमढ़ी के छावनी झील पर सफाई और जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के द्वारा आज किरण बाल गृह कटनी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगरमालवा जिले के सुसनेर में 5 से 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत राजगढ़ के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में

0: आप सुनी रहा निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों को स्वागत है आपका अपना कार्यक्रम में। ना आज का कार्यक्रम में आपका साथ है आपकी बहन स्मिता बरोले। तो सभी भाई बहन हमारी राम राम। भाई बहनों हनी मानसून आवना वालो छे ना कहीं कहीं मानसून ने अपनी दस्तक दई भी दीज। मानसून आवना का पहला किसान भाई खेत की तैयारी में लगी जाए जेका से मानसून आवना पर बोनी की जाई सका। मानसून पूर्व खेत की तैयारी खरीफ फसल न की नींव छे। मई जून में की गई तैयारी से बीज को अंकुरण भी अच्छो है न खरपतवार कम उगज न पानी को भराव नहीं होतो है। न अभी किसान भाई ने न खेत की गहरी जुताई तो करी ली होगा न अभी किसान भाई ने न जुताई का बाद 10 से 15 दिन का लेना खेत नख खुलो छोड़ी भी दिए होएगा। जुताई का बाद अगर नमी कम छे तो हल्का पलेवा भी करी देख नहीं का सातज खरपतवार का बीज उगी कर ओम मरी जाएगा। सातज खेत ख समतल करी देवा जेकासी मानसून को पानी रुका नहीं न बही कर कहीं जाएगा भी नहीं न हर जगह बराबर नमी बनेल रहेगा। पानी की बचत भी होएगा सातज मेड़बंदी और नाली न बनावना खेत का चारों तरफ मजबूत मेड़ बनावनो अरु निकासी की नाली रखा जेकासी तेज बारिश को पानी खेत में जमा नहीं होएगा न फसल डूबने से बची जाएगा। सातज जुताई का समय 4 से 5 टन गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद प्रति एकड़ डाला जेकासी मिट्टी भुरभुरी होएगा न पानी सोखने की ओमा क्षमता भी बढ़ेगा। रासायनिक खाद 25% तक कम लगेगा। प्राकृतिक खेती वाला किसान भाई जीवामृत डाली सके न बीज अरु दवाई की तैयारी करी लेवा अच्छी कंपनी का प्रमाणित बीज लेवा न नमी उमा देखी लेवा। बुआई से पहला बीजामृत या थायरम सी बीज उपचार जरूर करा जेकासी फफूंद अरी कीट नसी फसल न को बचाव हुई सका। न भाई बहन नहुनी अब सुनी लेवा जे एक निमाड़ी लोकगीत जेखा गायु धर्मेंद्र सरमंडल अरु साथी नाना।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: भाई बिन्नहुनी, अब आपसे पूछे लेवांज आज को प्रश्न। हमारो आज को प्रश्न छे लेजर लेवलर कृषि यंत्र को उपयोग किसान भाई कसो करी सकज। भाई बिन्नहुनी, प्रश्न एक बार फिर से सुनी लेव। लेजर लेवलर कृषि यंत्र को उपयोग किसान भाई कसो करी सकज। इना प्रश्नों को उत्तर तो हम आपको जरूर बतावांगा, लेकिन कार्यक्रम का अंत में। भाई बहन नोहनी, अभी हम बात कर ही रहा था मानसून पूर्व खेत की तैयारी की। ना भाई बहन नोहनी, हम खेत की तैयारी तो करी राज, ना हम प्राकृतिक खेती की तरफ भी बड़ी रयाज। प्राकृतिक खेती एक ऐसी कृषि पद्धति छे जेमा रसायन की बजाय पूरी तरह से प्राकृतिक जैविक खाद को उपयोग करो जाए, जेमा जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत और देसी गाय को का जो उत्पाद छे उनको उपयोग हो। ये कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली फसल देज, मिट्टी की उर्वरता का बढ़ावना अरु किसान न की आय में वृद्धि करने का लेना अत्यंत महत्वपूर्ण छे। साथज प्राकृतिक खेती का बहुत सा भी लाभ छे, जेमा प्राकृतिक खेती अपनावना सी सबसे पहला खेत की मिट्टी को स्वास्थ्य सुधार होएज। रासायनिक खाद कीटनाशक सी मिट्टी सख्त बंजर हुई जाए। प्राकृतिक खेती में गोबर, गौमूत्र, जीवामृत, बीजामृत सी मिट्टी में केचुआ बैक्टीरिया बढ़ज, न मिट्टी भुरभुरी उपजाऊ बनी जाए। उपजाऊ मिट्टी में कम खाद को खर्च भी आवज, साथज लागत लगभग शून्य का बराबर रहज। रासायनिक खाद कीटनाशक महंगा बीज नहीं खरीदनो पड़तो है किसान भाई का। घर को गोबर, गौमूत्र, देसी बीज, पेड़ की पत्ती सी काम चली जाए। साथज एम जीरो बजट भी किसान भाई खा लगज, छोटा किसान कर्ज का जाल में नहीं फंसता है। साथज पानी की कम लागत लगज। प्राकृतिक खेती में मल्चिंग अरु बाफसा तकनीक से मिट्टी में नमी बनी रहे, जेम धान गेहूं में 60-70% तक पानी बचज, न ट्यूबवेल का डीजल बिजली को खर्च भी कम हो। एक साथज सेहत का लिए भी फायदेमंद छे। बिना जहर वाली फसल सातज सब्जी अनाज दाल में कीटनाशक न का अवशेष नहीं होता है, जेकासी कैंसर किडनी त्वचा की बीमारी न को खतरो कम रहज। एका सातज सबसे बड़ो लाभ ही छे कि एकासी पर्यावरण बचज। रासायनिक खासी जमीन अरु नदी न को पानी जहरीलो होतो जाइरज, कीटनाशक छड़कना सी मधुमक्खी तितली पक्षी बचज, परागण अच्छा सी होज, कार्बन में मिट्टी में बंद हुई जाए तो जलवायु परिवर्तन को असर भी एमा कम होज। साथज प्राकृतिक खेती वाली मिट्टी ज़्यादा पानी सोखज, एकालेना सूखा और तेज बारिश फसल नसी एकासी फसल न कम खराब होज, न किसान न को जोखिम भी घटज। एका साथज जो प्राकृतिक खेती का स्तंभ छे वो इना प्रकार से छे, बीजा अमृत बीज को गोबर गौमूत्र से उपचारित उनका करनो ताकि उनमें बीमारी ना नहीं लगा। जीवामृत जेमा गोबर गौमूत्र गुड़ बेसन सी बनेल घोल एम उपयोग में लाया जाए, जेमा मिट्टी का जीवाणु उनका खाए और उनका वो ज़्यादा संख्या में पनपज। सातज मल्चिंग फसल का अवशेष या पत्ती सी मिट्टी खर ढकनो ताकि उमा नमी बने रहेज, न फसल न को अंकुरण अच्छा सी होएज, न एम पानी भी कम देणु पड़ज। सातज ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला 2-3 साल में पैदावार थोड़ी कम लगज, पर धीरे धीरे मिट्टी को सुधार हो जाए, न 2-3 साल बाद प्राकृतिक खेती में अपनावना सी बस फसल न उगना लगी जाए, न ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन बढ़ी जाए। एका सातज अभी खेत बचाओ अभियान 1 जून से शुरू हुए, न हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ी न ये अभियान का सफल बनाई सकें। तो भाई बहन नहुनी, ये तो थी आज की हमारी बातचीत। न भाई बहन नहुनी, अब सुनी लेवाज भेंटवार्ता। विषय छे पोषण वाटिका को महत्व, इना विषय पर जानकारी

0: भाई बहनों राम राम। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती मेघा चौधरी जी को, जो एक प्रगतिशील कृषक है, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि महिला कृषक आज हमारे साथ है। तो हम इनसे चर्चा करेंगे पोषण वाटिका विषय पर। मेघा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार सभी किसान भाई बहनों को, मेरा नमस्कार।
0: मेघा जी, जैसे कि हमारा जो विषय है पोषण वाटिका, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि पोषण वाटिका क्या है।
1: पोषण वाटिका एक तरह से जो पहले हम लोग किचन गार्डन बोलते हैं, या जो हमारे पास थोड़ा जमीन मतलब जगह है और वहाँ हम अपने घर परिवार के लिए कुछ सब्जी भाजी फल अगर उगा सकते हैं तो वो हम उगा सकते हैं। आजकल तो जमीन नहीं है तो हम गमले में या छत पे भी उगा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसमें जो हमें पोषण मिलता है उसमें हम लोग रासायनिक खाद वगैरह यूज नहीं करते, तो पोषण वाटिका एक तरह से वही है कि जिससे हमें पोषक तत्व मिल सके बिना रसायन।
0: बिल्कुल। और हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपके मन में आया कि हम पोषण वाटिका घर में लगा सकते हैं और इससे सब्जियों के ऊपर जो व्यय होता है, खर्च होता है, उसको बचत कर सकते, इसके बारे में बताएं।
1: ये देखिए, जैसे आजकल जो भी सब्जियां फल वगैरह आते हैं उसमें
0: जी,
1: तो उसमें रसायन उर्वरक वगैरह डलते हैं। पर जब मन में आया कि नहीं, इतना रसायन अगर डाला जाता है तो पेट में भी थोड़ा जाता ही होगा।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इसलिए मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना हम अपने लिए स्वयं अपना सब्जी भाजी या फल उगा सके जितना हमसे बनता है, तो वो पोषक तत्व तो उसमें रहे और हमारी फैमिली को भी पोषक तत्व तो मिल सके वो सब्जियों के जरिए। तो विचार किया था, मम्मी दादी नानी पहले से करते आए हैं, मतलब
0: जी,
1: वो लोग उगाते आए हैं खाली जमीन पर, तो मुझे भी ऐसा लगा कि हमारे परिवार के लिए कम से कम हम उगा सकते हैं।
0: जी,
1: मेहनत थोड़ी लगेगी, उतनी मेहनत हम बाजार जाके भी भाजी सब्जी लाने में खर्च होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो हम घर में ही मेहनत करके वो चीजें उपलब्ध कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक ये भी है कि जैसे हम देखे जाए तो हमारे पुराने समय से जो घर के आसपास कुछ पड़ती जमीन रहती थी, या जो अपन एक छोटा बगीचा जहाँ फूल के पौधे लगे होते थे, और उसी में हम कहीं हरी धनिया है तो कहीं अपना थोड़ी सब्जी है वो उगा लेते थे और वो घर में उपयोग में आ जाती थी। तो ये है कि आपके यहाँ भी मतलब आपने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। और ये जानना चाहेंगे कि ये विचार तो आपके मन में मतलब पुराने समय से ही था, तो आप इसको पे कब से काम कर रही है?
1: अब देखो, शादी के बाद से कम आज 10 साल हो गए मुझे। जमीन थी हमारे यहाँ, अब उस पे घर वगैरह बन गया है, तो उसका वो जो जमीन का जो हम जमीन पे उगाते थे आजकल उस चीज को हमने गमलों में सेट कर लिया है, छत पे सेट कर लिया है, जो खाली जगह है थोड़ी बहुत उस पे सेट कर लिया है, तो वहां पर हम लोग ये चीजें उगा लेते हैं।
0: जी, ये तो पोषण वाटिका की शुरुआत आपने कैसे करी उसके बारे में थी। अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी हम कौन सी सब्जियां ले सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो?
1: अभी देखो, पालक, मेथी, गोभी, मटर, इसका सीजन तो खत्म होने में है।
0: बिल्कुल।
1: तो आगे के लिए हम लोग इसमें तुरई, गिलकी और बलोर फल्ली वगैरह अगर हमने बरसात में लगाई है ये बेले, तो उसमें भी फल इसी समय में आते हैं।
0: जी,
1: तो हम उस चीजों का उपयोग कर सकते हैं।
0: जी, जी। तो ये बेल वगैरह से
1: बेल
0: होती है,
1: हाँ।
0: तो इसके लिए हमको क्या व्यवस्था करनी पड़ती है?
1: देखो, बेल वगैरह अगर लगाई है तो उसके लिए डंडियों पे पहले चढ़ाना पड़ता है उसको।
0: जी।
1: और फिर अगर जगह है तो छत पे चढ़ा लेते हैं।
0: जी।
1: और हरी नेट वगैरह लगा के, अभी धूप ज्यादा पड़ रही है तो उसको बचा सकते हैं।
0: जी।
1: समय समय पे पानी वगैरह देकर, छत पे जगह भरपूर रहती है तो छत पे फैल जाती है आराम से, डंडियों से सहारा वगैरह देकर उनको ऊपर चढ़ा सकते हैं।
0: जी, अभी ये है कि जैसे अपन ने जो सब्जियों की अभी शुरुआत की गर्मी में, तो उनमें हमको पानी देते समय इन्हें सिंचाई का कितना ध्यान रखना पड़ता है और वो कितने दिन में फल देने लगती है या
1: सिंचाई का? तो सिंचाई का ऐसा है कि देखो, अभी धूप पड़ रही है तो हम लोग सुबह या शाम में
0: जी
1: पानी उस समय देंगे ताकि वो भाप बनकर ना उड़े।
0: जी।
1: और उसको हरी नेट से वगैरह कवर कर ले तो पानी भाप बनकर नहीं उड़ेगा। और ये सब्जियां जो लगती है बेल वाली, ये 20-25 दिन में फल देने लगती है।
0: जी, इन्हें 20-25 दिन है कि अगर हमें इसकी शुरुआत अभी करते हैं। अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे अपने सब्जियां तो लगा दी
1: जी,
0: है ना, आपका जो अपने को 2 से 3 बार या 4 बार जो सब्जियां मिल गई, तो जैसे अप्रैल तक वो सब्जी आ चुकी, तो उसी को फिर हम डबल से लगा सकते हैं क्या?

0: देखो, कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो डबल दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, और कुछ पौधे ऐसे रहते हैं उनमें एक ही बार फल आते हैं। जैसे
1: ये कौन कौन सी सब्जी है?
0: जैसे बैंगन वगैरह हुए, इसमें एक ही बार आता है, फिर बाद में उसको निकाल के नया रोप तैयार करके फिर नया लगाया जाता है इसमें।
1: जी जी।
0: तो जो जिसमें डबल फसल नहीं आ सकती उसे तो हमें निकालना ही पड़ेगा, और जिसमें डबल फसल आ सकती है उसकी कटाई रोपाई वगैरह करके उसे नियमित सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
1: तो जैसे आपने बोला कि रोप तैयार करके, तो इसके लिए आप रोपे के लिए तैयारी अलग से करते हैं, उसके लिए ट्रे वगैरह जैसे लगाए जाते हैं, तो उसकी रोपे आप कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में?
0: जैसे रोप, अब मिर्ची का पौधा नहीं लगता है, मिर्ची के रोप लगते हैं, बैंगन के रोप लगते हैं, तो उन फल सब्जियों के लिए अलग से एक ट्रे बनाकर उसमें समय से थोड़ा पहले बीज वगैरह डाल देते हैं
1: जी,
0: जो हमें कृषि वैज्ञानिक संस्था बुरहानपुर से उपलब्ध हो जाते हैं
1: जी,
0: तो वहां से हम लोग वो बीज लाकर वो रोप तैयार कर लेते हैं, और जब उसका समय आता है तब उसको फिर रोप लेते हैं।
1: रोप तैयार करने से ये भी फायदा है कि हमें मतलब ज्यादा उनको समय नहीं देना पड़ता है, पहले से तैयार रहती है, और हम उनको गमलों में
0: सेट कर सकते हैं।
1: तो जैसे गमलों में जब उनको हम लगा रहे हैं तो कोई विशेष सावधानी की जरूरत?
0: विशेष सावधानी मतलब जैसे लगाते समय गमले में पानी, मिट्टी की जो नमी वगैरह रहती है वो परफेक्ट होना चाहिए
1: जी।
0: तो जैसे उसमें अगर सब सही रहा और लगाते समय उसको व्यवस्थित लगाया गया तो वो रोप जगता है, एक ग्रामीण भाषा में हम उसको बोलेंगे कि वो जग गया है
1: जी,
0: जैसे
1: जी,
0: लग
1: जी।
0: जाता है उसमें और नियमित पानी
1: मतलब ग्रोथ होने लगती है।
0: जी।
1: ये तो हो गई अपनी केवल सब्जियों को कैसे लगा सकते हैं। अब बात आती खाद उर्वरक की
0: जी।
1: तो आप उसमें कौन कौन सी खाद का उपयोग करते हैं या जैविक खादों का ही उपयोग करते हैं उसके बारे में?
0: हाँ, जैविक खाद और जैसे हम लोग घरेलू किचन में जो हमारा वेस्टेज निकलता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: सब्जियों की कतरन, फलों के छिलके, चाय पत्ती वगैरह, इसको एक गड्ढे में डाल के रखते हैं, गड्ढे में या फिर गड्ढा करने के लिए जगह नहीं हो तो मटके में या उसमें डाल के रखते हैं, उसमें मिट्टी वगैरह डाल के, थोड़ी रेत डाल के, और उस तरह से वो थोड़ा खत तैयार करते हैं। और ये खत के अलावा नीम का पानी, नीम की पत्तियों का पानी और गौमूत्र, उसका भी छिड़काव करते हैं
1: जी। ये मतलब आप पूरी जैविक तरीके से ही अपने यहाँ सब्जियां लगाते हैं। तो मतलब अब बात आती कि कीट रोग नियंत्रण की, तो जो सब्जियां हैं उनमें कीट रोग का भी प्रभाव होता है, और उनको नियंत्रण कैसे करते हैं आप
0: जी? उसके लिए फिर नीम पानी बनाते हैं, नीम का पानी और या फिर गौमूत्र और गुड़ का पानी बनाकर स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर लेते हैं।
1: ये जो आप बनाते हैं, हाँ, ये जो आप, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी कि जो आप ये बनाते हैं इसकी क्या विधि है?
0: नीम के पत्ते, हरे पत्ते लाकर उसको एक ड्रम में या जिसमें भी आपके पास जो भी बर्तन बड़ा उपलब्ध हो उसमें डाल के 10 से 15 दिन उसमें रखना पड़ता है
1: जी।
0: और उसमें फिर एक और दो और एक के अनुपात में पानी, नीम का पानी ज्यादा और गौमूत्र कम, इस तरह से अनुपात में मिलाकर फिर उसका छिड़काव करते हैं
1: जी। अब ये बताइए कि अब जैसे खरीफ सीजन आता है, गर्मी का अपना ये हो गया, उसके बाद में खरीफ में आप कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं?
0: खरीफ में जैसे अब आगे गिलकी जो लगा चुके हैं बेले, अब उसमें गिलकी और तुरई ये चीजें आएंगी, बैंगन वगैरह जो आते हैं
1: जी,
0: वो चीजें आएंगी अब उसमें
1: जी। और रवि में भी आप लगाते हैं सब्जियां?
0: देखो, सब्जियां तो 12 महीने चलती रहती है, वो इसी एक न एक सब्जी जब अपन घर पे लगा रहे हैं तो उसकी हर तरह से देखभाल करके हर तरह से हर एक सब्जी हर मौसम में उगा सकते हैं
1: जी। बिल्कुल। तो मेघा जी, अब ये जानना चाहेंगे कि आप ये जो सब्जियां आपने यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, उनको लगा रहे हैं, तो इसके जैसे सब्जियां मिल जाती है, कितना उत्पादन होता है, इसके बारे में बताइए।
0: देखो, हम लोग घरेलू रूप से करते हैं, तो हम लोगों का 5 लोगों का परिवार है
1: जी,
0: तो कम से कम हम लोगों का तो हो जाता है उतने में
1: जी,
0: जो भी भिंडी, गिलकी वगैरह जो भी सब्जियां निकलती है, मार्केट जाके सब्जियां लाने की जरूरत बहुत कम पड़ती है
1: जी,
0: घरेलू उपयोग के लिए पूरी हो जाती हैं उतने सब्जियां हम लोगों को
1: जी। और इसके अलावा जैसे पौधे भी आपने लगाए होंगे
0: जी,
1: तो कोई ऐसे पौधे हैं जो हमें सब्जी
0: 12 महीने दे सकते? तो उसमें लगा हुआ है चीकू का, फलों के रूप में चीकू का पेड़ है और नींबू वगैरह है, और उसके लिए तो जगह है इसलिए जगह में लगा रखा है। वो सहजन की फल्ली है
1: जी,
0: तो पपीता वगैरह है
1: जी,
0: ऐसे बड़े पेड़ होते हैं जो हमेशा फल देते रहते हैं, तो ये जमीन में लगाए हुए हैं
1: जी। तो मेघा जी, अब ये बताइए कि आप हमारी बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं अपनी बहनों और एक ही सलाह देना चाहूंगी कि अगर रसायन वाले उर्वरक खाद से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने घर पे, घर में अगर जगह नहीं है, गमले में, छत पर,

0: अगर घर पे जगह है तो वहां पर कम से कम अपने परिवार के लिए सब्जियां मिल सके
1: जी,
0: बिना रासायनिक खाद के, तो उतना अपने लिए उगा सकते हैं
1: जी।
0: जाने आने की मेहनत बच जाती है, बाजार भाव से देना पड़ते हैं, जो मांगते हैं किसान, जो भी भाव बताते उसी भाव से सब्जियां लेना पड़ती है मार्केट में
1: जी।
0: तो जाना आना और थोड़ा जब अपने बगीचे में हम लोग बैठ के निंदाई गुड़ाई करते हैं
1: जी,
0: तो वो एक तरह से मेहनत होती है
1: जी।
0: योग सब सुबह सुबह योग अभ्यास तरीका हो जाता है वहाँ पे
1: जी,
0: जब भी
1: जी,
0: तो ये सब हमारी एक तरह से बचत ही है
1: जी। ये बहुत अच्छी बात बताई, जिससे मतलब जो हमारी बहनें हैं इस चीज़ को समझेंगे और जो पोषण वाटिका है उस पे वो कार्य करेंगे। मेघा जी, आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: भाई बहन नोहनी, अभी हम सुनी रहा था पोषण वाटिका को महत्व इना विषय पर भेंटवार्ता, इना विषय पर जानकारी दे रही थी मेघा चौधरी, महिला कृषक ब्रह्मपुर से। न भाई बहन नोहनी, अब सुनी लेवांज एक अरु निमाड़ी लोकगीत, जेखा गायोज राजा राम गोलकर अरु साथी नाना।
2: तू मक्खी बैठी गुड़ पे न पंख गए लपाटा,

भाई बहन नहणी, अभी हम सुनी रहा था इनी माड़ी लोकगीत ना। भाई बहन नहणी, ना भाई बहन नहणी, अभी ना समय हल्की हल्का बादलों का बीच में चुभन और उमस में गर्माहट को एक बार फिर सी बढ़ी गई। खास करी ना रात में गर्मी को एहसास बढ़ना लगी गोज। न ई मौसम विशेषज्ञ न की माना तो कम दबाव का क्षेत्र का असर कम हो ही गयोज, न एकासी गर्मी में वापस बढ़ोतरी आने की संभावना बढ़ी गई। तो एका लेना अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखा। न भाई बहनों, अब आप खबर बताइए, देवास खंडवा उपज मंडी से प्राप्त कृषि उपज नका भावना की जानकारी। सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 5,000 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 6,970 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव रहे 2,000 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 2,444 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव रहे 5,220 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 5,855 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव रहे 1,820 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 1,961 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव रहे 6,460 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 7,400 रुपया प्रति क्विंटल। ज्वार को न्यूनतम भाव रहे 2,061 रुपया प्रति क्विंटल, नई भाव स्थिर रहे। सातज मूंग को न्यूनतम भाव रहे 6,500 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 7,300 रुपया प्रति क्विंटल। एका सातज डॉलर चना को न्यूनतम भाव रहे 6,300 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 6,500 रुपया प्रति क्विंटल। भाई बहन नहणी, तो था खंडवा उपज मंडी से प्राप्त कृषि उपज नका भावना की जानकारी। न अब आपका बताइए देवाज आज का मौसम की जानकारी। आज सूर्योदय प्रातः 5:41 पर हुए, न सूर्यास्त शाम 7:05 पर हुए। आज का दिन को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहे, न रात को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। न भाई बहन नहणी, अब सुनी लेवाज एक अरु निमाड़ी लोकगीत जेखा गायज कांता चौहान अरु साथी नना।

भाई बहन नोहनी, अभी हम सुनी रहा था ये निमाड़ी लोकगीत ना। भाई बहन नोहनी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछो थो एक प्रश्न कि लेजर लेवलर कृषि यंत्र को उपयोग कई छे, तो इना प्रश्न को उत्तर छे कि लेजर लेवर कृषि यंत्र को उपयोग खेत ख समतल बनावना का लिए कियो जाए न। भाई बहन नोहनी, एक साथ आज को किसान वाणी कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो। आज्ञा देव, राम राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब अगला कार्यक्रम भोपाल से प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और लीजिए अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। ये कार्यक्रम
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर। पार्टिसिपेंट्स आर डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड डॉक्टर एनके अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। मॉडरेटर इज प्रियंका अरोड़ा।
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: बहुत-बहुत नमस्कार।
3: तो जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो

0: गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
1: जी,
0: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
1: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
2: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
1: जी।
2: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
1: जी।
2: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
0: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
1: जी,
0: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस

0: उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए, तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए। ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7% less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सब के लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयो वंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था, और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है, और अब इसको आगे ले जाकर के UN IT प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ

0: साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे दो बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
0: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है, वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं, उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा।
1: जी।
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा था, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य केंद्र में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर 3 साल में 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इस पे 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आंख का इलाज, ENT, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे
1: जी,
2: एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
2: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी

0: सेवाएं शुरू से इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, टीबी कंट्रोल है, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रहे हैं, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है और ये बहुत दूर तक हमें लेकर जाएगा। क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएम से जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब की जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको लिए बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड
1: है। बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए, 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं

0: ये बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे

0: टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है,
1: जी
0: जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य आईडी जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी, 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है। 87 करोड़, 140, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी है कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
0: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। वन ऑफ द की इश्यूज व्हिच हैज बीन बॉदरिंग ऑल ऑफ अस वाज स्टंटिंग इन चिल्ड्रन, एंड स्टंटिंग हैज बीन ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड एज द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एंड ड्यूरिंग लास्ट बिटवीन NFHS 5 एंड 6, आई थिंक द स्टंटिंग हैज डिक्रीज बाय 12 or 14% points। दिस इज रिमार्केबल बिकॉज दिस इज जिसको कहते हैं बिल्कुल फंसी हुई चीज थी, जिसको ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़कर के लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु मृत्यु असमय मृत्यु से उसको

0: कम किया गया है, और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सके जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो वॉट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया है। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है, और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें कि आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए, तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
2: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी,
2: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं, ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा

0: व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
5: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा।

अब सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। इस गीत को संयुक्त रूप से लिखा है कैसरुल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव ने। संगीत प्रीतम का, बोल पापोन के, फिल्म का नाम मेट्रो इन दिनों।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी।

0: पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक, केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की मदद की है। आपको जानकर हैरानी

0: होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
8: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
9: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई।

0: पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुनैना फिल्म के गीत से, जिसे गाया है यशुदास ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आपने यशोदास को फिल्म सुनैना में सुना, अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया सौदागर फिल्म का गीत। गीत और संगीत एक बार फिर से रविंद्र जैन का।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम के फिल्म का नाम एक दूजे के लिए।

नूतन समर्थ बहल, जी हां नूतन, इनका जन्म शोभना समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर सन 1936 के 4 जून को हुआ। चार भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थीं। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने कवि और निर्देशक थे तो माता शोभना समर्थ अपने जमाने की मानी हुई अभिनेत्री थी। पौराणिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनीत सीता के किरदार को इतना सराहा गया था कि शोभना समर्थ और सीता ये जैसे एक समीकरण ही बन गया था। आज हम बात कर रहे हैं इनकी सुपुत्री नूतन की। नूतन को अभिनय कला संस्कृति के संस्कार धरोहर ही में मिले थे, लिहाजा उनकी माताजी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल की थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी सी उम्र में मिस इंडिया खिताब की विजेता रही थी। 1953 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म लैला मजनू में। सरदार मलिक साहब का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय बन पड़ा था इस फिल्म का।

नूतन एक संवेदनशील अभिनेत्री थी। उनके चेहरे पर उभरने वाली भावभंगिमाएं उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी को जैसे कॉम्प्लीमेंट करती थी। यही उनके खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी। किसी भी चरित्र की गहराई में घुसकर उस चरित्र को जीवंत करने के लिए अधरों का कंपन, उनके भाल पर उभरती रेखाएं, आंखों की सूक्ष्म हलचल, इन बातों से वो पात्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थी। यही वजह है कि सन 1955 में अमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ। इस फिल्म में उनकी भूमिका को इतना सराहा गया कि इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।

फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने जमाने की वो पहली अभिनेत्री थी। बात सन 1959 की है। सामाजिक विषमता की विभिषिका को बिंब बनाकर फिल्मों के साथ साथ सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले सुलझे हुए निर्देशक बिमल रॉय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। नारी प्रधान और सामाजिक विषमता के विषय वाली ये फिल्म और इसका सुजाता का किरदार बड़ा ही जटिल था। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ और नूतन ने भी अपनी सशक्त अदाकारी से इस फिल्म के इस किरदार में जैसे जान फूंक दी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

नूतन अपनी अभिनय क्षमता के कारण जटिल से जटिल भूमिकाओं को साकार करने में महारत रखती थी। फिल्म सुजाता के बाद जो बहुचर्चित उनकी फिल्म आई वो थी बंदनी। सन 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। बिमल दा ने इस फिल्म का विषय भी बड़ा ही हटके चुना था। स्त्री का मनोविज्ञान और उसकी पेचीदगी को दर्शाने का मार्मिक चित्रण था इस फिल्म में। जैसे कि फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है, ये फिल्म नारी प्रधान फिल्म थी। नूतन ने अपने तरल अभिनय से विषय वस्तु की जटिलताओं को समझते हुए बड़ी सहजता से उन्हें अभिनीत किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

0: 1959 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पेइंग गेस्ट में उन्होंने अदाकारी के कुछ रोमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे एवरग्रीन अदाकार देवानंद।
1: छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा।

0: जमाना क्या कहेगा।
1: कुछ ऐसी ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी अनाड़ी, जो आई थी सन 1959 में। इस फिल्म में नूतन के हीरो थे अपने जमाने के ग्रेट शोमैन राज कपूर।

0: 1958 में एक फिल्म आई थी सोने की चिड़िया। इस म्यूजिकल फिल्म में भी नूतन ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। दोस्तों, देवानंद साहब के साथ उनकी एक और चर्चित फिल्म आई थी 1960 में, जिसका नाम था तेरे घर के सामने।
1: देखो रूठा ना करो बात न

इसी दौरान यानी सन 1959 के आसपास नूतन ने नेवल कमांडेंट रजनीश बहल से शादी कर ली और वो नूतन समर्थ से नूतन समर्थ बहल बन गई। इसी साल आई थी फिल्म छबीली। इस फिल्म में उन्होंने जितने गाने उन पर फिल्माए गए थे स्वयं ही गाए थे। इस फिल्म का निर्माण किया था उनकी माताजी शोभना समर्थ ने।

60 से 70 के दशक में उनकी कई फिल्में आईं। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का संगीत हिट था, चाहे 1952 की फिल्म शीशम हो या 1954 की फिल्म शबाब हो, 1956 की बारिश हो या 1957 की फिल्म दिल्ली का ठग हो, 1958 की फिल्म आखिरी दांव हो या 1964 की फिल्म खानदान हो, 1965 की फिल्म रिश्ते नाते हो या हो 1968 की फिल्म सरस्वती चंद्र।

0: जहां तक फिल्म फेयर के चौथे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का सवाल है, वो उन्हें मिला था फिल्म मिलन के लिए जो रिलीज हुई थी 1967 में, प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर।
3: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
2: पवन करे शोर।
3: हाँ

1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस समय उनकी उम्र थी 42 साल।

0: दोस्तों अभिनेत्री नूतन ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं तो कई की, साथ ही साथ चरित्र भूमिकाएं भी की हैं। इनमें जो यादगार हैं वो हैं 1986 में आई फिल्म जो कि दिलीप कुमार के साथ थी, फिल्म कर्मा।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने।
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह

0: तो ये था आज के फनकार ये कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने की जाने मानी अभिनेत्री नूतन पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान सब दिल में घर कर गई हैं। अब हर दुआ में तुम्हारा नाम शामिल होता है। शायद यही तो प्यार है, जब किसी एक इंसान में पूरी दुनिया दिखाई देने लगे और मुझे मेरी पूरी दुनिया तुम में नजर आने लगी है।

हर मुलाकात के बाद कुछ नए अल्फाज चुन लाता है, जैसे दिल की धड़कनों को सुरों में पिरोकर कोई गीत बना रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो हर धुन में सिर्फ अपनी महबूबा का ही चेहरा दिखता हो। कभी चांद की बात करता है, कभी बारिश की, पर असल में हर गीत उसी के नाम लिखा होता है। वो आशिक अपनी मोहब्बत को शब्दों और सुरों में सजाकर हर रोज एक नया नगमा लेकर आता है। जलते

अब राहें अलग नहीं रही, जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे कदम साथ चलेंगे। खुशियों की धूप हो या मुश्किलों की छांव, हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहेंगे, हर परिस्थिति में, हर पड़ाव पर। अब ये सफर सिर्फ मैं का नहीं, हम का होगा। समय चाहे जैसा भी हो, साथ निभाने का ये दा अब हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन चुका है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुम चाहे जितनी बेरुखी कर लो, चाहे हर बात में हमें दर्द ही क्यों ना मिले, फिर भी इस दिल की धड़कनों पर बस तुम्हारा ही नाम रहेगा। हम शिकायत भी करेंगे तो तुम ही से, और दुआ मांगेंगे तो तुम्हारे लिए, क्योंकि इश्क ने हमें ऐसा बना दिया है कि जुल्म तुम्हारे होंगे, फिर भी गीत तुम्हारे ही गाए जाएंगे।

अब और कितना रूठोगे तुम? देखो मैं हार गई हूँ, अपने सारे गिले अपनी सारी जिद तुम्हारे कदमों में रख दी है। चलो अब मान भी जाओ, तुम्हारी खामोशी अब दिल को तकलीफ देने लगी है। आओ फिर से वैसे ही बातें करें जैसे कभी हमारे बीच दूरियां हुआ ही नहीं करती थी।

तेरी मोहब्बत में इस कदर खो गए हम कि अब दुनिया की कोई बात दिल को छूती ही नहीं। ना दिन अपने लगते हैं, ना रात में सुकून मिलता है। हर तरफ बस तेरा ही नाम, तेरा ही एहसास बसा रहता है। तेरी आंखों में ऐसे डूबे कि अपना वजूद तक भूल बैठे हैं। अब हाल ये है कि तेरे प्यार में हम सारा आलम खो बैठे हैं।

0: विविध भारती पर हमारा अगला कार्यक्रम रंग तरंग। विविध भारती
1: रंग तरंग।
0: श्रोताओ नमस्कार, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

0: बता दिया कि उसकी चेतना लौट आई, लेकिन नहीं लौटेगी। प्रभु जो मूर्छा में पड़ी दिल्ली सरकार और उसके सिस्टम को होश में लाने में खुद अग्निकांड में आहूत हो गए।
1: बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने

0: को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrinder Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism.